ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तिथि 13, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। चिंतन
1: श्री बालक एकटा पुस्तक संभवतः डैनियल डिफोक लिखल रॉबिन्सन क्रूसो वा एसपक फेबल अनक हेतु घर सँ 20 किलोमीटर दूर अपन परिचितक ओतऽ जा रहल छल। पुस्तक किनक लेल ओकरा पास धन नहीं छलैक, तैं ओ मांग चांग के पुस्तक पढ़े छल। विद्यालय जेबाक तऽ ओकरा सेहन्ते लागल रहली, कारण ओकरा पिताक पास धन नहीं रहैक।
2: सौंदर्य शाश्वत चेतना का स्रोत है, चित्त की इच्छा ही इसका मुख्य हेतु है। सुंदर और असुंदर की धारणा प्राण तत्व के अनुसार होती है। सौंदर्य उच्च कोटि के आनंद और सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। सौंदर्य बोध हमें निस्वार्थ आनंद देता है। अनंत का शांत रूप में प्रकट होना ही सौंदर्य है। भगवान अत्यंत मंगल है, सत्य है, सुंदरता की खान है। सौंदर्य का संबंध आत्मा की उदात्त वृत्ति से है। हमारी सांस्कृतिक चेतना जितनी उदात्त होती है, सौंदर्य चेतना उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है। सौंदर्य में रोचकता उसका प्राण है। सौंदर्य की तृप्ति से ही जीवन का विकास, हृदय में उदात्त वेदना का संचार, प्राणों में स्फूर्ति का संचार और कल्पना के लिए नवीन प्रकाश का सृजन और शांति का संचार होता है। बुद्धि को नई चेतना मिलती है, कल्पना को सजीवता मिलती है। आनंददायक गुण है सौंदर्य। सौंदर्य से जो रस उत्पन्न होता है वही आनंद है। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारे हृदय में उसकी अनुभूति होती है, उससे आनंद मिलता है। सत्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वो प्रसन्नता और शिवानुभूति का साधन है। सत्य वो है जिसमें हमें विश्वास हो, और विश्वास वही होता है जहां अनुभव का विरोध न हो। सौंदर्य आनंद का ही दूसरा नाम है। जो सुंदर वस्तु है उसका गुण है, उसका धर्म है सौंदर्य। हीरे के गुण की परख के लिए जौहरी की आंख चाहिए, रिझाने वाले रूप के लिए रिझाने वाली आंखें चाहिए। उपनिषदों में सत्य और शिव की सुंदर अभिव्यक्ति है। सौंदर्य

0: मनोज्ञ रहता है। प्राण ही अंगों का रस है, रस को राग कहा गया है, प्रीति और वेग का पर्याय कहा गया है। सृष्टि में चारों ओर दिख रहा है एक चिर सौंदर्य, एक चिरंतन सत्य का आभास हमें चतुर्दिक हो रहा है। सौंदर्य सात्विक, निर्दोष और प्रकाश की तरह है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कृषि चर्चा आज का विषय है फूल गोभी की उन्नत खेती। वाचन स्वर है शंकर कुमार चौधरी का।
2: कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाए। स्नेह किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हम सब तरकारी खेती कऽ कऽ नीक आमदनी कऽ सकैत छी और ताहू में जो फूलकोबी खेती वैज्ञानिक ढंग से खेतक नीक जकाँ तैयारी कऽ कऽ सदत फूलकोबी के उन्नत अनुशंसित प्रभेद के लगाबी और एकरा लगाबा से पहिने खेतक माटिक जांच करा लियैक। ओ सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान ओ मॉलिब्डेनम केर कमी रहला पर खेत में 10-15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 किलोग्राम सोडियम मॉलिब्डेट अथवा अमोनियम मॉलिब्डेट के व्यवहार कर सकैत छी। एकर पश्चात खेत में कोबी गाछ के लगेबाक चाही। फूल कोबी के उन्नत अनुशंसित अगात प्रभेद अछि कुंवारी, पटना अर्ली, पूसा केतकी, पूसा दीपाली, हाजीपुर अगात। मध्य ओ मुख्य फसलक उन्नत प्रभेद अछि अगहनी, पूसी, पटना मेल, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुमारी, अर्ली स्नोबॉल इत्यादि। फूलकोबीक पछात उन्नत प्रभेद अछि माघी स्नोकिंग, पूसा स्नोकिंग 1, पूसा 2, पूसा स्नोबॉल 16, के 11 इत्यादि। फूलकोबीक संकर उन्नत प्रभेद के सेहो खेत में लगा सकैत छी जे अछि हिमानी, स्वाति, समर किंग इत्यादि। स्नेह किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, फूलकोबीक बीया के पहिने पौधशाला में बाउग करबाक उचित बेर और फेर एकर गाछ के भेला पर खेत में रोपबाक बेर पर ध्यान दियैक। फूलकोबीक अगात प्रभेद पौधशाला में बाउग करबाक उपयुक्त बेर अछि जून से जुलाई मास धरि। मध्य ओ मुख्य फसलक अगस्त से सितंबर मास धरि, ओ पिछातक सितंबर से अक्टूबर मास धरि। फूलकोबी के गाछ के खेत में रोपबाक उपयुक्त बेर अगात प्रभेदक अछि जुलाई से अगस्त धरि, मध्य प्रभेदक अछि सितंबर से अक्टूबर धरि, ओ पिछात प्रभेदक अछि अक्टूबरक अंत से लऽ कऽ नवंबर मास धरि। एखन फूलकोबीक अगात प्रभेद के खेत में रोपबाक बेर अछि ओ मध्य प्रभेदक बीया के पौधशाला में खसेबाक उपयुक्त बेर अछि। बीया के बाउग करबा से पहिने उपचारित कऽ दियैक जाहि लेल स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीया के हिसाब से व्यवहार कऽ सकैत छी। पौधशाला में फूलकोबीक बीया के 500-700 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार कऽ सकैत छी। खेत में रोपबा काल अगात प्रभेदक दूरी 35-45 सेंटीमीटर, ओ गाछ से गाछक दूरी 45 सेंटीमीटर और मध्य ओ पिछातक 35-35 के दूरी 50, ओ गाछ से गाछक दूरी सेहो 50 सेंटीमीटर राखब नीक होइत अछि। खाद उर्वरकक रूप में हमसब कंपोस्ट 200 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, ओ पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार कऽ सकैत छी। जहाँ धरि भऽ सके बेसी से बेसी जैविक खादक व्यवहार करियैक और कम से कम कीटनाशी दवाईक व्यवहार करबाक चाही।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। फूल गोभी की उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी गई। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब समाचार।

0: भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर।

0: और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा, आज की चर्चा का विषय है आंख में चोट लगने पर क्या करें। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे आंख में चोट लगना, इस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। डॉक्टर साहब, आंख में चोट लगना या फिर धूल या कुछ ऐसी वस्तु का प्रवेश कर जाना जिससे आंख में न सिर्फ तकलीफ होती है, कई बार आंख की रोशनी तक चली जाती है
1: जी,
0: सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है धूल
1: जी,
0: उसमें क्या करें लोग?
1: अगर किसी आंख में अचानक धूल चला गया, आंधी में है आप या बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के आंख में धूल झोंक दिया
0: जी,
1: तो उसमें पहला उपचार के तौर पर चिकित्सक तो बाद में देखेंगे उसको, कम से कम साफ पानी से उसको जितना आप धो सकते हैं उतना धोइए, आंख रगड़िए मत, क्योंकि जब भी आप आंख को रगड़ेंगे तो धूल कण के से आप आंख को रगड़िएगा तो कॉर्निया डैमेज करेगा, वो
0: छिल जाएगा,
1: हाँ छिल जाएगा और अल्सर बना देगा। तो आप जिस स्थिति में वैसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर आइए अगर साफ सुथरा पानी मिलता है उससे धो लीजिए, उसके बाद भी आपको कष्ट रहता है तो कोई प्लेन एंटीबायोटिक ओफ्लोक्सासिन सिप्रोफ्लोक्सासिन मॉक्सीफ्लोक्सासिन का ड्रॉप डालिए
0: और फिर डॉक्टर
1: जी, फिर डॉक्टर से मिलिए।
0: कुछ लोग लोहे का काम करते हैं,
1: व्यवसाय है, बिल्डर है,
0: बिल्डर का काम करते हैं, तो कई बार चिंगारी
1: स्मिथ वाले हैं, लोहार का काम है,
0: चिंगारी या लोहे का बुरादा या कोई कण आंख में अचानक चला जाता है,
1: आंख में अचानक चला जाता है, तो उसके लिए आपको उसमें आंख में, अब देखिए अगर बहुत छोटा कण है हो सकता है आंसू के थ्रू भी निकल जाएगा, निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंख में कोई कष्ट नहीं है, मतलब कि पानी नहीं आ रहा है, आंख में दर्द नहीं है, आंख को में फोटोफोबिया, जिसमें कि सूरज की रोशनी में या जनरल रोशनी में आपका आंख बढ़िया से खुलता है, इसका मतलब है कण उसके अंदर नहीं होगा, जब वो कण कॉर्निया पर लॉज कर जाएगा तो आंख से पानी आएगा, आपको आंख में दर्द रहेगा, आंख को आपको धूप में नहीं खोलने देगा, तो वैसी हालत में आपको उसको कण को निकलवाने के लिए विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए, और ज़्यादा लेट कीजिएगा तो उसके साथ साथ वो इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है, तो उसमें डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो वो आप विशेषज्ञ के सलाह से उसको अगर अंदर पड़ा हुआ तो उसको निकलवाइए, और जैसे सलाह दे वो उसी
0: कई बार कुछ ऐसा लिक्विड है जिसका लोग काम करते हैं, केमिकल कह लीजिए या फिर कभी चूना या कोई ज्वलनशील पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: अगर वो आँख में चला जाए तो
1: वो एक उसमें दो चीज़ है, या तो अचानक आपके आँख के अंदर जैसे आदमी गाड़ी को जो ड्राइवर है वो उठाया उसमें एसिड रहता है वो आँख में चला गया, या फिर पेंटर है जो पेंट कर रहा है।

0: दीवार को, उसकी आंख में चूना चला गया, दोनों आंख के लिए घातक है, और एसिड से ज्यादा घातक चूना है। चूना को लोग कम घातक समझता है, बट अल्कली ज्यादा डैमेज करता है। कारण है कि वो जब अंदर जो आंख के अंदर जाता है, क्या है कि आप उसमें भी है कि प्लेंटी ऑफ वाटर से आंख को धोइए,
1: साफ पानी,
0: एकदम साफ पानी से, जितना 5 लीटर 10 लीटर जितना भी धो सकते हैं, ताकि अगर अच्छे से धोना चाहते हैं तो सलाइन में जो आता है आरएल वाटर, उसको आईवी सेट से आंख के पास लगा देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: उसको ऑन कर दीजिए फुल स्पीड में, तो जितना आंख के अंदर जाएगा, जितनी गंदगी होगा, तो एस्ट्रायल भी है वो, साथ साथ वो पानी भी है,
1: लेकिन पूरी सावधानी।
0: हाँ जी जी, अगर वो उतना उपलब्ध नहीं है तो कम से कम नल का पानी जो है साफ सुथरा, ट्यूबवेल का पानी, उससे आंख को धोइए।
1: और बच्चे कभी कभी तीर धनुष चलाते हैं, गेंद या फिर कुछ ऐसे खिलौने, उसकी वजह से भी कभी कभी आंख में।
0: हाँ जी जी, बच्चे को उससे चीज से, नोकीली चीज से उसको मना करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि वो नोकीला चीज हाथ में ले।
1: पेंसिल,
0: हाँ जी, पेंसिल ले तो उसका वो उसका उससे भी डैमेज होने का चांस रहता है, तो उससे लिखने के लिए ठीक है, खेलने का उसको डिस्करेज कीजिए बच्चे को, नहीं तो फिर आंख में लगने के बाद हो सकता है
1: दुर्घटना कहकर नहीं आती।
0: हाँ जी जी जी, उसमें
1: अगर दुर्घटना
0: हो गई तो फिर उसका प्रॉपर उपचार होना चाहिए।
1: कभी लोग यात्रा भी कर रहे होते हैं गाड़ी पर और दुर्घटना हो जाती है,
0: देखिए जी,
1: और आंख से खून निकला,
0: हाँ आंख में खून निकला, विजन ठीक है तो चिंता नहीं ली। देखिए कभी कभार कि आदमी बहुत घबराया हुआ है कि मेरा आंख एकदम लाल हो गया है, मगर पूछिएगा उससे कि आंख तो लाल है, दिखता है ना सब चीज, तो बोलेगा कि नहीं दिखता ठप है, तो उसमें घबराना नहीं है, दैट इज ए सबकंजक्टिवल हेमरेज। अगर देखिएगा कि आंख उसका लाल नहीं है मगर उसका रोशनी गड़बड़ा गया, इसका मतलब भीतर में उसको गड़बड़ है, या तो विट्रस हेमरेज हो गया, या मैकुला को डैमेज किया, या रेटिनल को डिटैच किया, वो ज्यादा घातक है बनिस्बत उसके कि जिस सीधे आंख लाल है उसको दिखता हो।
1: आंख में
0: जी
1: चोट लगे किसी भी प्रकार से, धूल जाए, लोहे का बुरादा जाए, या ज्वलनशील पदार्थ जाए, तीर धनुष से लगे, या फिर दुर्घटना में आंख चोटिल हो जाए, अपने विशेषज्ञ से, नेत्र रोग विशेषज्ञ से।
0: एक चीज हम कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोशिश कीजिए कि ये आपको डैमेज नहीं करे, धूल आपके अंदर आंख में नहीं जाए। जो लोग उस व्यवसाय में वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगाकर काम करे, और बच्चा को आप नोकीली चीज से बंद ये कराइए, उसको डिस्करेज कीजिए, अगर हो जाता है तो उसको प्रॉपर अर्ली स्टेज में उसको दिखलाइए, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए।
1: डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे आंख में चोट लगने पर क्या करें, इस विषय पर विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। आकाशवाणी दरभंगा से अब निवेदित है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना, पहले देश वंदना समवेत स्वरों में।

ये स्वर थे पुरुषोत्तम दास जलोटा और साथियों के। आइए ये भक्ति रचना सुनते हैं उदित नारायण के स्वर में।

हरिहरन के स्वर में अभी आपने ये भजन सुना। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना।

इसके साथ ही भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का, मुख्य स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुनिएगा उर्दू में कार्यक्रम अंजुमन, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे 9:05 पर। आज इसी सभा में 9:50 का समय होगा फिल्म संगीत का। अंगना, ये बजिका कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 पर। आलेख संकलन और वाचन स्वर विजेता सिन्हा का होगा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा। दिन में 11 का समय उपशास्त्रीय संगीत का होगा, कलाकार होंगी शोभा गुरटू। NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए, दिन में 11:30 पर। मध्यान्ह 12 का समय फिल्म संगीत का होगा। सुनिएगा इस रविवार 2 अगस्त 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी के संपादित अंश। आज आप विशेषज्ञ डॉक्टर जमुरत परवीन को सुन सकते हैं। विषय है स्तनपान के फायदे, संचालन संजय कुमार का और प्रस्तुति असद दाऊद की होगी। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:15 पर और 2:30 पर। बजीका में लोकगीत आज अपराह्न 3 आप सुनेंगे। युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5। महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं सुनिएगा शाम 6:10 पर। हमारे ग्रामीण प्रसारण में शाम 6:30 पर गांव घर के अंतर्गत अंक होगा नव ऊर्जा। युवा अपने अभिभावक के कार्य में सहयोग करें, इस विषय पर चर्चा होगी। शाम 6:55 पर आप सुनेंगे किसान वाणी। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के संयोजन से आप सुन पाएंगे। आज शाम 7:50 पर कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे और 8 का समय होगा संसद समीक्षा का। सुनिएगा मैथिली में हमारा कार्यक्रम सिंगारहार शाम 8:15 पर। रात 9:10 का समय सर्वभाषा कार्यक्रम विविधा का होगा

0: और 9:45 का समय देववाणी का। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे अपने दिल्ली केंद्र से। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सुबह के 6:55 होने ही वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्याय व्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेप अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषेऽपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 23 राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानाम् अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्। तथा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयम् अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 मतैः पराजितवान्। असौ 1,50,164,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000 मतैः पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधि विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अवदत् यत् भारतीय क्रीडकै ग्लास्गो नगरे आयोजितासु षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवम्।

0: गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3-4 दिन तक तेज बारिश

की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं हमारी आज की पहली सभा के कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम जो हमारा दैनिक कार्यक्रम है, नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुननिहार, समस्त श्रोता लोकनि का आशीषक नमस्कार।
0: मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। स्वीकार करें मेरी ओर से भी स्नेह भरा नमस्कार। आशीष जी आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार प्रतिभा जी। और जेना कि हम सब दिन के शुरुआत नीक से हुए तै लेल कार्यक्रम में सेहो शुरुआत नीक से करे छी, एकटा सुविचार ले छी।
0: आज का सुविचार है, नीति श्लोक है, कहते हैं सत्येन रक्षते धर्मो विद्या अभ्यासेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात धर्म की रक्षा सत्य से, ज्ञान की अभ्यास से, रूप की रक्षा स्वच्छता से और परिवार की रक्षा सही आचरण से होती है।
1: सब कोई के खास को के अपन आचरण, अपन आहार व्यवहार अगर सही रखब तो अभी वाला जे समय है से बहुत नीक रहत और
0: बिल्कुल
1: समाज के उत्थानक लेल यहो बहुत जरूरी भ जाते है।
0: और नीति श्लोक हो या सुभाषितानि हो, हम सभी तो इसीलिए इसे सुनते हैं, इसीलिए इसे पढ़ते हैं कि इस बात पे, ये जो अमृततुल्य वाणी है, इस पे हम सभी विचार करें और अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। और जानते हैं आज के दिन का इतिहास क्यों है। आज का दिन इतिहास के आईने में खास। तो आज ही के दिन यानी 4 अगस्त 1956 को भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा ने सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू किया था। यह एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। 4 अगस्त 1870 को ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी।
1: और अगर गप करी तो 4 अगस्त 2008 के शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सेहो नवरत्न के दर्जा देल गेल छल। और आइए के दिन 4 अगस्त 2004 के नासा अपन ऑल्टिक्स सुपर कंप्यूटर केसी के नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने छल।
0: और यदि बात करें 4 अगस्त 1929 की, तो प्रसिद्ध भारतीय गायक और अभिनेता किशोर कुमार का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी कलाकारों में से एक थे। किशोर कुमार ने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमिया और अन्य कई भाषाओं में भी गीत गाए थे। उन्हें 8 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किशोर कुमार की आवाज़ आज भी भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए उनके दिलों में जीवित है। उन्हें हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग के महानतम गायकों में से गिना जाता है।
1: और गप करिए तो आइए के दिन भारत में दुनिया का सबसे पैघ लंबा नागार्जुन सागर बांध 4 अगस्त 1967 के बनाल गया छल। और रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना सेहो 1870 में आइए के दिन भेल छल। तो ई हम सब के नाके जानकारी प्राप्त करते रही कि आई के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन क्या कुछ खास था देश और दुनिया में।

ये हम सभी ने इसके कुछ अंश जान पाए, क्योंकि बहुत कुछ हुआ होगा आज के दिन, पर सब कुछ तो हम सभी इस छोटे से कार्यक्रम में ला नहीं सकते हैं, शामिल नहीं कर सकते हैं, तो कुछ अंश हम सभी हर दिन विशेष रूप से शामिल करते हैं और कार्यक्रम में जानते हैं कि गीत संगीत जो है आशीष जी हम सभी हर दिन लेके आते हैं, मैथिली गीत सुनवाते हैं, फिल्म संगीत से आनंदित करवाते हैं अपने श्रोताओं को, तो सबसे पहले आइए मैथिली सुगम संगीत।

बहुत ही प्यारा सा गीत, और आज मंगलवार है, हम सभी बजरंगबली को समर्पित ये गीत सुने। कलाकार थे श्याम बिहारी राय, इन्हें धन्यवाद देते हैं। जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं आशीष जी, आइए सुनते हैं।

0: जी से हालचाल।
1: धन्यवाद प्रतिभा जी। आजुक हालचालक संग हम आशीष। सावन के पहिल सोमवारी पर प्रसिद्ध शिवालय दर्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम में भोरे से श्रद्धालु सबके लाइन लागल लागल। एतो रात के 2 बजे से श्रद्धालु सब के एनाई शुरू भेल छल जे साँझ धरि बनल रहल। दरभंगा समस्तीपुर से लौकर मधुबनी सीतामढ़ी संगे दूर दूर के गाम से लोग पैदल बाइक और बस सब से पहुँचल। भीड़ के देखते मंदिर प्रशासन स्थानीय स्वयं सेवक सबके संगे पुलिस संयुक्त रूप से मोर्चा पर तैनात रहत। प्रवेश और निकास के लेल अलग अलग रास्ता बनाल गेल छल। बुजुर्ग और महिला सबके लेल विशेष कतार के व्यवस्था छल। जगह जगह भंडारा शरबत आ प्राथमिक उपचार केंद्र सेहो लगाओल गेल छल। सावन के पहिल सोमवारी पर मिथिलांचल के प्रसिद्ध बाबा कुशेश्वरनाथ धाम में आस्था के अद्भुत संगम देखे ले भेटल। प्रशासनिक आंकड़ा के गप करी तो 75,000 से बेसी श्रद्धालु बाबा के जलाभिषेक क के परिवार के सुख समृद्धि और मंगल कामना कल। आई रात से लंबा लंबा लोग सब के कतार देखे ले भेटे छल। नेपाल समेत 6 जिला से श्रद्धालु एत अल। 5 किलोमीटर पैदल चल के भक्त साँझ धरि एत दर्शन करते रहल और साँझ में भव्य आरती भेल। नागदेव के पूजा के संगे मधुश्रावणी पावन शुरू भ गेल। नव विवाहित सबके फूल लोढ़े के संगे शुरू भेली पावन 13 दिन तक चलत। महिला पंडित सब पूजन करौलत और कथा सेहो सुनौलत। अ पर्व के पावन के समापन जे से आगामी 15 अगस्त के सुहाग मंथन आ टेमी परंपरा के संगे भ जायत। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमारक अनुसार अगस्त महीना के प्रथम मंगल दिन 4 अगस्त के सार्वजनिक अवकाश होय के कारण यानी कि आई छुट्टी होय के कारण जिला में प्रस्तावित मासिक सहयोग शिविर आब काल्हि यानी कि 5 अगस्त के आयोजित कयल जायत। जिला के 32 पंचायत और 12 नगर निकाय में भोरे 9 बजे से शिविर लगाकर आम लोग सब के शिकायत प्राप्त कयल जायत, उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कयल जायत। परिवाद दर्ज होकर 30 दिन के भीतर ओकर निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित कयल गेल अछि। अपने सब सुन रहल छी हाल चाल।
2: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने सब सुन रहल छी हालचाल। संस्कृत विश्वविद्यालय के CCDC बनलत सिबलोचन झा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन्फेक्शस डिजीज रिसर्च विषय पर WIT में 11 अगस्त के सेमिनार का आयोजन हैत। विद्यालय सब में विज्ञान सेमिनार 6 अगस्त के आयोजित कैल जायत। PAT 2023 के शोधार्थी सब के पंजीयन 30 अगस्त धरि चलत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिनक खेल प्रतियोगिता संपन्न भेल। शिक्षक और कर्मी सब एमे भाग ललत। एकर उद्देश्य शिक्षक और कर्मी सब के खेल गतिविधि से जोड़नाय छल।

आब 9 अगस्त धरि उपशास्त्री में नामांकन कैल जा सकैत अछि। स्कॉट मास्टर, गाइड कैप्टन आ शारीरिक शिक्षक सबके बैसार काल्हिखन होयत। बिना निबंधन के चल रहल निजी स्कूल सब पर डीओ कार्रवाई के निर्देश देने छथि। कारा सुधार समिति के सभापति निशा सिंह काल्हि सोम दिन मंडल कारा सहरसा के निरीक्षण कलथि। निरीक्षण के क्रम में सभापति कारा के सुरक्षा व्यवस्था, बंदी सब को उपलब्ध कराओल जा सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, भोजन व्यवस्था और पुनर्वास से जुड़ल पहलू सब के अवलोकन कलथि। बाबा राज राजेश्वर शिव मंदिर में 10 आ 11 अगस्त के आयोजित होयवला दू दिवसीय श्रावणी महोत्सव के तैयारी के लक मंदिर परिसर में बैसार आयोजित कैल गेल। बैसार के अध्यक्षता जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा झा कलथि। अहि में स्थानीय जनप्रतिनिधि सब, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य आ विभिन्न विभाग के अधिकारी सब उपस्थित रहत। बनगांव के गोसाईजी कुटीर परिसर में लक्ष्मेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सावन महीना के अवसर पर विशेष श्रावणी श्रृंगार पूजा आ रुद्राभिषेक के आयोजन शुरू भेल। पहिल दिन भगवान शिव के भव्य श्रृंगार आ विशेष पूजा अर्चना कैल गेल। सावन मास के पहिल सोमवारी पर राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध धरहरा स्थित बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर आ विभिन्न शिवालय सब में श्रद्धालु सब के जनसैलाब उमड़ पड़ल। भोरे 3 बजे से गर्भगृह के कपाट दर्शन और जलाभिषेक के लेल खोल देल गेल छल, जकर बाद पूरा मंदिर परिसर बोलबम और जय महाकाल से गूंजत रहे। पहिल सोमवारी पर लगभग 50,000 श्रद्धालु बाबा भीमशंकर के जल चढ़ौलत। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र सब में वर्षा के तीव्रता बढ़े के संगे कोसी नदी के जलस्तर में पिछला 24 घंटा में हल्का बढ़ोतरी देखल गेल अछि। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग स्पष्ट केने लथ है कि कोसी के पूर्वी आ पश्चिमी दुनू तटबंध पूरा तरीका से सुरक्षित अछि और बाढ़ जेहन कोनो स्थिति एखन नहीं बनल अछि। ग्रामीण क्षेत्र में रहे वाला लोक सब के न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता हुनकर गाम के लग में उपलब्ध करबे के दिशा में जिला प्रशासन सुपौल और जिला विधिक सेवा प्राधिकार एकटा पैघ पहल शुरू कलथ है। एकर अंतर्गत जिला के सबटा पंचायत में चरणबद्ध तरीका से विधिक सेवा केंद्र स्थापित कयल जायत। ई केंद्र के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद, महिला, बच्चा, वरिष्ठ नागरिक और अन्य पात्र लोक सब के मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करायल जतन। प्रतापगंज के गढ़िया गांव स्थित दीप ज्योति शिव मंदिर परिसर में 1 महीना धरि चले वाला श्रावणी मेला के उद्घाटन भेल। प्रखंड प्रमुख दीप जरा के ई मेला के शुभारंभ कलथि। 501 महिला कलश यात्रा निकाललथ। स्वतंत्रता दिवस 2026 के थीम आजादी के सम्मान, भविष्य के लेल प्रेरणा के अनुरूप जिला प्रशासन मधुबनी युवा सबके प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े के लेल ऑफिसर फॉर अ डे कार्यक्रम शुरू कलथ। अहि अभिनव पहल के अंतर्गत जिला के सरकारी आ गैर सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय सब में पढ़ाई कर रहल कक्षा 11 और 12 के मेधावी छात्र छात्रा सबके एक दिन के लेल वरिष्ठ प्रशासनिक आ पुलिस अधिकारी सबके संगे शैडो ऑफिसर के रूप में काज करे के अवसर भेटतन। कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रतिभागी जिलाधिकारी, एसपी, एसडीएम सदर, एसडीपीओ सहित अन्य अधिकारी सबके संगे रही के प्रशासनिक कार्यप्रणाली, जन कल्याणकारी योजना सबके क्रियान्वयन, जन शिकायत के निस्तारण, निर्णय ले के प्रक्रिया, बैठक और क्षेत्रीय निरीक्षण सबके प्रत्यक्ष अनुभव करतत। मधुबनी के भैरव स्थान में श्रावणी मेला के क्रम में इंडियन रेस क्रॉस सोसाइटी के दिश से चिकित्सा शिविर आयोजित कयल गेल। अहि में कांवरिया और भक्त सबके निःशुल्क इलाज भेल। मधुबनी में काल्हि सोम दिन श्रद्धालु सबके जिला के विभिन्न शिवालय सब में जलाभिषेक कलथि। जलाभिषेक के दौरान सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कयल गेल छल। 600 से बेसी पुलिस कर्मी आ मजिस्ट्रेट सबके तैनाती रहे। टीबी जेहन गंभीर बीमारी से जूझ रहल आर्थिक रूप से कमजोर मरीज सबके लिए

0: स्वास्थ्य विभाग फूड बास्केट योजना के बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। उपचार के क्रम में दवाई के संगे पौष्टिक आहार के आवश्यकता के ध्यान में रखत मधुबनी जिला में एखन धर 1262 मरीज सबके फूड बास्केट उपलब्ध कराओल गेल छन। दलसिंहसराय के अनुमंडल कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के तैयारी के लौके बैसार भेल। एसडीओ किशन कुमार के अध्यक्षता में बैसार संपन्न भेल। एहिमे ध्वजारोहण, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत और पेयजल संबंधी गप पर चर्चा कयल गेल। रोसड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आ गरिमामय आयोजन के तैयारी के लेल अनुमंडल सभागार में बैसार आयोजित कयल गेल। मुख्य समारोह जननायक कर्पूरी स्टेडियम में होयत। एहि संग सम्पन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
4: हालचाल के बाद एक बार स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। मैं हूं आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति
0: और हम छी आशीष। और जना कि बेराबेरी के सब किछ कम सब समेट रहल छी त इएह क्रम में मौसम के सेहो जानकारी प्राप्त कइए ली।
4: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 1 से 5 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। हालांकि 4 अगस्त तक यानी आज तक कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है। वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, दरभंगा, सीवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष स्थानों पर पूर्वानुमानित अवधि में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा के समय आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रह सकते हैं। अन्य समय आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। पूर्वानुमान अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो लगभग 80% तथा दोपहर के समय सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 45% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान हवा मुख्यतः पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।
0: तो ये कि हम सभा के मौसम संबंधी जानकारी से प्राप्त करते रही और एखन जे हिसाब से मौसम बदल रहा है, ये मौसम बदलित मौसम में अपन स्वास्थ्य के जरूर से ध्यान राखी।
4: निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ना, कभी अचानक से बादल छा जाना, बारिश की तो बात हम सभी कम ही कर रहे हैं क्योंकि बारिश की संभावना ही कम दिख रही है, और तेज़ धूप निकल जाना अचानक से, तो इन सब चीज़ से स्वास्थ्य पे जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम सभी यदि थोड़े से सजग रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य को खराब होने से, तबीयत की खराब होने से बचा सकते हैं उसे।
0: और देख रहा है कि अस्पताल सब में लोग सब के जे मरीज सब के जे संख्या बढ़ रहा है, ओकर बहुत छोट छोट अहाँ के सर्दी, बुखार और गला फौसै के संभावना बढ़ रहा है, क्योंकि जे हिसाब से मौसम बदलते बेर बेर, गर्मी हम सब पानी पी लै छी तुरंत में, बरसात में किछ हल्का कतौ बरखा भेल भीज गेलहुँ, फेर एलहुँ, फेर सुखा गेलहुँ, तऽ ई जे एखन बदलैत मौसम अछि, ई मौसम में कनी सावधानी राखी, खास कऽ के जे बूढ़ छथि, जे बच्चा छथि, हुनका प्रति कनी बेसी ध्यान दियन तऽ हमहूँ सब सुरक्षित रहब और परिवार सेहो सुरक्षित रहब।
4: क्योंकि परिवार के हर सदस्य जब

0: स्वस्थ रहते हैं तभी तो हर काम सुचारू ढंग से चल पाता है। बहुत सारा समय उनकी देखभाल में हम लोग का चला जाता है। तो ऐसे में जो हमारी दिनचर्या है, दैनिक जो जीवन यापन के लिए जो हम सभी कार्य कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं बाधित सी हो जाती है। इसलिए हम सभी को ये ध्यान रखना होता है कि हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो स्वस्थ रहें, और साथ ही हम सब खुद भी स्वस्थ रहें। अपने आप पे भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है आशीष जी, क्योंकि कितना बार क्या होता है ना कि हम सभी दूसरे पे ही, अपने घर के पारिवारिक जो सदस्य हैं हमारे, उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की सेवा में, या उनके लिए क्या सही है, सही समय पर क्या उनके लिए नाश्ता है, खाना है, दवा है, या जो भी कुछ उनके लिए जो सुविधाजनक बातें हैं उन पर ध्यान देते हैं, अपने पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही दूसरे को देख पाएंगे ना, तो अपनी देखभाल भी बहुत ही ज़रूरी है, चाहे घर की महिलाएं हों या घर के पुरुष वर्ग।
1: और निश्चित तौर पर अगर स्वस्थ रहब तो बजट से नहीं गड़बड़ाए घर के, और ना कार्यक्रम में समय से नहीं गड़बड़ाए, हमारा सबको तकरो ध्यान रखे के रही है।
0: और हम सभी पहले ही बात कर चुके हैं और हमारे श्रोता भी जानते हैं कि हम सब फिल्म संगीत हर दिन उन्हें सुनवाते हैं, करवाते हैं मनोरंजित। तो आइए किशोर कुमार की आवाज़ में आज सुनते हैं ये गीत।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत आशीष जी आपने सुनवाया, धन्यवाद आपको इसके लिए। देखिए, हम सभी हमेशा से सुनते बोलते आ रहे हैं कि जीवन में अनुशासन बहुत ही आवश्यक है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी तरह की सफलता का आधार ही अनुशासन है।
1: सही बात कहलूँ, जीवन एकटा यात्रा है और एकटा लंबा यात्रा है, और यात्रा में अगर चले के लिए कोनो ईंधन है तो वो है अनुशासन। अनुशासन के बिना प्रतिभा भटक जाते, मेहनत अपन दिशा हरा जाते, सफलता कोनो संयोग नहीं है, वो अहाँके अनुशासन के सीढ़ी पर चल के पा सके।
0: सही कहा आपने, जब हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को अनुशासित ढंग से करते हैं आशीष जी, तो ही सफलता के साथ कदम मिला पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अनुशासन सफलता का सबसे विश्वसनीय मार्ग है। प्रतिभा रूपी अवसर को अनुशासन के द्वारा ही उपलब्धियों में बदला जा सकता है। देखिए ना, छात्र जीवन हो या उम्र के किसी भी पड़ाव की हम बात क्यों ना करें, अनुशासन हर स्थिति में आवश्यक है। विज्ञान जगत को देखें या खेलों की दुनिया, इसके साथ शिक्षा की बात करें हम, यदि कला और व्यवसाय की बात करें, हर क्षेत्र में जो लोगों की सबसे बड़ी पहचान है वो अनुशासन ही रहा है, क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों को बाधा नहीं समझा बल्कि सीखने का और आगे बढ़ने का अवसर माना है। और ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, जो कठिनाइयों को, आने वाले जो सामने में रास्ते में जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें बाधा नहीं समझ के, सीखने का अवसर समझ के, और वो आगे बढ़ जाते हैं
1: निश्चित तौर पर। और बहुत आदमी अनुशासन का मतलब बुझे छत, समय पर उठ गलों, काज कर लेलों, मुदा अपन लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, अपन समय के प्रति जिम्मेदारी और अपन कार्य के प्रति निरंतरता, यह है अनुशासन।
0: बहुत ही बड़ी बात कही है आपने।
1: हाँ। जे व्यक्ति अपन मन में, वाणी में और कर्म के अनुशासित कर ले छत, वो बुझियो तो आधा अहाँके सफर तय कर ले।
0: बिल्कुल, और समय की बात आपने की है, तो अनुशासित व्यक्ति अपने समय का बहुत ही सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्वयं को बेहतर बनाते हैं ऐसे व्यक्ति। कभी भी असफलता से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए हम सभी को। अनुशासन वह शक्ति है जो सही समय पर सही कार्य करने की प्रेरणा देती है। और आपने कहा कि जो समय का महत्व देते हैं, समय प्रबंधन, समय का महत्व देना तो हर किन्हीं के लिए आवश्यक ही है, लेकिन समय के साथ साथ जो हम समय पर ये काम कर लिए, वो काम कर लिए, इसके साथ ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान देना होता है कि पहले, बहुत पहले से बैठे किसी विद्यार्थी की बात ले लें, तो कितने बच्चे को देखा जाता है कि पूरे 3 महीने 4 महीने वो आराम से पढ़ाई पे उतने अधिक ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जैसे ही परीक्षा का समय नज़दीक आता है या फिर 2 दिनों में है, तो तब वो जाके बहुत अधिक पढ़ने लगते हैं, बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है या फिर वो उतनी अच्छी तैयारियाँ नहीं कर पाते हैं जो उनके लिए चाहिए। तो समय प्रबंधन अनुशासन का कह सकते हैं कि सबसे पहला सबक है, टास्क है
1: निश्चित तौर पर। और अय के लिए अहाँ के किछ महान लोक सब जे छथि असाधारण कोनो काज नहीं करे छथि, वो साधारणे काज के असाधारण अनुशासन के संगे करे छथि। रोज एक समय पर पढ़नाय, काज केनाय, सोनाय, सुतनाय, यह सफलता के नींव अछि। और सबसे पैघ गप अछि कि लक्ष्य के निर्धारण केनाय। बिना लक्ष्य के निर्धारण केनाय, अगर हम सब अनुशासन में कोनो काज कइए रहल छी तो मुदा किया कर रहल छी से पते नहीं अछि। सबसे पहले तो अपन लक्ष्य के निर्धारित कर लिए, चाहे पढ़ाई हुए, व्यापार हुए, कोनो कला के क्षेत्र में हुई या फिर सेवा के दिशा में हुए। जखन अहाँ के लक्ष्य पता रहो, तखन फिर अहाँ अनुशासन के संगे वो लक्ष्य तक केना पहुँच सके छी, तखने अहाँ सफल भ सके छी।
0: सही समय पर जागना, सही समय पर सोना, या हमारे आज के दिन में क्या कुछ काम हमें करने हैं उसमें भी क्या सबसे अधिक आवश्यक है, इन सब बातों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और नियमितता जो है वो बहुत ही बड़ी बात है हमारे दैनिक जीवन में अपने कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। हम सभी को अनुशासन को अपने दैनिक जीवन में अपनी आदत बनानी चाहिए। इसके लिए जो हम सभी नियमितता को निश्चित रूप पे कि सही समय पर, आज हम 10 बजे नाश्ता किए हैं, कल जाके 12 बजे खाना खाते हैं, तो इस तरह से जो है हमारे स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना होती है। और फिर जो लक्ष्य निर्धारण

0: आपने बताया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम पहुंचने में बहुत ही देर कर देते हैं। और समय का सदुपयोग, नियमित अध्ययन, स्वस्थ दिनचर्या, सकारात्मक सोच, तो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना, ये सब जो है सफलता के यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। या ऐसे कह सकते हैं आशीष जी की सफलता अनुशासन, धैर्य और परिश्रम का ही परिणाम है। अनुशासन है आपके अंदर, धैर्य है, और परिश्रम आप करते हैं पूरे मन से, सच्चे मन से, तो सफलता कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी।
1: और आत्मनियंत्रण भी बहुत बेसी जरूरी है। टीवी, मोबाइल, आलस और बहाना, ये सब सफलता के दुश्मन है। अनुशासित व्यक्ति जो होइ छथि, चाहे कोनो वयस्क होत, बच्चा से लोक पैघ तक, बूढ़ होत, सब व्यक्ति के लेल अनुशासन जरूरी छन। क्योंकि अहाँ कोनो काज कर रहल छी, बिना अगर अनुशासन के करब तो अहाँ ओ काज के टाल देबे, आइ नहीं करब काल करब, काल्हि नहि आ परसू पर चल जाए तो काज। मुदा अनुशासित व्यक्ति काल्हि परसू नहि कऽ के एखन ओ काज के दिशा में अपन हुनका पता रहै छनि, समय वएह समय में काज करै छनि
0: निश्चित तौर पर। और जब हम पूरी तरह अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तो सफलता की नई ऊंचाइयों पर अवश्य ही पहुंच पाएंगे। और आशीष जी, हम सभी जानते हैं कि 1 से 7 अगस्त यानी कि स्तनपान सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो और जैसे कि इतिहास में हम सभी ने बहुत अधिक बातों की चर्चा की थी आज के दिन का, तो 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में भी मना, जो कि जागरूकता बढ़ाने के लिए कि बच्चों के लिए माँ का दूध कितना आवश्यक है, इसके लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है। माँ का दूध अमृत से कम नहीं है, इसलिए जन्म के 1 घंटे बाद माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चों को पिलाया जाता है, जिससे बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। और कला की बात हम सभी किए, तो आशीष जी, कला मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ने वाली सृजनात्मक शक्ति है, जो कि भावनाओं को शब्द, रंग, स्वर, नृत्य और रूप के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। भारतीय लोक चित्र की विविध परंपराएं, ये हम सभी जो लोक चित्र है, कला बहुत तरह के होते हैं, कला केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है आशीष जी, बल्कि संस्कृति, सभ्यता और मानवीय संवेदनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का माध्यम है। कला के अनेक प्रकार को हम सभी जानते हैं, जैसे कि लोक कला है, साहित्यिक कला है, प्रदर्शन कला है और दृश्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय लोक चित्र को विविध परंपराओं के विषय में, तो जिसमें प्रमुख है बिहार की मधुबनी चित्रकला, जो मिथिला की धरोहर मानी जाती है आशीष जी। इसे प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है, इसमें देवी देवता के, विवाह के जो अनेक तरह के जो दृश्य होते हैं, विधि व्यवहार होते हैं, उनका चित्रण किया जाता है कपड़ों पर, या फिर पोस्टर बनाया जाता है, इन सब कचनी और भरनी के द्वारा इसे बनाया जाता है। मुख्य रूप से ये जो पशु पक्षी, प्रकृति का जो दृश्य है, ये सब दर्शाया जाता है इसमें।
1: और गौप करी तो अपन सबका जो देश है से लोक कला और संस्कृति के देश से कहले जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अपन सबका देश में देखे अहाँ के दीवार पर, फर्श पर, कागज पर बहुत रास
0: और
1: सजावट।
0: अब तो हाँ बिल्कुल, अब तो कपड़ों पर भी, जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उस पर भी तरह तरह के लोक चित्र को उकेरा जा रहा है। बिल्कुल,
1: और ये खाली सजावट भर नहीं है, ये हमारे अहाँ का आस्था, पावन, खेती और जीवन के दस्तावेज के तौर पर संरक्षित है। ऐसे हम अहाँ अपन पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आबि रहल छी, जकरा हम सब कह सकै छी भारतीय लोक चित्र।
0: बिल्कुल,
1: ई स्कूल सब में नहीं सिखाएल जाते है, ई अपने घर पर लोक एक दूसरा से सीखते आबि रहल छथि, यानी कि पीढ़ी के एकटा परंपरा के तौर पर एकरा हम सब अहाँ के आगू बढ़ा रहल छी। और आप तो पहचान बना रहे हो सबठाम चित्रकला सब।
0: हाँ बिल्कुल, विदेशों में भी, महाराष्ट्र की वारली चित्रकला की यदि बात करें तो वह सफेद रंग से मिट्टी की पृष्ठभूमि पर मानव आकृतियां, नृत्य, खेती और ग्रामीण जीवन के सरल रूपों को दर्शाना। वहीं यदि मध्य प्रदेश का गोंड चित्रकला भी बात करें तो वो कम नहीं है, इसमें बिंदुओं और रेखाओं के माध्यम से प्रकृति, पशु पक्षी और लोक कथाओं का चित्रण किया जाता है।
1: और अगर जखन गप कर रहा छी तो हमर सबके पड़ोसी राज्य अहाँ के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गप कह ली पटचित्र के।
0: हाँ।
1: उड़ीसा के रघुराजपुर और पश्चिम बंगाल के, खास करके एक विशेषता है कि कपड़ा और तार के पत्ता पर बारीक ब्रश से चित्र बनाओल जाते चमकीला प्राकृतिक।

0: शब्दक उपयोग होइत अछि। एहिमे खास कऽ के जगन्नाथ जी, राधा कृष्ण, रामायण और महाभारत के कथा के सम्मिलित कयल जाइत अछि।
1: निश्चित तौर पर
0: चित्रकार एकरा गाबि के सुनबितो छथि, जेकरा पटुआ संगीत कहै छी हम।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ी जानकारी दी अपने। बात करते हैं राजस्थान की फर चित्रकला की, यदि आशीष जी, तो हम पाते हैं कि इसमें लंबे कपड़े पर लोक देवताओं और वीर गाथाओं का चित्रण होता है। और वहीं भारत की बात करें तो लोक चित्र की
0: रोके ले चाहब, खास कर के यहो में एक टा किछ अछि कि भोपा जाति के लोक सब जे छथि राति भरि एकरा खोलि के जे 15-30 मीटर फुट लंबा कम कपड़ा पर लोक कथा रही
1: बनाया जाता है, तकरा
0: गीत के संग संग कथा सुनबै छथि।
1: बहुत बढ़िया, जो चित्रकला उस पे बनाया गया है उसके बारे में जो है वो विशेष रूप से और विस्तार से उसे बताते हैं अभिनय के द्वारा, नृत्य के द्वारा। तो ये सभी है। और देखिए ना, भारत की लोक चित्र परंपराएं देश की सांस्कृतिक विविधता और लोक जीवन, प्रकृति प्रेम और धार्मिक आस्थाओं के प्रति प्रेम का जीवंत जो है वो स्वरूप है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, आपने सही कहा कि हम सभी सीखते हैं, जो हर क्षेत्र की, जो मिथिला की कला ही की बात हम लोग क्यों न ले लें, तो अपनी माँ से, अपनी दादी से, या घर में और भी कोई जो बड़े बुजुर्ग बना रहे होते हैं उनसे नीचे की जो निचली जो पीढ़ी है वो सीख पाते हैं ये चीज़। और आज ये चित्रकलाएँ भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित कर रही आशीष जी, साथ ही अनेक ग्रामीण और जनजातीय कलाकारों के लिए आजीविका का भी महत्वपूर्ण संसाधन जो है बने हुए हैं। ये जिस क्षेत्र का जो लोक चित्रकला है वो उसके माध्यम से वो सभी धनोपार्जन कर रहे हैं और नाम तो हमारे देश का विदेशों में हो ही रहा है, प्रतिष्ठित हमारे देश को कर ही रही है ये लोक चित्रकला।
0: चर्चा सब कहते रही कि केना कऽ कऽ हमर सबके चित्रकला सब जे अछि से अपन एकटा पहचान तऽ छलहे लोकल स्तर पर, जे पहचान छलै आब किछु अहाँके देश विदेश धरि भऽ रहल अछि।
1: और इसे सहेज के हम ये भी बात करना चाहेंगे कि इस जो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने वाले जो ये कला है लोक चित्रकला, जो देश के विभिन्न भागों की बात हमने की है, राजस्थान की बात की है, बंगाल की बात की है, बिहार मिथिला क्षेत्र की बात की है, तो हर जगह की, तो वो बहुत ही आवश्यकता है कि इस लोक चित्रकला को सहेज के रखने की, और इसके लिए जो आज की जो पीढ़ी है उन्हें रुचि लेनी होगी और बढ़ चढ़ के इसमें इन कार्यों में हिस्सा लेना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा।
0: आप समय हमरा सबके तेजी से बीत रहल है, तो बीतल समय में जखन जानकारी सबके गप कर रहल छी तो समसामयिक घटना के सेहो चर्चा करैत गीत नाद के दिस हम सब अपन आगू बढ़ी। तो वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के लेल 7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा भ गेल अछि। और गप करी तो देश में जत सड़क हुए ओत पैदल चले के लिए अलग से अतिक्रमण मुक्त जगह हेबाक चाहिए से सुप्रीम कोर्ट कहलत है। और पहल सोमवारी पर 2 लाख कांवरिया देवघर में बाबा के जलाभिषेक कलत। और बाइक एम्बुलेंस के ट्रांसपोर्ट वाहन के दर्जा भेटत आब, इ केंद्र कहलत है। और एक उपलब्धि है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज भेल है, 18 साल के नाथन थॉमस सबसे कम उम्र के प्रोफेसर बन गया, 306 साल पुरान रिकॉर्ड तोड़ था वो। हुनकर अनुसार माँ जे अहाँ के अनजाना में हुनका जे सब चीज सिखबैत रहथिन वह हुनकर जेहन में बसे चल गेलन और एक इतिहास बन गेल।
1: बहुत ही बड़ी बात। और कार्यक्रम में समय अब समापन की ओर है, तो चलते चलते सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: आब हमरा सबके पहिले जेना समय धीरे धीरे खत्म होइके दिशामे छल तऽ हमसब आगू बढ़ैत रही आओर चाहलहुँ कि अनुशासनके सङ्गे आगू बढ़ी आओर अनुशासन रहनाइ हमरा अहाँके यानि पैघ लोकके कर्तव्य बनैत अछि सबसँ पहिले, वएह देखिके बच्चा सीखै छथि।
1: बिल्कुल,
0: तऽ हमसब ई चीजके ध्यान राखी कि हमसब अनुशासित रहब तखने बच्चा अनुशासित रहतै।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और अनुशासनमे समय प्रबन्धन की बात हम सभी ने की, तो समय अब हम सभी को इजाजत यहाँ पे नहीं दे रही कि और भी बातचीत करें, अपने श्रोताओं के साथ जुड़े हुए रहें, तो मिलेंगे फिर अगले अंक में, तब तक के लिए प्रतिभा प्रीति को
0: और हमरा आशीष के दिया विदा।
1: नमस्कार मिथि।

0: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आज सुनिए रविवार 2 अगस्त को प्रसारित हेलो जिंदगी के संपादित अंश दोपहर 12:30 पर। ये आकाशवाणी दरभंगा है, समाचारों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें।
2: वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की।

0: मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं, और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य

0: भागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज

0: वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लिमानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लिमानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुआसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो

0: आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के उहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान

0: 1979 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से इलाहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के अरकान पार्लियामेंट में NDA की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहिरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे के सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदाम करने के लिए आज की ये मीटिंग हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस दो रोज़ा मीटिंग का अहतमाम भारत की ब्रिक्स की सदारत के खास मौजू मजबूती इख्तरा इश्तराक और पायदार निज़ाम के लिए तामीर के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ आला पॉलिसी साज अहलकार माहरीन नीज बदउनवानी की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्क असासों की बाजियाबी बदउनवानी से निमटने और हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की खातिर बैनुल अक्वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि दिल्ली सरकार और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने या बंद करने के लिए आजाद हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने वजाहत की है कि 28 जुलाई के हुक्मनामे जिसमें मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी गई थी का इतलाक सिर्फ उन अफराद पर होगा जिन पर संगीन और घिनौने जराइम के इल्जाम हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अदालत ऐसे हालात और तरीक़ेकार के लिए एक जाब्ता मुरतब करेगी जिसके तहत पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सके। बेंच ने मजीद कहा है कि वह पुलिस की मुबैना ज्यादतियों की तहकीकात के लिए पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने या मुतबादिल के तौर पर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकती कमेटी कायम करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक मरकजी जवाबित 1979 में तरमीम के लिए एक मुसविदा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए दो पहियों वाली रोड एम्बुलेंस मुतारिफ कराने की तजवीज पेश की गई है। वजारत ने कहा है कि इस मुजवजा हंगामी एम्बुलेंस सर्विस से इमरजेंसी की सूरत में फौरी रसाई मुमकिन होगी और दूर दराज इलाकों में तिब्बी इमदाद की फराहमी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। खुराक से मुतालिक इंजिबाती इदारे FSSAI ने डाबर इंडिया को 100% दावे का इस्तेमाल करते हुए शहद, गाय का घी और खुर्दनी तेल जैसी कई अशिया फरोख्त करने से रोक दिया है और कहा है कि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI ने बताया कि उसने 100% का गुमराह कन दावा करने वाली गजाई अशिया की फरोख्त के मामले पर डाबर इंडिया लिमिटेड को ममानियत से मुतालिक हुक्म जारी किया है। इन अशिया में शहद, सेब का सिरका, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, नारियल पानी, कोकोनट मिल्क

0: AIR at 90.
1: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

0: की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
3: इसलिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें, ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
2: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
3: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
0: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों से किया पराजित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के नाम दर्ज FIR वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक होगा हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। और मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जीत मिली है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया है। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 मत मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 14,273 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। वे अपना जमानत भी नहीं बचा सकीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रशांत किशोर को इस जीत के लिए बधाई दी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो धारा 79 के अंतर्गत उन्हें दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कल इस अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बताया गया कि 12 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इस यात्रा में संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं 13 अगस्त को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर का खतरा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसदों ने भी भाग लिया था। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा वर्तमान में पटना से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 4 अगस्त को राज्य के पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा तथा सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या

भी उत्पन्न हो गई है। इस बीच बांका जिले में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग झुलस गए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज चेहल्लुम पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिया, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कुर्बानी अमर है और ये समाज को हर दौर में रास्ता दिखाती है। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई प्रभावित है। हड़ताल के 6 दिन आज भी विभिन्न स्थानों पर कूड़ा उठाव और निस्तारण का काम ठप है। बारिश के मौसम में गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लगने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया गया है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। इधर नगर निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था में बाधा डालने और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त मानव बल तथा वाहन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्रशासन ने एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, साथ ही अतिरिक्त आर्थिक दंड भी लगाया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों के लिए 6 अगस्त तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जा रही है। रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 2 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन जयनगर, लखनऊ और राजगीर वाराणसी के बीच परिचालित हो रही है। इधर श्रावणी मेले के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने लखीसराय के अशोक धाम पर 6 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव करने का निर्णय लिया है। पटना के मोकामा और बरौनी के बीच राजेंद्र सेतु से समानांतर बने नए रेल पुल को चालू करने और दानापुर तथा सोनपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग कार्य होंगे। इसके मद्देनजर रेलवे ने 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक अलग अलग तिथियों पर 339 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। वहीं 384 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बांका जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के निजी सहायक ओम प्रकाश मंडल और रात्रि प्रहरी जागेश्वर मंडल को 1,26,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग के आरोप में की गई है। इस मामले में 7 अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी जिले के जयनगर में पदस्थापित तत्कालीन SDM गुलाम मुस्तफा की 49 लाख रुपए से अधिक चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली गई। आय से अधिक मामले में निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सनिचरा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान एक 4-पहिया वाहन से 35 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सोनमनी गोदाम थाना क्षेत्र के डुब्बा टोली से SSB की टीम ने नेपाल के रास्ते बिना पासपोर्ट वीजा भारत में प्रवेश करते 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। SSB के 56वीं बटालियन के द्वितीय कमान सह कमांडिंग अधिकारी नितिन गुप्ता ने यह जानकारी दी है। पटना पुलिस ने बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी चक में पिछले दिनों हुई लूटपाट की घटना का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, कारतूस और लूटे गए चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। राजधानी पटना में आज से 6 अगस्त तक 52वीं बिहार राज्य जूनियर बाल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 16 टीमें भाग लेंगी। सभी टीमों को 4 पुलों में विभाजित किया गया है। इस प्रतियोगिता के आधार पर बिहार टीम का चयन किया जाएगा। फ्रांस में संपन्न 19वें फेस्टिवल इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता में पटना के रयान मोहम्मद ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नॉर्म प्राप्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रशांत ने भाजपा का बांकीपुर किला ढहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जीत पर दी बधाई। दैनिक जागरण ने इसी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, भाजपा के गढ़ बांकीपुर में प्रशांत किशोर की सेंध।
दैनिक भास्कर ने बर्निंग ट्रेन शीर्षक से लिखा है, समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर में लगी आग।

500 यात्री बचे। प्रभात खबर लिखता है राम मंदिर ट्रस्ट में हुआ बदलाव, आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने छोड़ा पालक का पद। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी, घर के पास ही रहेगा सेंटर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों से किया पराजित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के नाम दर्ज एफआईआर वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक होगा हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। और मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
1: स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आसमान में बिजली के चमकने गरजने कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी प्लास्टिक बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: दोस्तों आज हम बात करेंगे फिरोज शाह मेहता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी 4 अगस्त 1845 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी। एक मुमताज हिंदुस्तानी सियासतदान, वकील और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी अराकीन में से एक थे। बंबई के शेर यानी लायन ऑफ बंबई के तौर पर जाने जाने वाले फिरोज शाह मेहता ने हिंदुस्तान की इब्तदाई कौम परिस्ताना तहरीक और बल्दियाती नज़में हुकूमत में कुलीदी किरदार अदा किया। सामईन, फिरोज शाह मेहता की पैदाइश बंबई में एक पारसी ताजिर खानदान में हुई थी। इन्होंने मास्टर की तालीम एलिफिस्टन कॉलेज से किया। 1968 में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की तालीम हासिल की। बाद में उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बंबई की बल्दियाती हुकूमत में नुमाया किरदार अदा किया। उन्हें बंबई म्यूनिसिपल एक्ट 1872 यानी 1872 का मुआमार माना जाता है और वो 4 बंबई के सदर बने। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानियों में शामिल थे और 1890 ईस्वी में कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस के इजलास के सदर मुंतखब हुए। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तिलंग के साथ मिलकर ये तंजीम कायम की। 1913 ईस्वी में एक मशहूर कौम प्रस्त अंग्रेज हफ्ता रोजा अखबार जारी किया। 1913 ईस्वी में एक मशहूर कौम प्रस्त अंग्रेजी हफ्त रोजा अखबार जारी किया। बरतानवी हुकूमत ने उनकी कानूनी खिदमात के एतराफ में उन्हें सर के खिताब से भी नवाजा था। समाजी और सियासी खिदमात करते करते दुनिया के इस अजीम व मातवर शख्सियत की 5 नवंबर 1915 को वफात हो गई। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मुज़ाकरा, हमारा माहौल और पेड़ पौधों की अहमियत। इसमें शिरकत है नुसरत नदीम और जावेद निजम अख्तर की। निजामत करेंगी शगुफ्ता परवीन।
1: कुदरत ने हम इंसानों को बहुत सारी नेमतें दी हैं, जिसमें से एक नेमत है पेड़ पौधे। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारा माहौल और पेड़ पौधों की अहमियत उनवान से आज हम बात करने जा रहे हैं और इस मौजू पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुसरत नदीम, जो एक टीचर हैं, और जावेद अख्तर साहब, जो एक सहाफ़ी हैं। आप दोनों का हम इस ख़ास पेशकश में खैर मकदम करते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।
1: सबसे पहले नुसरत नदीम साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेड़ पौधों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है।
2: पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे हमारी ज़िंदगी में तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, इनफैक्ट हमारे आबो हवा को साफ करते हैं। इतनी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं। पेड़ अगर नहीं होंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। वो हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हमारे आस पास एटलीस्ट 7 to 8 पेड़ ज़रूर होने चाहिए हमारे आस पास।
1: जब बात आबो हवा की निकल करके आई है तो जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तेज़ी से आजकल पेड़ कट रहे हैं और शहरों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी फिज़ाओं में आलूदगी बहुत बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम जो है वो चले आए हैं बहुत बड़े घर से निकल करके अपार्टमेंट में, तो फिर वहाँ पर हम अपनी आबो हवा को कैसे साफ रख सकते हैं और ऐसे कौन से पौधे हैं जिसको हम लगा करके अपने आस पास हरियाली को पा सकते हैं।
3: ये बात बिल्कुल सही है कि आज रिहाइश की वजह से जो खेत या काश्तकारी जो होती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उसकी जगह हमारे रिहाइशगाह यानी मकानात या फ्लैट्स ने ले ली है। अब जाहिर है ऐसे में ऑक्सीजन की कमी माहौल में तो होना ही है, और इससे आलूदगी पोल्यूशन इससे बढ़ेगा, ये फितरी बात है। और इसको चूंकि पेड़ पौधे हमारे माहौल को मतवाजन मेंटेन करते हैं उसको, तो वो चीज़ें जो है वो उसका बैलेंस बिगड़ेगा, वो तवाज़ुन बिगड़ेगा। तवाज़ुन बिगड़ेगा तो आलूदगी बढ़ेगी, आलूदगी बढ़ेगी तो उसमें सांस लेना, और सिर्फ इंसान ही के लिए नहीं बल्कि हैवानात और इंसानात दोनों के लिए ये मुज़र होगा और नुकसानदेह होगा। अब जाहिर में उसको मेंटेन करना है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो जगह खाली हैं उसी जगह का इस्तेमाल हमें करना है।

0: मसलन अगर फ्लैट्स बना दिए जाते हैं, अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, तो अपार्टमेंट में जो खाली जगह होती हैं, नीचे खाली जगह होती हैं, अगर अपार्टमेंट अगर नॉर्म्स अगर फॉलो करते हैं तो उसमें खाली जगह भी होती हैं, उनको ये बताया जाए, ये अवेयर कराया जाए कि जो कमी हो रही है, जो खेती की जो जमीन थी वो खाली होने से पेड़ पौधे जो कट गए उसकी वजह से जो आलूदगी जो पैदा हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरह के छोटे छोटे पौधे उसको जरूर लगाए जाएं। मसलन आपने कहा कि सहजन, ये जाहिर है अद्वियात और इसमें तिब्बी काम में भी आता है, उसको वैसे पेड़ पौधे या फिर और भी छोटे छोटे जैसे तुलसी है या फिर और एलोवेरा है या इस तरह के जो पौधे हैं, या वो क्यारी बम्बूज हैं जो बांस कहलाते हैं, उस तरह के पौधे लगाए जाएं ताकि उससे वो माहौल को मुतवाजन और मेंटेन रखा जा सकता है। इससे माहौलियात भी मुतवाजन होगा और आलूदगी में भी कमी आएगी। इसके इसके अलावा जो है बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी स्कीम्स भी हुकूमत ने शुरू की है। मसलन अपार्टमेंट या उसके ऊपर छतों के ऊपर उसने कहा है कि आप अगर प्लांटेशन करेंगे तो उसमें उसको आपको हम कुछ उसमें माली एतबार से भी आपको हम मदद करेंगे। तो ये सारी पॉलिसीज के बारे में अवेयर कराना चाहिए, बेदार कराना चाहिए आवाम को, ताकि ये पॉलिसी भी उनके मद्देनजर रहे और उसको वो मेंटेन कर सकें।
1: बात अगर करते हैं इस बात की कि भी पॉलिसी, तो चूंकि हुकूमत ये चाहती है कि उसके जो आवाम है वो हमेशा सेहतमंद रहे और सारी चीज़ें अच्छी रह सकें आसपास, इसीलिए पॉलिसीज आती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे जान नहीं पाते हैं, उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं या फिर थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ये बात बहुत अच्छी निकल करके आई कि अगर हम पेड़ पौधा लगाते हैं और उस पर भी हमारी हुकूमत हमारी मदद कर रही है तो हमें आसपास इस काम का ख्याल रखना चाहिए। और अभी चूंकि आपने कहा कि छत पर भी हम लगा सकते हैं सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे नुसरत साहिबा कि चूंकि बदलता मौसम तो हमेशा बदलता है, तो बदलते मौसम में जैसे अभी गर्मी है, फिर आने वाले वक्त में बरसात होगी, फिर ठंडी आएगी, तो इस बदलते मौसम में हम अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उसका ख्याल हम कैसे रखें?
2: जैसे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन्हें हम छाँव की तरफ रख देंगे, और गर्मियों में जिन पेड़ों को पानी की ज़रूरत है उन्हें हम टाइम टू टाइम ज़्यादा पानी डालेंगे। एलोवेरा है ये, उसमें ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 1 से 2 दिन तक बिना पानी के भी रह सकते हैं, ज़िंदा रहते हैं, तो उसी तरह के प्लांट्स का हमें चूज़ करना चाहिए जो बदलते मौसम में रह सकें और हमें ऑक्सीजन दे सकें। जैसे तुलसी है, तुलसी का पौधा हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। एलोवेरा है जो जिससे बहुत सारे मेडिसिंस हैं, हमारे हाथ चल जाते हैं, वो भी हमें बहुत फ़ायदा करता है, हमें कूल देता है, उससे बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, हम अपने घरेलू ज़िंदगी में उससे बहुत यूज़ कर सकते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ऐसी तुलसी, पीस लिली है, वो भी 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है और हमारे एटमोसफियर से जो पॉल्यूटेंट एयर है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह पौधों का सिलेक्शन करना चाहिए और बदलते मौसम में हमें उसका ख्याल करना चाहिए।
1: अभी आपने कहा कि बदलते हुए मौसम में, मान लीजिए कि अभी गर्मी है, सपोज के गर्मी का जब मौसम होता है तो भी हम एक रूटीन रहता है लोगों का बना हुआ कि हम सुबह के वक्त में ही पानी देते हैं
2: नहीं,
1: जिस पौधे को ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर क्या, जैसे आप ऑफिस के लिए मान लीजिए निकल गए तो फिर पीछे में आपका उन पौधों के लिए क्या आप करेंगे इंतज़ाम कि आपके पीछे में भी उनको सही से धूप भी मिले, छांव भी मिले और पानी भी मिले? क्योंकि आज के वक्त में तो हम सभी लोग काम हाँ मसरूफ़ रहते हैं, मसरूफियात है, बाहर निकल जाते हैं, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट आप बताना चाहेंगी?
2: अल्टरनेट यही कहूँगी कि उस तरह का हमें ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए कि पानी कैसे टाइम टू टाइम उसमें जाए, अपना उसमें पानी दें या उसे ठंडा में रखें, फिर जब हम आए अपना घर पे आए तो उसमें देखें कि प्लांट्स की क्या हालत है, उस तब पानी उसमें वाटरिंग करें हम, इस तरह से ख्याल रखा जा सकता है।
1: इसी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जावेद साहब कि आपके घर में पौधे हैं, तो अगर हैं तो आप उनका ख्याल कैसे रखते हैं, और अभी इस गर्मी के वक्त में खास करके उनके लिए आप कैसे वक्त निकाल करके और किस तरीके से उसका ख्याल रखते हैं कि आपके ऑफिस जाने के बाद भी उनको सारी चीज़ें मिल सके? क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ हमारा ख्याल रखते हैं हर वक्त, तो हमें भी उनका ख्याल रखने के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है।
0: जाहिर है आज वक्त की किल्लत सबके साथ है, लेकिन एक कुंबा, एक फैमिली सबके साथ है
1: जी, बिल्कुल।
0: इस लिहाज से अपने बच्चों को भी पौधा के तहीं उसको बेदार करें कि बेटे इसकी क्या अहमियत है, उसको अगर बता दें, खा हमारा दफ्तर का वक्त ही क्यों ना हो जाए, जाहिर है बच्चे पहले आ जाते हैं स्कूल से, या अलियां हैं वो अगर घरेलू हैं तो ठीक है, अगर वो भी नौकरी पेशा हैं तो जाहिर है

0: ये बच्चों पर इसका बहुत बड़ा इन्हिसार होगा। बच्चों को इसके लिए तैयार किया जाए, उसको पौधे की अहमियत बताई जाए, तो मेरा ख्याल है कि पौधा जो है वो मेंटेन रहेगा।
1: हाँ, ये बात बहुत अच्छी निकल करके आई कि अगर हम चले जाते हैं तो बच्चे स्कूल से पहले आ गए तो बच्चे भी थोड़ा सा जाकर के एक बार देख लें कोई पौधा ऐसा है धूप में तो उसको मतलब उठा करके, हाँ, दूसरे कोई फर्द है तो वो जाकर वक्त वक्त पे जाकर उसको पानी दे सकें। ये बहुत अच्छी बात निकल करके आई। एक सवाल और आता है जहन में कि चूंकि हम छोटी जगह पर चले आए हैं तो फिर भी चाहते हैं कि कुछ फल ऐसे हों जो हम घर बैठे खा सकें, क्योंकि बाहर से जो भी लेकर के आते हैं उसका जायका बदला हुआ होता है और घर पे जो चीज़ें उगती हैं उसका अलग ही जायका होता है। तो आज भी लोग कुछ उसके ऊपर काम करते हैं जिनको प्लांटेशन से बहुत मोहब्बत होती है, तो ऐसे कौन कौन से फल हैं या फिर ऐसे कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको हम कम जगह पर भी उगा सकते हैं?
2: जैसे इंडोर प्लांट्स में आप आइए तो लेमन है, गुआवा है, तुलसी है, और आप हम लोग जो पम्पकिन कद्दू है, तरई है, ये सब हम बहुत इजीली, टमाटर है, धनिया की पत्ती है, अदरक है, ये सब हम बहुत इजी वे में अपने घर में उसे नेचुरल वे में इसका इस्तेमाल करके
1: इनको गमलों में
2: उगाया जा सकता है एकदम इजी वे में।
1: अच्छा,
2: और इवन हम लोग उसको यूज कर रहे हैं अभी।
1: थोड़ा पेड़ पौधे से मोहब्बत होगी, लगाव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चाहेंगे
2: एक तो आपको नेचुरल चीजें मिलेंगी, उसका टेस्ट अलग होगा और बिना मैन्यूअर के, बिना फर्टिलाइजर के आप वो चीज खा सकेंगे ऑर्गेनाइज वे में,
1: और अपनी हाथ से उगाई हुई चीज खाने में और उसका ख्याल रखने में मजा ही अलग होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, तो हमें ऐसा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि पपीता भी एक ऐसा पौधा है जिसको हम छोटी जगह पर भी उगा सकते हैं,
2: के आसपास अगर छोटा सा भी, अगर आपका कम जगह भी है तो वहाँ भी आप पपीता और अमरूद ये सब
0: पपीता है, टमाटर है,
2: धनिया पत्ती है, बैगन
0: है,
1: हाँ, ये सारी जो सब्जियां हैं, कद्दू है,
0: ये हो सकता है, लोग लगाते भी हैं बालकनी में या फिर खाली जगह पे।
1: अभी बात जब पपीते की आई तो जहन में एक बात आया, एक वक्त था कि जब लोग पपीते के पत्ता को बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी गुजरे हैं जिस दौर से हम लोग 2-3 साल पहले, तो मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे सामीन को बताइए दरअसल कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके इलाज में कौन कौन से ऐसे खास पौधे हैं या पेड़ हैं जिनके इलाज में वो बहुत ही कारगर हो साबित
2: हो। सबसे पहला तो इंडोर प्लांट्स में आपका तुलसी आता है, जब भी हमें कफ की कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कफ तुलसी के पत्ते को चाय में उबाल के खा लेते हैं। पुदीना, पेट के मसले अगर कुछ होते हैं तो हमें पेट के ठंडक के लिए पुदीना की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। नींबू, हमें डाइजेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ पेट से रिलेटेड अगर बीमारियाँ हुई तो नींबू खा लेते हैं। अभी आपने बताया पपीते की पत्ते की, अभी जो डेंगू जो इतने बुरी तरह से फैला था उसमें यही एक दवा थी, पपीते की पत्ते का रस, उसको लोगों ने कितना इस्तेमाल किया। अभी इस थोड़ी देर पहले मैंने एलोवेरा के बारे में बताया, सहजन के पत्ते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत घटता है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बहुत हद तक फायदा उठा सकते हैं इंडोर प्लांट से।
1: ये छोटे पौधे जरूर हैं लेकिन काम बहुत बड़ा होता है। नहीं, सही बात है। बात आपने जो जैसे कही जावेद साहब की बच्चों को रगबत दिलाने की ज़रूरत है, तो सही बात है। आज के मोबाइल वाले वक्त में बच्चे घर पे जब आते हैं तो वो या तो मोबाइल चलाते हैं या टीवी चलाते हैं, लेकिन अगर उनके जहन में ये बात हम डाल देते हैं बच्चों को ध्यान देना है, अगर हमने बालकनी में लगा रखे हैं पौधे तो उनका ध्यान उधर जाएगा, और जब वो उसमें उगते हुए कुछ फलों को देखेंगे या फूलों को देखेंगे तो ज़रूर एक अलग सी फीलिंग्स आती है, एक नेचर्स फीलिंग्स आती है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी दिलचस्पी पैदा होने वाली चीज़ है। तो इसके लिए और क्या करना चाहिए कि हम बच्चों को किस तरीके से उसकी नशोनुमा करें कि हम उनको ये बता सकें कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वो भी अपना एक कीमती वक्त में से जो एक रहता है शेड्यूल उनका पूरे दिन का 24 घंटे का, खेलना है, टीवी देखना है, जो भी चीज़ें करनी है, तो उसमें से वो खास वक्त उनके लिए भी निकालें, अपने पौधों के लिए भी निकालें। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा ये भी बताइए आप। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे,
0: बच्चे मसलन अगर आते हैं खेल कूद के आते हैं या स्कूल से आते हैं, इस गर्मी की शिद्दत है या बहुत सर्दी है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है उस वक्त जैसे ही बच्चे आए उनको रगबत दिलाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि बहुत गर्मी है मम्मी पानी दे दो जल्दी दे दो, उसको उसी वक्त उसको ये बताएं कि जानते हो ये टेम्परेचर ऐसा क्यों हो रहा है, उस टेम्परेचर से उसको कनेक्ट करें उसको माहौलियात को, इन्वायरमेंट को, जो क्लाइमेट आज हो रहा है जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी फोरकास्टिंग ये हो रही है कि इस साल गुज़श्ता सालों से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उसकी वजह जो है वो सिर्फ एक नहीं है, कई वजूहात हैं, कई उसके रीजंस हैं, तो उसको ये बताया जाए कि ये दर्जे हरारत, ये जो है टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम कर सकते हैं, कम से कम अपने जो अतराफ में या आसपास में या हमारे जो अपार्टमेंट में, फ्लैट्स में,

0: जो पेड़ पौधे लगे हैं उसको अगर मेंटेन करोगे तो कम से कम इस घर का माहौल जो है वो मुतवाजन हो जाएगा और वो बैलेंस हो जाएगा, वो टेम्परेचर मेंटेन होगा। इसलिए हो सकता है कि उसको ये रग़बत दिलाई जाए तो वो प्लांट को मेंटेन करने में मददगार मोहिन साबित हो।
1: हाँ, और बच्चे जहां पर अपना हाथ डालेंगे तो जाहिर सी बात है, चूंकि वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है और पेड़ पौधे भी धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो वो मुस्तकबिल ही हैं।
0: और
1: तो
0: बच्चे अगर इंटरेस्ट ले लेते हैं अगर किसी चीज में, अगर उनका वो शौक पैदा हो जाता है, वो तो शौक वो हमेशा के लिए रहता है और वो हमसे ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे अभी जावेद साहब की बात से एक बात निकल करके आई कि अगर हमारे जो हमारा जो अतराफ है, हमारे आसपास का जो एरिया है, अगर एक अपार्टमेंट की बात की जाए तो उसमें हमने जितने पेड़ पौधे लगाए हैं उससे कम हमारे पास का जो माहौल है, जो हमारे जो माहौलियात हैं, जो गर्मी का मौसम है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस रहेंगी। मतलब अगर पौधे इतने ज्यादा तादाद में हैं तो उस अपार्टमेंट के पास का हवा जो होगी तो वो अच्छी होगी। आपसे जानना चाहेंगे नुसरत साहिबा कि ये बताइए कि एक घर या एक अपार्टमेंट के हिसाब से या एक मोहल्ले के हिसाब से कम कितने ऐसे पौधे होने चाहिए और उसको लगाने का क्या तरतीब होना चाहिए जिससे कि उस मोहल्ले की या फिर उस घर के आसपास की जो हवा है वो जो चलती है, चाहे वो लू की शक्ल में ही क्यों ना चले, तो वो ठंडी हो सके।
2: देखिए, सबसे पहले तो नंबर्स ऑफ ट्रीज के बारे में अराउंड अस हम बोलना चाहेंगे कि एक पर्सन को एटलीस्ट उतने ऑक्सीजन की उसको होल लाइफ में ज़रूरत होती है जितना कि 7 ट्रीज एक साथ मिलकर ऑक्सीजन दे पाए। तो उस रेशियो से अगर हम चलेंगे तो हमारे आसपास एटलीस्ट 7 to 8 ट्रीज तो एकदम होने चाहिए जो हमें होल लाइफ उतने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद हमारे आसपास अपार्टमेंट की बात आपने की, तो ज़्यादा जगह तो होते नहीं है, तो हम वैसे ट्रीज़ वैसे प्लांट्स का सिलेक्शन करें जिसके रूट्स कम हों और वो तेज़ी से बढ़ने वाले हों, जिसके और जो वहाँ के क्लाइमेट को वो सूट करे वो प्लांट, ताकि उनको ज़्यादा पानी की ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना पड़े, वो तेज़ी से बढ़ें और ज़्यादा कम जगहों में बड़े हो जाएँ जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकें और अपने आसपास की हवा आबो हवा को प्योरीफाई कर सकें।
1: ये तो हमारी आसपास की बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ वो जो बेजुबान जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं और जो पानियों के अंदर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास नदी का जो निज़ाम है या तालाब का, तो उसके पास भी जो है वो पेड़ पौधे बहुत हद तक काटे जा रहे हैं। तो वहाँ पर के लिए आप क्या बताना चाहेंगे जावेद साहब, उनको किस हद तक वो पेड़ पौधा जो है वो फ़ायदा देता है और किस हद तक उनके वहाँ पर लगाने से उस नदी को फ़ायदा हासिल होगा?
0: बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, मसलन अभी पटना शहर को अगर देखा जाए तो मेट्रो के लिए बहुत सारे पेड़ बेली रोड पे काट दिए गए। इसी तरह से वो पूरे हिंदुस्तान में या पूरे मुल्क में या हर जगह वो नदियों के किनारे या जो कुछ है वो उसको इलाके को बढ़ाने के लिए या तरक्याती काम के लिए डेवलपमेंट के लिए जो पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं। लेकिन सरकार साथ में ये भी कहती है कि जितने पेड़ काटे गए उतने ही फिर पौधे फिर लगाए भी जाएँ, जहां जगह खाली हो वहां पे लगाए भी जाएं। तो ये मुमकिन भी नहीं है कि वो ना काटे जाएं। तरक्की जरूरी है समाज माशरे के लिए, वो भी जरूरी है, लेकिन इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए कि कितने पेड़ पौधे काटे जाएं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस रहे और नुकसान कम से कम हो, और फिर उसका कोई अल्टरनेट मुतबादिल रास्ता भी तलाश किया जाए। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कई चीजें की हैं, फ्री में वो पौधे बांट रहे हैं लोगों को या किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है कि भाई ये प्लांट एक जिंदगी में अपने कम से कम इतने पौधे लगाइए इतने पौधे लगाइए, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन इस पर बाजाबता तौर पर ये नाफिज नहीं हो पा रहा है। इसकी कई वजह है, उसकी वजह एक अहम वजह यह है कि अभी भी माशरे को पेड़ पौधे की अहमियत उस कदर नहीं हो पाई है जैसे दूसरे मुल्कों में जो तरक्याती डेवलप्ड कंट्रीज हैं।
1: बेदारी की सख्त जरूरत है अभी भी, और हमें ये बताना जरूरी है लोगों को कि पेड़ पौधे ही हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। खाना आपको वहीं से मिल रहा है, जाहिर सी बात है, आपको हवा भी वहीं से मिल रही है,
2: ऑक्सीजन भी वहीं से मिल रहा है आपको,
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पानी का भी निजाम उन्हीं पेड़ पौधों के जरिए से होता है,
2: बारिश भी होती है पेड़ों की वजह से, जो एक्स्ट्रा वाटर उसके रूट्स में हुए वही इवेपोरेट होते हैं और जाके वाटर वेपर बादल बनाते हैं और फिर बारिश होती है।
1: कुदरत का बहुत बहुत ही बेहतरीन निजाम है, एक ऐसा साइकिल है जिसके जरिए से सब कुछ चल रहा है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम सभी लोगों की जिंदगी जो है वो बहुत ही बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे हमें कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखने की जरूरत है और सीखना होगा हमें इस चीज को। जैसे आपने कहा कि बेदार करें लोगों को, तो बेदारी तो तब आएगी जब

0: दिल में उसके करने का जज्बा होगा।
1: इससे इससे कदा नजर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये कि वो जैसे रामायण में, महाभारत में या ऐसे दूसरे मजहबी किताबों में, यहाँ तक के इस्लामिक किताबों में भी पेड़ पौधे की बड़ी अहमियत बताई गई, तो उसकी जिंदगी और उसको कैसे मेंटेन रखें और उसकी क्या अहमियत है, उसको बल्कि सवाब का दर्जा दिया गया है कि अगर वो उसकी हिफाजत करें, उसमें भी जिंदगी होती है, उसकी हिफाजत की जाए और उसको कैसे मेंटेन किया जाए, यहाँ इसकी इतनी अहमियत है। अगर वो ना हो तो बारिश इसी की वजह से कम हो रही है,
0: जो इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है तो हम परेशान तो हो रहे हैं, हम एसी लगाते हैं आज के वक्त में, देखा जाए तो उस एसी से हम एक कमरे को ठंडा कर पाते हैं और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं देखा जाए तो।
1: मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि बहुत सारे अभी जो प्लांट्स जो लगाए गए हैं, जो तरक्की के नाम पर लगाए गए हैं, जाहिर है उससे हमारा समाज तरक्की तो ज़रूर करता है, लेकिन जो उसमें से जो केमिकल जो उसका आउटलेट होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, उसको नदियों में बहा दिया जाता है, री यूज किया जाए।

0: बीमारियां भी बढ़ रही हैं देखा जाए तो।
1: मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा वो ये कि बहुत सारे अभी जो प्लांट्स जो लगाए गए हैं जो तरक्की के नाम पर लगाए गए हैं, जाहिर है उससे हमारा समाज तरक्की तो जरूर करता है, लेकिन जो उसमें से जो केमिकल जो उसका आउटलेट होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसको नदियों में बहा दिया जाता है, री यूज किया जाए कैसे या किया जा सकता है या वेस्टेज है वो कैसे, उसका बेहतर इंतजाम नहीं है। सरकारी सतह पर भी इसकी कमी है और सरकार ने कानून रूल तो जरूर बनाए हैं लेकिन उसको नाफिज ठीक से नहीं होने की वजह से वो सारी चीजें होती हैं जिससे हमारे माहौल में कसाफत पॉल्यूशन पैदा होता है। इसको उस सतह पर भी इसको रोकने की जरूरत है, देखने की जरूरत है।
0: बहुत सारी बातें निकल करके आई और इन तमाम बातों के निकलने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि हमें पेड़ पौधों से मोहब्बत करनी होगी, उसका ख्याल रखना होगा और ये सीखना होगा कि अगर वो हमारे बीच नहीं है तो हमारी ज़िंदगी, आसपास के लोगों की ज़िंदगी किस हद तक दुभर हो सकती है। क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है, इस दौर से हम गुजर चुके हैं और हमें पता चल चुका है। तो ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की ज़रूरत है, उसका ख्याल रखने के लिए भी हम सभी लोगों को कोशिश करनी होगी। और इन तमाम चीज़ों के साथ जाते जाते हम जानना चाहेंगे आप दोनों लोगों से, सबसे पहले आप बताएंगी नुसरत साहिबा कि हम ऐसा क्या कदम उठाएं आज के बाद से कि हमारे आसपास में हम एक अच्छे शहरी होने के नाते हम अपने आसपास में किस तरीके से अपने पेड़ पौधों को जोड़ें और लोगों को किस तरीके से बेदार करें।
2: सबसे पहले तो हम अपने जहां हम रहते हैं अपने कैंपस में ही देखें कि हमने कितने प्लांट्स लगा रखे हैं, हमारे घरों में इंडोर्स प्लांट्स हैं कि जो भी हमारे पास जगह है उसमें हमने प्लांट्स लगाए भी हैं या नहीं लगाए हैं, खुद लगाएं, अपने बच्चों को उससे अवेयर करें, अपने पड़ोसियों को बोलें, जहां तक हो सके अपने कैंपस में आप पेड़ पौधों का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तक पेड़ पौधे लगाएं, वैसे पौधे जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, हमें हवा दे पाएं, टॉक्सिक हमारा हटा पाएं, उनका ख्याल रखें, अपने बच्चों को बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, हर को अवेयर करें। तो अगर फैमिली मेम्बर में अगर 5 मेम्बर है, अगर 2 भी कुछ सीखता है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स उसके होंगे ही। अपने आप जहाँ भी बैठती हैं अपने आस पड़ोस से, अपने सहेलियों से, अपने ग्रुप्स में पेड़ के बारे में पॉइंट्स बताएं, डिस्कशन करें, उनको अवेयर करें, इन सब छोटे छोटे कदमों में हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
0: शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, वही वाली बात है। जावेद साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
1: हाँ बिल्कुल, शुरुआत तो खुद ही से करनी होगी और शहर का जो कल्चर होता है वो खास करके उस पर तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है। गाँव में तो अभी भी पौधे हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शहरों में जहाँ अपार्टमेंट का कल्चर हो चुका है या जगह कम पड़ रही हैं तो वहाँ पे ख़ास करके ऐसे हैं कि जैसे वो अपार्टमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि इसमें सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए और ये होना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जो इस तरह के नॉर्म्स हैं, अगर इस नॉर्म्स में इसको भी शामिल कर दिया जाए कि जो खाली जगह हैं उसमें वो प्लांट लाजमी तौर पर कंपल्सरली लगाया जाए जो खाली जगह हैं, और उसमें हुकूमत की तरफ से भी कुछ उसको इनकरेज किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए और इसको एक टीम की शक्ल देके इसके मॉनिटरिंग की जाए कि भाई वाकई अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो इससे एक बेदारी आएगी लोगों में कि पेड़ पौधे की अच्छा इतनी अहमियत है और इसकी हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। चूंकि आवाम नास आवाम जो है वो ये इतनी फिक्र नहीं करती और उसको इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए फिर आखिरकार मैं यही कहूंगा फिर बेदारी ही इसकी आखिरी दवा है।
0: बिल्कुल बेदार होना पड़ेगा हमें, और जब हमारे अपार्टमेंट में हरियाली होगी तो खुद बखुद दूसरे लोग देख करके
2: उससे करेंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उसको सीखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरियाली ऐसी चीज है कि आंखों
2: को अच्छी लगती है,
0: जहन को खुद बखुद वो खींच लेती है अपनी तरफ। तो इन सारी अच्छी बातों के साथ सामीन आज के मुजाकरे को हम यहीं पर करेंगे इख्तिताम पजीर। आप दोनों मेहमान का बहुत सारा शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल हमालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: भोर होते उठ जाओ, किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
8: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी आपकी आवाज आपके साथ।
9: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आइए सुने फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार अदाकार किशोर कुमार के गाए कुछ चुनिंदा गीत। किशोर कुमार जिनकी आज पुण्यतिथि है, आज ही के दिन 1987 में, श्रोताओं हम एक बार फिर से बता दें, किशोर कुमार जी की आज जन्म जयंती है। आज ही के दिन 1929 में उनका जन्म हुआ था, 13 अक्टूबर 1987 में उनका निधन हो गया था।
1: बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
0: किशोर कुमार न सिर्फ हरफनमौला कलाकार थे, उन्होंने अभिनय बड़ा ही जीवंत किया और उन्होंने हर तरह के गाने गाए। कुल 16,000 से अधिक गाने उन्होंने गाए, जिनमें कई भोज मतलब तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के भी लगभग 700 गीत शामिल थे। उन्हें 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और उन्होंने जो भी गीत गाए, आज भी वो गीत हमारे कानों को सुकून दे रहे हैं और उन गीतों को गुनगुनाने में हमें आज भी उतने ही आनंद का अनुभव होता है। कार्यक्रम का यह पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आराधना से।

फिल्म आराधना का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, एस डी बर्मन का संगीत निर्देशन था। श्रोताओं, इसी गीत के लिए किशोर कुमार को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने, जैसा कि हमने बताया, 16,000 से अधिक गाने गाए और 81 फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी सिने जगत का अगर कोई हरफन मौला कलाकार था तो वो किशोर कुमार थे। किशोर कुमार का गाया अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है, सचिन देव बर्मन का संगीत है, आइए सुनें।

और अब लीजिए जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का गीत सुनिए। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से संवारा है और ये जानदार शानदार आवाज़ किशोर कुमार की है।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के गाए कुछ चुनिंदा गीत।

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: बोलेगा तो
1: कसौटी। इस फिल्म में आपने सुना वर्मा मलिक का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया, किशोर कुमार का गाया ये गीत। जुगनू फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी ने लिखा है, एस टी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है और ये आवाज किशोर कुमार की है।

रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा सोना।

और अब लीजिए फिल्म रोटी का ये गीत सुनिए। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और ये आवाज़ किशोर कुमार की है।

किशोर कुमार के साथ ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की, फिल्म थी रोटी। और अब लीजिए किशोर कुमार का गाया ये गीत सुनिए। देव कोहली ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के गाए कुछ चुनिंदा गीत। किशोर कुमार जिनकी आज पुण्यतिथि है, ये है आज की फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

पवित्र पापी का ये गीत आप सुन रहे थे, प्रेम धवन का लिखा और संगीतबद्ध किया। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे किशोर कुमार के गाए कुछ चुनिंदा गीत। जिन फिल्मों के गीत आपने सुने वो फिल्में थी आराधना, चलती का नाम गाड़ी, जॉनी मेरा नाम, कसौटी, जुगनू, रोटी, लाल पत्थर और पवित्र पापी। किशोर कुमार जिनकी आज पुण्यतिथि है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी दरभंगा है। आइए अब सुनते हैं बज्जिका में कार्यक्रम अंगना। आलेख, संकलन और वाचन स्वर विजेता सिन्हा का है और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं मितेश कुमार मिश्रा। तो आइए सुने कार्यक्रम अंगना।

अगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करित हती। अपने सबके बज्जिका के साप्ताहिक कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। आई हम एक बेर फिर से अपने समक्ष उपस्थित हती। देखो, सावन के महीना के शुरुआत हो चुकल है। ये महीना खास के देवों के देव महादेव के समर्पित है। ये महीना के इंतजार हर केकरो रहैया, कि शहर के लोग आ कि गांव के लोग। महादेव के भक्त ये धरती पर हर स्थान पर है। ये सावन के महीना के स्वागत के तैयारी पहले से होइया। कहे के मतलब है, इहे महीना में भगवान भोलेनाथ के लेल भक्त सोमवारी के व्रत करित हतीन। मधुश्रावणी भी इहे महीना में मनायल जाइया। ज्यादातर लोग भगवान शिव के रुद्राभिषेक भी इहे महीना में करावे हतीन। सावन शुरू होए से पहले ही भक्त शाकाहारी धर्म के पालन करित हतीन। इस तरह से देखल जाए तो सावन महीना पूर्ण रूप से भगवान शिव के श्रद्धा भक्ति भाव में लिप्त रहे के महीना है। इस सावन के महीना अपना सबके गांव के लोग सबके लेल भी हरियाली, खुशहाली, उमंग आ गहरा सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक मानल जाइया। गांव के लोग सब में सावन के लेके एगो अलग ही उमंग रहैया। सावन के महीना में गांव घर में किसान लोग सावन के फुहार पड़ते ही अपन खेत में धान के रोपाई शुरू कर देवे थतीन। जिधर भी देखल जाइया तो उधरे हरियाली नजर आवेत है। सूखल धरती हरा भरा चादर ओढ़ लेवेत है, जैसे गांव वासी के चेहरा खुशी से खिल उठैया। महिला सब अपना श्रृंगार में हरा रंग के प्राथमिकता देवे थतीन। मतलब हरा वस्त्र, हरी बिंदी, हरी चूड़ी से महिला अपन श्रृंगार पूर्ण करे थतीन। आ बड़का बड़का पेड़ पर झूला डाल के झूला झूले थतीन आ सावन के गीत गुनगुना के अपन खुशी के प्रकट करे थतीन। देखो, ई महीना में गांव के लोग कजरी आ लोकगीत के रात में चौपाल पर ढोलक मंजीरा के साथ गावे थतीन आ सावन महीना के आनंद उठावे थतीन। इस तरह से गांव के लोग

0: अखनी अपने सब शारदा सिन्हा के गायल ई गीत सुनित रही। देखो निम्मन वाणी के बड़ा ही महत्व होइया। निम्मन वाणी में उ ताकत है जे केहनो से केहनो बिगड़ल काम के बना देवेत है। कोई भी काम हो अगर केकरो से उग्रता से करवायल जाए तो उ नहीं होइया, लेकिन अगर वही काम केकरो से मीठी वाणी बोल के करवायल जाइया तो उ काम बहुत ही सहज आ आसान तरीका से हो जाइया। निम्मन वाणी के अपन सबके जिंदगी में की महत्व है एकरा विषय में आउ एगो महिला से जानत हती हुनकर विचार।
1: बात अहाँ मीठा बोलब बड़ा से बड़ा कठिन समस्या अहाँ के जे है से ओकर समाधान दू पल में हो जाए। कोई समस्या है अहाँ के मीठा बोली है तो अहाँ के तुरंत वो काम बन जाए, आ कटु बोलब अहाँ के वही काम भारी पड़ जाए, कठिन समस्या बन के खड़ा हो जाए, अहाँ वही में उलझ के रह जाए, वो अहाँ के समस्या के समाधान नहीं हुए। बिजनेस के पर्पज से अहाँ कहीं जाए छी तो वहाँ देखियो वहाँ बड़का से बड़का बिजनेस मैन है, ओकर बोली में इतना ताकत हो कि उस तुरंत चार गो के जो है से कस्टमर के पास में रखत, छोटा बिजनेस से दू पैसा से खोलत तुरंत देखबे कि वो बड़का बिजनेसमैन बन जाए। बड़का बड़का बिजनेस है, सब कुछ दुकान में उपलब्ध है, लेकिन ओकर बोली वाणी नहीं ठीक है तो वो जो है से कस्टमर ओका दुकान से भागल फिरत। तो बात यहाँ पर कितना बड़का महत्व रखल के, अहाँ शादी ब्याह रिश्ता करे कहीं भी जाए तो वहाँ भी बातें है कैसन से कैसन रिश्ता है, गरीब के बेटी अमीर घर में चल जाए तो यहाँ भी बातें अहाँ के काम भेल। तो बोली एक ऐसन चीज है, ऐसन वाणी बोलू, मीठा बोलू, सच बोलू, कटु वचन नहीं बोलू, मीठा बोलू, हर जगह पर हर समस्या के समाधान आके होत चलत, कहीं कोई संकट नहीं आए। मीठा बोली बोले वाला के सब जगह जय जय है, कटु आदमी से सब भागे छी। एला जीवन में बात के पर बहुत ध्यान दू कि हम हमेशा मीठा बोली, हमर काम बनत चले।
0: अखनी अपनी निम्मन वाणी के महत्व के विषय में एगो महिला के विचार जानित रही। अब कार्यक्रम में आगे बढ़त हती, अब बात करत हती बात अपन धरोहर के। आई हम बात करत हती बिहार के मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में स्थित एगो प्रसिद्ध उगना महादेव मंदिर के विषय में, जे भगवान शिव के और महान मैथिली कवि विद्यापति के भक्ति के कथा से जुड़ल है। देखो ऐसन मान्यता है कि 14वीं शताब्दी में भगवान शिव विद्यापति के भक्ति से प्रसन्न होके उगना नाम के एगो साधारण सेवक के रूप में उनका साथ रहत रहतीन। लोक कथा के अनुसार ऐसन मानल जायत है कि भगवान भोलेनाथ महाकवि विद्यापति के अनन्य भक्ति आ हुनकर मधुर शिव भजन से प्रसन्न होके उगना नाम से विद्यापति के यहाँ सेवक बन के रहथिन। विद्यापति के गायल भजन सुने के हुनकर इच्छा आ भक्त के प्रति हुनकर प्रेम हुनका विद्यापति के घर सेवक बन के रहे के लेल हुनका विवश कर ले रहथिन। विद्यापति के सानिध्य पावे के लेल भगवान शिव हुनका यहाँ सेवक बन के रहे के निर्णय ले

0: रहथिन। महादेव एगो गरीब असाधारण व्यक्ति के रूप बना के विद्यापति के पास आयल रहथिन आ मात्र दू वक्त के भोजन के बदले सेवा करे के इच्छा जतैलन। भगवान भोलेनाथ विद्यापति के समक्ष ई शर्त रखले रहथिन कि हुनकर असली परिचय केकरो नहीं बतायल जाए। तो अपन इस शर्त के साथ उ उगना नाम से विद्यापति के यहाँ सेवक बन के रहे लगलन आ ई भी शर्त रखले रहथिन कि जे दिन हुनकर असलियत सबके समक्ष आ जायत भगवान शिव उहे क्षण विद्यापति के घर छोड़ अंतर्ध्यान हो जैतन। आ एक दिन ई समय भी आ गेल जब विद्यापति के पत्नी क्रोधित होके उगना के मारे लगल। तब विद्यापति के मुँह से निकल गेल कि उगना कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं शिव हतीन। महादेव के इस सच्चाई सामने आते ही महादेव अंतर्ध्यान हो गेलन। ऐसन कहल जाइए जे स्थान पर उगना अपन असली रूप में विद्यापति के सामने अयलन उहे जगह पर आए उगना महादेव के विशाल मंदिर बनायल गेल। देखो उगना महादेव मंदिर के धार्मिक महत्वता है पर एकरा संगे ई स्थान पर्यटन केंद्र के लेल भी काफी मशहूर हो गेल। ई स्थान पर घूमे यहाँ के इतिहास के जाने दूर दूर से लोग आवेत हतीन। सावन के महीना में भगवान शिव के समर्पित ई मंदिर के महत्व बहुत बढ़ जायत है। यहाँ सावन के महीना में भगवान शिव के विशेष पूजा अर्चना कैल जाइए शिवलिंग के श्रृंगार कैल जाइए आ भक्त जलाभिषेक के लेल यहाँ आवेत हतीन आ भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करत हतीन। उगना महादेव मंदिर में जे शिवलिंग है उ स्वयं भू है अइला ई स्थान और खास हो जायत है। एकर दर्शन मात्र से ही भक्त के सब संकट दूर हो जायत है आ हुनकर हर इच्छा के पूर्ति होत है। त ई पवित्र स्थान पर जहाँ स्वयं शिव प्रकट भेल रहथिन उ जगह पर अवश्य जाय के चाही आ हुनकर दर्शन अवश्य करे के चाही। आउ हम सब मिलके ई प्रार्थना करी कि जेना मैथिली कवि विद्यापति के हुनके साक्षात दर्शन प्राप्त भेल हुनकर साथ प्राप्त भेल ऐसे ही हमरा सबके भी भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त हो। अब आओ सुने थती श्री चंद्र मोहन पोद्दार की ई काव्य पाठ।
1: माय तू हमरा आबे

नै माए तू हमरा आबे दे, हम हूँ तो हर गोदी खेलबौ, तोड़े दूध सजीवन पैबौ, तो हर नया खिलौना बनबौ, माँ तो हर मुस्कान बढ़ैबौ, हमरो त मुस्काबे दे, माए तू हमरा आबे दे, मामा कह के तोड़ा बुलैबौ, उंगली पकड़ के चलना सिखबौ, ठेहुनिया दैत घर में घूमबौ, चल चल के हम खेल दिखैबौ, हमरो त आके खेले दे, माए तू हमरा आबे दे, जूठा बासी भोजन खाके घर भर के सेवा गुहार के, माथा पर रखबौ सब आदेश, मांग न करबौ कोनो विशेष, घर के कोना सजाबे दे, माए तू हमरा आबे दे, तो हर सीख से जीवन जी के, दुन्नू कुल के सपना सी के, जी ले बौ हम आंसू पी के, घर के ज्योति जलतौ घी के, हमरो अरमान जलाबे दे, माए तू हमरा आबे दे, नै ले बौ चूड़ी न मेहदी, नै चाही हल्दी न बिंदी, लुप्त न होए बेटी प्रजाति, भ्रूण हत्या है एक कुरीति, दुनिया के समझाबे दे, माए तू हमरा आबे दे, बचपन बच्चा जाए लगल स्कूल, कुछ घंटा लिल दुनिया भूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, माए बाप के आँख के तारा, अक्षर ज्ञान से लाए तुझियारा,

भविष्य के सपना सजे लागल, स्कूल ड्रेस में दमके लागल, निखरल चेहरा सवरल चूल, बच्चा जाए लगल स्कूल। बहगा फीसा बस्ता के बोझा, रोए बउआ सबके सोझा, तैयो ने माय बाप पसीजे, ठेल ठाल के स्कूल भेजे। धीरे धीरे समझौता कैलक, स्कूल में नयका दोस्त बनैलक। छुट्टी होते मिटैया सूल, बच्चा जाए लगल स्कूल। अब होमवर्क स्कूल से मिले लगल, टास्क पूरा करे ले ट्यूशन धरायल। बच्चा उलझल किताब में, बचपन हरायल सिलेबस में। खेल कूद कम होए लगल, माय बाप कहे आवा अब्बल। नटखटपन के ना द अब तूल, बच्चा जाए लगल स्कूल। रिजल्ट लाबा स्कूल में बेस्ट, हुड़दंग में टाइम न करा वेस्ट। डॉक्टर इंजीनियर से कम की बनबा, पढ़बा लिखबा त खूबे कमेबा। बिनु पढ़ने बढ़िया घर से रिश्ता नहीं तो, काटा में ही त खिलैया फूल, बच्चा जाए लगल स्कूल। हिये से बच्चा कुमलावे लगैया, ओकर प्रतिभा के विकास रुकैया। बच्चा बूढ़ा होए लगैया, बचपन ने जिम्मेदारी अबैया। बचपन के तनि लहराबे द, अमृत समय गवाबा न। जीवन पतता होइया त्रिशूल, बच्चा जाए लगल स्कूल। गाँव के जीवन, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। आम बला गाछी आ पोखर के माछी याद अबैया। हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। चिड़िया के बोली आ बच्चा सबके टोली याद अबैया। हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। हम खोजैत हती भोर के सिंदूरी सुरुज, गुल्ली डंडा आ टायर गाड़ी के क्रेज। अब त होइत है सुबह से साँझ तक पैसा के कवरेज। हमरा खेत खलिहान याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। पहले हर घड़ी शरारत सुझैत रहे, आब त पैसा कमाबे के जुगाड़ है। आब बारिश में भेजनाए आ धूप में खेलनाए बुड़बकई लगैत है। बाबा के दलान याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। पैसा हमरा किनलक, बचपन हमर छिनलक। लेलक हमरा सा मासूमियत, देलक हमरा लालची फितरत। संगी साथी के साथ माघ पूस में घूरा के किनारे आग तपनाए याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। फेर सा वापिस समय के ले न जा सकैत हती, ओझरायल जिंदगी के सोझरा न सकैत हती। हमरा बचपना बहुत याद अबैया, हमरा गाँव के जीवन याद अबैया। बिरहिनी, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल। जारा गर्मी बिरह में बीतल, बिना पिया जवानी बीतल। सैया गेलन कमाबे परदेश, गाँव में मन करैया कलेस। पैसा ले गेल हमर सलहेस, बिलायल है खुशी के लेस। बिरह के आग न होइया शीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल। बिरहिनी के मन तक कुहके, काम देव के बान न चूके। भीजल लकड़ी के आग सुलगे, आँख से डबडब लोड बरसे। वियोग सा जिंदगी है तीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल। पतझड़ में सुखल पत्ता झड़ गेल, हरियर नयका पत्ता फड़ गेल। आम लताम के फल फुलायल, हाय हमर साजन नहीं आयल। सोना सन रूप हमर भैल पीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल। आदर्श पुतौह, बियाह में त लगैया उबटन, घर में बर्तन करैया ढनमन। अपन जन्मल नीक लगैया, अनकर घर के तीत लगैया। बेटी के होय ससुराल में सेवा, पुतौह किया ने पैर दबैया। दामाद करे बेटी के मनुहार, बेटा के कन्या से रहे तकरार। बनल रहे दुनू

0: में अनबन, ब्याह में त लगैया उबटन। दहेज त समाज के अभिशाप बनलिया, दहेज त समाज के अभिशाप बनलिया, रंग रूप त खूब खोजैया, नाक नक्श आ हाइट नापैया, घर भर लेके संतोष न होइया, ससुराल के बादल बरसे भर जीवन, ब्याह में त लगैया उबटन। बहू त चाही एमए बीए, सिलाई कढ़ाई आ चूल्हा फूके, सास ससुर देवर ननद के बिना स्वार्थ सेवा कर दे, काम करे हरदम उ निम्मन, ब्याह में त लगैया उबटन। घर खातिर हो जाए बलिदान, परिवार से चाहे न कोनो प्रतिदान, बहु न कहियो पड़े बीमार, कम खाए करे बेसी सत्कार, बनल रहे निर्मल पानी सन, ब्याह में त लगैया उबटन। जीवन में कहियो न होए उदास, मौन रहे फैलावे घर में प्रकाश, खर्च करे न कहियो घूमे जाए, पर्दा में रहे कभियो हक न जताए, बनबैत रहे हर स्वाद के भोजन, ब्याह में त लगैया उबटन। सबके खिला के सूते जाए, सूरज से पहले उठ जाए, न शौख रखे न करे विद्रोह, ऐसन चाही सबके आदर्श पुतोह, बाल गोपाल से भरल रहे आंगन, ब्याह में त लगैया उबटन।
1: अखनी अपनी श्री चंद्र मोहन पोद्दार की काव्य पाठ सुनित रही। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आगे लिहा, अब शब्द सरिता। शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। बज्जिका के एगो शब्द है हदस, एकर मायने होइया भय या घबराहट। जेना लोग कहत हतन, हमरा भीड़ के देख के हदस हो जाइया, यानी हमरा भीड़ देख के भय हो जाइया या घबराहट हो जाइया। त हदस के मायने भेल भय या घबराहट। सेराना यानी ठंडा होना। जेना कोनो माई अपन बच्चा के कहत हतन, बउआ खाना खा ले नहीं तो सेरा जतौ, यानी खाना खा ले न तो खाना ठंडा हो जतौ। त सेराना के मतलब भेल ठंडा होना। ओकरा बाद एगो शब्द है गरान, एकर मायने है गलानी। जेना लोग कहत हतन, हम हुनकर तनको मदद नहीं कर सकली, जेकरा लेल हमरा बहुत गरान होइया, यानी हमरा बहुत गलानी होइया। त गरान के मायने भेल गलानी। झबही, एकर मायने होइया दूध दुहे वाला बर्तन। जेना गाय या भैंसी के दूध दुहे वाला कहत हतन, झबही दू, हमरा दूध दुहे के है, यानी दूध दुहे वाला बर्तन दू, हमरा दूध दुहे के है। त झबही के मायने भेल दूध दुहे वाला बर्तन। आ अंत में एगो शब्द आवैया चाक, जेकर मायने है सावधानी या ध्यान देना। जेना लोग कहत हतन, छोट धियापुता के घर से बाहर ले जात हती त चाक से ले जाओ, यानी छोट धियापुता के बाहर ले जात हती त सावधानी से ले जाओ, ध्यान देत रहू। त चाक के मायने भेल सावधानी या ध्यान रखना। त ई रहे बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। अखनी अपने शब्द सरिता सुनित रही। त एकरा संगे बज्जिका के ई साप्ताहिक कार्यक्रम अंगना अब सम्पन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने के कैसन लगैया, अपने अपन विचार के एगो चिट्ठी या हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकेत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004 आ ईमेल आईडी है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संग हमरा यानी विजेता सिन्हा के दू अनुमति, त एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

अंगना। अभी आप बज्जिका में हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख संकलन और वाचन स्वर विजेता सिन्हा का था और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। श्रोताओं, हम आपको स्मरण दिला दें, मशहूर गायक अदाकार किशोर कुमार की आज जन्म जयंती है। इस सभा में दिन में 2:30 पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सुनेंगे किशोर कुमार के गाए कुछ चुनिंदा गीत। 12:30 पर आप सुनेंगे रविवार 2 अगस्त 2026 को प्रसारित किए गए कार्यक्रम हेलो जिंदगी के संपादित अंश। विषय है स्तनपान के फायदे, विशेषज्ञ डॉक्टर जमुरत परवीन। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। आज की कलाकार हैं शोभा गोटोक।

इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। कलाकार थी शोभा गोटू, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश

0: प्रताप साहू,
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी,
0: और कंडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी,
1: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कार्य जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं, आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
1: जी,
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
1: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी,
1: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
1: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओ, क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ, तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओ, क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता?

0: क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
1: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी,
1: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
1: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं, क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ, तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओं, क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
1: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है, तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
0: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
1: जी,
0: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
1: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
0: और तो और, विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
1: जी,
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
1: जी,
0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
1: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: जी,
1: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
0: जी,
1: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती,
1: जी,
0: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
1: जी,
0: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
1: जी,
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
0: जी,
1: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
0: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
1: जी,
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक

0: में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो चलो
2: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
3: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे आजा, आजा, आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
4: सर मैं इशिता।
5: मैं हूँ चेताली।
6: मैं शुभेंदु।
7: और मेरा नाम है इंदु।
8: और मैं सोमेश।
3: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
4: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
3: देखो पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
6: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
8: सर फिर क्या होता है?
3: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
8: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
3: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
9: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
4: वाह, कितनी सुंदर बात है।
3: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
10: पौधा।
3: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
10: उल्टा?
3: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
8: फिर क्या हुआ?
3: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
6: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
4: जी सर।
3: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
4: रसपान कैसे करते?
3: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
4: जी सर।
3: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
4: अच्छा अब समझ आया।
3: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
10: जी सर।
5: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं।
4: अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
8: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
11: देखो इतना बड़ा पेड़।
6: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
10: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
5: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
3: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
8: माइक्रोस्कोप?
3: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
4: जी सर।
3: हाँ देखो अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो। देखो बेटा देखो, इसमें देखो

बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर

0: क्या दिखाई दे रहा है?
1: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: शाबाश।
2: हाँ, नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
3: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ, आओ।
4: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया?
4: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
5: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
1: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
5: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
1: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
5: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
3: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
1: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
1: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
3: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
4: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
5: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
5: बहुत अच्छी।
0: अब से एक काम जरूर करना।
5: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
5: थैंक यू प्लांट, थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
6: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
7: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: पांच सात

0: रुपए?
1: तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
2: बालक बोला,
3: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: ये था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब पेश है फिल्म संगीत। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:50 हो चुके हैं। अभी से हमारे साथ बने रहिए 12:30 तक इस सफ़र में, और आप आनंद लेंगे नए फिल्मी गीतों का। शुरुआत हम कर रहे हैं, फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म से विशाल मिश्रा और निकिता गांधी की आवाज़ों से, गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं और संगीत विशाल मिश्रा का है।

जी हाँ श्रोताओं, अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था नेहा भसीन, विशाल मिश्रा और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था बड़े मियाँ छोटे मियाँ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

फिल्म भोला में अभी आप सुन रहे थे जावेद अली को। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं इस समय फिल्म संगीत का।

ड्रीम गर्ल टू। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मीत ब्रॉस, सुनिधि चौहान और दानिश साबरी को। गीत के बोल रश्मि बैराग के थे और संगीत मीत ब्रॉस का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा और इस समय आनंद उठा रहे हैं फिल्म संगीत का।

डेढ़ बीघा जमीन, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे एस्टेविन को।

0: विशाल मिश्रा और शिल्पा राव के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार 2 अगस्त 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर जमुरिद परवीन, संचालन संजय कुमार, प्रस्तुति असद दौद की।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: मातृत्व की पहचान है, शिशु के लिए वरदान है, छुपे हैं औषधीय गुण इसमें, ये माँ का दूध अमृत समान है। हृष्ट पुष्ट रखता बच्चे को, पाचन तंत्र करे मजबूत, 6 माह स्तनपान कराओ, शिशु रहे बीमारी से दूर। शिशु के संरक्षण और संवर्धन का करता काम है ये माँ का दूध अमृत समान है। 9 महीने की गर्भावस्था और प्रसव की पीड़ा से गुजरती हुई सृष्टि को नई संतति देती हुई माँ के हाथों में जब बेहद कोमल गुलाबी नवजात का पहला क्रंदन होता है तो दर्द की अतिरेक से गुजरी माँ के होठों पर ममता की मीठी मुस्कान फैल जाती है, वातावरण खुशगवार और उत्सवी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मातृत्व सुख की अनुभूतियों में डूबी माँ का एक नया अध्याय भी शुरू हो जाता है, बच्चे की संपूर्ण देखभाल का अध्याय। और इस अध्याय की शुरुआत स्तनपान से ही होती है।

नवजात शिशु के रोने, कुनमुनाने, हिचकी, जंभाई, उबकाई पर चौकसी के बीच उसके सही पोषण को लेकर माँ के लिए स्तनपान की चुनौती भी कम नहीं होती। मसलन प्रसव के बाद स्तन में दूध के उतरने न उतरने, स्तनपान कब शुरू कर दें, कब तक कराने और स्तनपान कैसे कराने को लेकर जितने सवाल होते हैं, स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियों को लेकर दुविधाएं भी कम नहीं होती। इन दिनों 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, लिहाजा स्तनपान से जुड़े इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओ नमस्कार, संजय की तरफ से। स्तनपान के फायदे, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय और इस बेहद जरूरी विषय पर आप श्रोताओं को, खासकर हमारी श्रोता बहनों को उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमुरत परवीन।

0: लो जिंदगी। श्रोताओ नमस्कार, संजय की तरफ से। स्तनपान के फायदे, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद जरूरी विषय पर आप श्रोताओं को, खासकर हमारी श्रोता बहनों को, उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमूरत परवीन। डॉक्टर जमूरत आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में कार्यक्रम हेलो जिंदगी में एक बार फिर से स्वागत आपका। नमस्कार, कैसी हैं?
1: नमस्कार, बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल, अभी स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है और इसके पीछे स्तनपान को लेकर जितनी भी जागरूकता की बातें हैं जी, वो होनी भी चाहिए। पहला सवाल जो होगा ना, वो यही होगा कि स्तन में दूध उतरता कैसे है
1: जी।
0: और आगे हम ये भी बात करेंगे कि नवजात शिशु के जन्म के बाद जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसको लेकर आप लोग बहुत जागरूक करती हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा। जबकि पहले की भ्रांति ये थी डॉक्टर जमूरत कि ये जो पीला गाढ़ा दूध है ना, वो वेस्टेज है, मतलब खराब है, ये गंदा है, सफ़ेद नहीं है तो गंदा है,
1: गंदा है।
0: तो लोग उसे हटा देते थे, तब
1: उसको जब विच मिल्क कहा जाता था, वो लोग विच मिल्क बोलते थे कि ये जहरीला है, ये चुड़ैल का उसका ये दूध है।
0: तो
1: जी,
0: वो जो गाढ़ा पीला दूध जो बच्चे
1: जी, जी,
0: को मिलता है जन्म के ठीक बाद
1: जी,
0: उसमें रोग से लड़ने
1: जी एकदम उसमें जी IgG IgM होता है, उसमें आपको इम्यूनोग्लोबुलिंस होते हैं।
0: अच्छा,
1: जो कि बच्चे को बीमारी से बचाते हैं, जो एंटीबॉडीज हम लोग बोलते हैं वो होते हैं।
0: ये सारी बातें होंगी, लेकिन स्तनपान की जो बात है तो ये कि स्तन में दूध उतरने की जो प्रक्रिया है वो क्या है,
1: देखिए
0: अगर सरल शब्दों में बताएं तो ज्यादा बढ़िया।
1: सरल शब्दों में यही बताऊंगी कि जो इम्पोर्टेंस है दूध का वो बच्चे के लिए, तो सिग्नल भी बच्चा ही देता है। जितना बार आप अपने बच्चे को छाती से लगाइएगा वहां से सिग्नल जाएगा। एक हार्मोन होता है जो आसान में प्रोलैक्टिन बोलते हैं, वो दूध बनाता है, लेकिन निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो जब बच्चा का माँ से कॉन्टैक्ट होता है तो सिग्नल जाता है, जो दूध बना हुआ है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से निकलता है। और जितना बार बच्चा सक करेगा, मतलब का मतलब जितना बार बच्चा खींचेगा चूसेगा, तो क्या होगा, वो सिग्नल और ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा दूध उतरेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जितना बार आप अपने बच्चे को छाती में लगाइएगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा, जितना कम लगाइएगा दूध का अमाउंट उतना कम हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल ही नहीं जाएगा।
0: अब तो बच्चे के जन्म के बाद
1: जी
0: रिकमेंड किया जाता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो
1: जी
0: स्किन टच तुरंत कराना है
1: जी। उसमें है कि पुरैन लगा हुआ ही है तभी, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन, पुरैन लगे हुए बच्चे को आप माँ के सीने पर डालिए, और अगर पॉसिबल हो, अगर नर्स कोई फीड करा सकती है तो उस टाइम भी आप फीड करा सकते हैं
0: जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार सर, मोहन पासवान बोल रहा हूँ
0: जी। मोहन पासवान जी बताइए, क्या जिज्ञासा है?
2: मैडम जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्तनपान से बच्चों का पोषण, शरीर का विकास और चेतना का विकास होता है, तो माताओं को क्या से फायदे होते हैं? मैम जी,
0: जी।
2: दूसरा है कि मैडम जी बच्चे होते हैं, माताएं स्तनपान कराने लगती है, माताएं कैसे समझे कि मैं अपने बच्चों को 24 घंटे में सही मात्रा में दूध पिला रही हूँ, जिससे शरीर का विकास सही तरह से हो सके।
0: अच्छा, अच्छा।
2: तीसरा है कि वर्तमान समय में बच्चे अधिक मोटापे का शिकार हो रहे हैं, कुछ बच्चे काफी दुबला पतला हो जाते हैं, मैम जी इससे बचने के लिए कितने समय माताएं अपने बच्चों को स्तनपान
0: कराएं
2: जी?
0: मुख्य रूप से बहुत सारे सवाल आ गए हैं, सुनिएगा मोहन पासवान जी रेडियो पर, एक एक कर सारी चर्चा हम करेंगे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहन पासवान जी एक सवाल नहीं करते हैं, जब करते हैं तीन चार सवाल करते हैं। पहला सवाल ये था कि स्तनपान से बच्चे को तो फायदा है ही, ये तो तय है, माँ को क्या फायदा है। दूसरा सवाल था कि कब कब दूध पिलाना है। तीसरा सवाल था कि कोई बच्चा मोटा हो जाता है, कोई दुबला रह जाता है स्तनपान के दौरान। सवाल ये आया था कि स्तनपान का जो महत्व है, और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये अमृत है
1: जी,
0: दूध माँ का दूध अमृत है, कैसे है ये समझाइए थोड़ा।
1: अमृत मतलब ऐसा चीज जो उसको डेवलपमेंट कराए, ऐसा चीज जिससे इंसान का ग्रोथ हो, है ना, तो जो बच्चे के लिए मतलब उसमें हर चीज है, सब भगवान उस दूध को बना है कि जो बच्चा को चाहिए एग्जैक्टली वही है, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जैसे विटामिन चाहिए। एक हम हमेशा पेशेंट लोग को ये चीज़ समझाते हैं कि गाय का दूध गाय के बच्चा के लिए, माय का दूध माय के बच्चा के लिए, मतलब कि 6 महीना के अंदर आपको बच्चे को गाय का दूध नहीं देना है। क्यों? क्योंकि गाय का बच्चा बड़ा होता है,

0: उसका प्रोटीन, उसका कार्बोहाइड्रेट, उसका फैट का रिक्वायरमेंट अलग है, वो उसके हिसाब से बन रहा है। और जो बच्चा रहता है, माँ का बच्चा रहता है, वो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग, अमृत इसीलिए है कि उस बच्चे के अकॉर्डिंग है। 6 महीने के बाद एक्चुअली रिकमेंडेशन है 1 साल के बाद आपको बच्चे को गाय का दूध देना है, लेकिन बहुत सारे लोग डायल्यूट करके देते हैं लेकिन बेहतर नहीं है वो देना। गर्मी का मौसम रहता है तो बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि बहुत गर्मी है, बच्चा को मिल रहा होगा? हाँ, एकदम मिल रहा होगा। उसमें वाटर का अमाउंट 97-99% रहता है, उस बच्चे को एकदम से पानी मिलेगा। आप देखिए ना, कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा को दूध पिलाते हो उसका मुंह सूखा हुआ हो? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको पानी का जरूरत नहीं है, उसको उतना रिक्वायरमेंट मिल जा रहा है।
1: डॉक्टर जमुरद, एक सवाल जो मेरे मन में है, गर्भनाल का रिश्ता होता है बच्चे का पेट
0: जी,
1: में
0: जी, एकदम।
1: उस समय उसका खाना जो है 9 महीने तक
0: जी
1: गर्भनाल के माध्यम से ही जाता है
0: जी, जी,
1: सीधी सी बात है,
0: सीधी सी बात है।
1: लेकिन बच्चा के पैदा होने के बाद वो मुंह से दूध ग्रहण करे, ये जो प्रक्रिया, उसमें दिक्कत आती होगी कभी कभी?
0: एकदम आती है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भगवान उसको रिफ्लेक्स दे के आते हैं। वो रिफ्लेक्स भगवान 7 मंथ पे ही दे देते, क्योंकि कोई 7वां बच्चा होता है या 8 महीने का, तो उसको भी आता है दूध चूसने।
1: अच्छा,
0: 7 मंथ पे ही गॉड उसको सकलिंग रिफ्लेक्स दे देते हैं।
1: एक श्रोता जुड़ गए हैं जी। नमस्कार।
2: नमस्कार सर, महाकांत सिंह हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ सर।
1: राजस्थान से
2: जी सर।
1: महाकांत सिंह जी, जिज्ञासा क्या है आज हेलो जिंदगी में, बताइए।
2: स्तनपान बच्चों के लिए तो जरूरी है ही, माताएं के लिए भी बहुत जरूरी है। स्तनपान कराने से बहुत बीमारी माताओं को नहीं लगता है।
1: अच्छा।
2: लेकिन इस फैशन के दौर में स्तनपान कराना बहुत कम महिला ही चाहती है। अब महिलाएं अपनी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देती है बच्चे के स्वास्थ्य के बजाय।
0: आप जो भी, अगर माताएं, इनको लग रहा है कि अगर वो फैशन कर रही हैं, तो मैं बता दूं कि आजकल जो इतना ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, तो अगर आप फुल ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो उसका रिस्क बहुत घट जाएगा। दूसरा ये चीज़ देखा गया है कि जो माएँ ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चों को, वो जल्दी पतली हो जाती हैं। जैसे डिलीवरी के टाइम में पेट निकल जाता है, पेट ढीला हो जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा 10 किलो के अराउंड बढ़ता है, 10 से 12 किलो। अगर वो फीड कराएंगी अपने बच्चों को तो उनका वेट लॉस जल्दी होगा और वो शेप में दिया जाएंगे। तो आप काइंडली, जो भी आपकी बच्चियां होंगी, आपकी बहू होंगी, उनको ये चीज जरूर बताइए कि आप अपने बच्चे को तो जो फायदा दे रही हैं उससे ज्यादा आपको फायदा है। आपको डायबिटीज का रिस्क कम होगा, आपको हाइपरटेंशन का रिस्क कम होगा, आप पतली हो जाइएगा, आप हेल्दी रहिएगा, आपके मतलब क्या रिकवरी में फायदा है। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो ये करता है, वो हार्मोन आपके यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है, मतलब बच्चेदानी को भी जल्दी छोटा करता है, और हर बॉडी का हर पार्ट का रिकवरी जल्दी करा के आपको जल्दी ठीक कर देगा।
1: लेकिन महाकांत सिंह जी की चिंता ये है ना कि आजकल माताएं ये सोचती हैं कि उनके स्तन का आकार बिगड़ जाएगा। असल बात वही है जहां हम कह रहे हैं
0: जी, जी।
1: जो ब्रेन में बात आती है, आपने इतने सारे फायदे गिना दिए
0: जी, जी।
1: है ना, मोटापा कम हो जाता है, समस्याएं कम हो जाती हैं, ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो स्तन का जो आकार है वो बिगड़ जाएगा, इसको लेकर के अगर महिलाएं बच्चे को फीड नहीं कराती हैं, सवाल ये है मैडम
0: जी। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल तो जमाना इतना बढ़ गया है, आजकल इतने सारे तरह तरह के आपको सपोर्टिव ब्राज आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल शेप नहीं गड़बड़ाएगा अगर आप उसको ठीक से यूज कीजिए।
1: कार्यक्रम में महाकांत सिंह जी, कार्यक्रम में हम आगे चर्चा करेंगे कि अगर बच्चे को ठीक से सही पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए
0: जी, जी।
1: तो प्रकृति का दिया हुआ कोई भी अंग खराब नहीं होता है।
2: सर, पहले दूध उतरने का दवाई खिलाया जाता है, आजकल दूध बंद करने के दवाई लेते हैं महिलाएं।
1: बहुत सही फरमा रहे हैं आप महाकांत सिंह जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। चर्चा करते हैं आज इस पूरे कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए महाकांत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और श्रोता का जुड़ाव हो रहा है जी। नमस्कार। हेलो,
3: मुझे मैम से पूछना था कि जैसे बच्चे हो गए, बड़े हो गए,
1: अच्छा,
3: उसके बाद मतलब जैसे जैसे मिल्क डिस्चार्ज हो
0: जी जी,
3: कभी कभी उसका मतलब क्या,
1: अच्छा,
3: उससे कोई खतरा या कुछ?
1: कितने बच्चे हैं और आपका सबसे जो छोटा बच्चा है वो कितने साल का है?
3: छोटा बच्चा 11 साल का है।
1: 11 साल का। आपने समस्या जो बताई है, कभी कभी रिसाव दूध का होता है आपके ब्रेस्ट से, सो यही ना सवाल है? नाम बताना चाहे तो बता सकती है, अन्यथा हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
3: ठीक, बस सवाल करना था।
1: लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए, बहुत बढ़िया सवाल है
0: जी।
1: ये पूछ रही है कि 10-11 साल का बच्चा हो गया है, फिर भी कभी कभी दूध का रिसाव के स्तन से होता है, ये क्या?

0: ये क्या ये गुड मतलब बैड साइन तो नहीं है उनके मन में? यही बात
1: बहुत बैड साइन नहीं है, लेकिन आपको इसमें इलाज की जरूरत है। एक हार्मोन जैसे मैंने बताया जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको दूध बन रहा और दूध रिस रहा है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उसका दवा लीजिए। बहुत बार
0: एक और सवाल
2: अपने आप बंद भी हो जाता है।
0: लेकिन एक जो बात है इसमें, क्या गर्भ निरोध का कौन सा उपाय आप कर रहे हैं? कभी कभी कुछ दवाओं की वजह से भी होता है, कौन सा उपाय कर रही हैं? अगर आप गर्भ निरोध का कोई उपाय कर रहे हैं तो थोड़ा मैडम को बता दें ताकि सही सलाह आपको पहुंच जाए। क्या आप कोई टैबलेट खा रही हैं गर्भ निरोध के लिए या इंजेक्शन ले रही हैं? या इंजेक्शन ले रही हैं? इंजेक्शन ले रही थी। क्या इंजेक्शन की वजह से भी ऐसा
1: होता है? हार्मोनल इंबैलेंस है एक तरह का। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एक बार जरूर डॉक्टर से मिलिए, ब्लड का जांच करवाइए, एक बार ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराइए, क्योंकि बहुत बार डक्टलेक्टेजिया वगैरह में भी ये चीज़ होता है। एक बीमारी होती है जिसमें मतलब जो नली रहती है, जिस नली से दूध आता है, उसका इन्फेक्शन की वजह से भी डिस्चार्ज आता है। तो अगर वो चीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है।
0: अच्छा, कोई और साइन जिस समय ये रिसाव होता है, क्या उस समय आपको हल्का बुखार या कुछ समस्या होती है?
1: ब्रेस्ट टाइटनेस
2: वगैरह ऐसा कुछ नहीं।
0: अच्छा, जो दूध का जो रंग है वो नॉर्मल रंग है या कोई और रंग है, ये भी बताइए।
2: नॉर्मल ही है।
1: तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया ही आपको होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार जरूर, जब आपको दूध आए, ऐसे नहीं अगर अभी नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब दूध आए तो जरूर आप अपने डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि कभी कभी ये चीज ना मतलब बोले कि बड़ा चीज भी बन सकता है। कभी कभी 100 लोग में 1 लोग, अब वो 1 लोग कौन है कोई नहीं जानता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम सुनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक के बारे में आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। आमतौर पर माताएं क्या करती हैं, सोई हुई हैं। अब बच्चे का क्या है ना, एक सवाल आया था बहुत इम्पोर्टेंट मोहन पासवान जी की तरफ से, 24 घंटे का समय होता है, कब दूध पिलाएं बच्चे को? क्या जब रोएगा तब पिलाएंगे, या फिर कोई टाइम टेबल है जो 2-3 घंटे में हम पिला दें? कुछ बच्चे 5-6 घंटा तक बगैर दूध पिए आराम से रह जाते हैं, 3-4 घंटे तक भी, और कोई कोई बच्चा तो इतना, अब तो उसके माताएं कहती हैं बहुत शैतान है।
1: जी,
0: हम नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट है। अगर 1 घंटे के बाद भी उसको दूध की जरूरत है तो माता को देना पड़ता
1: जी,
0: है,
1: जी,
0: है ना
1: है।
0: लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है अब तो सरकारी सेवा हो चाहे कोई भी सेवा हो, जहाँ कामकाजी महिलाएं बाहर काम करती, उन्हें बहुत लंबा समय दिया हुआ है मैटरनिटी के तौर पर इस्तेमाल, 6 महीने तक, इसीलिए शायद दिया गया होगा कि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग एकदम कंपलसरी है, तो उन्हें इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, है ना। तो टेक्निक क्या है बच्चियों को दूध पिलाने की, ये सवाल है। लेकिन एक बात और भी है कि हम समझे कैसे कि बच्चा भूखा है, ये भी बात है।
1: देखिए, तरीका तो ये है कि हर 2 घंटे पे आपको बच्चे को फीड कराना है। अगर 2 घंटे से पहले आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसको ज़रूर दूध पिलाइए, लेकिन हर 2 घंटे पे कोशिश कीजिए। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपका बच्चा सोया हुआ है तो उठा के अगर 2 घंटा हो गया तो नहीं दूध पिलाना है, वो खुद उठेगा, खुद रोएगा, तो वो आपको उसको दूध पिलाना है।
0: एक बात और भी है ना कि जन्म के साथ जो बच्चे का जो सोना है
1: सोना है
0: वो लंबा होता है।
1: जी, 18 घंटा तक बच्चा बोलते हैं कि सो सकता है।
0: तो जो बच्चा 24 घंटे में 18 घंटा सोएगा, तो माँ व्यथित रहती है थोड़ी
1: जी,
0: कि अब इतना सोया सो रहा है, इतना देर तक सोया हुआ है, बच्चा मेरा भूखा होगा?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। भूख लगेगा, बच्चा उठेगा ही।
0: अच्छा,
1: कितना देर वो सोएगा? नहीं सोएगा, वो सोता है 18 घंटा, लेकिन वो क्या बोले, स्लीप साइकिल कंप्लीट करके उठता है, दूध पीता है, फिर सोता है।
0: लेकिन एक स्थिति और भी आती है डॉक्टर जमूरत परवीन, जब माताओं को एक कशमकश हो जाती है कि दूध इतना उतर गया स्तन में कि नहीं पिलाएं तो काम नहीं चलेगा
1: जी,
0: अब उस समय क्या करें?
1: देखिए, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा दूध पी लिया, उसके बाद भी आपको दूध बच रहा है, तो उसको आप एक्सप्रेस कर लीजिए। आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकती हैं, आजकल इतने सारे मार्केट में आ गए, ब्रेस्ट पंप को निकाल करके आप उस दूध को स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रिज में कम से कम 8 से 12 घंटा आपका वो दूध ठीक रहेगा, फिर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर करके उसको आप बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा दूध छाती में नहीं रहने देना है। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा दूध छाती में रखेंगी, मिल्क क्या है, एक तरह का अच्छा चीज़ है, कल्चर मीडिया है, बैक्टीरिया आएगा उसको, आपके छाती में दूध भरा हुआ है उस पर बैक्टीरिया आएगा, और वो जो मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम, छाती लाल हो जाना, दर्द होना, ये सब चीज़ हो सकता है। तो छाती में एक्स्ट्रा मिल्क नहीं रहने देना, उसको आइदर फेंक देना है, अगर आप स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकती हैं, लेकिन उसको नहीं रहने देना है। कभी कभी उसमें पस भी बन सकता है और चीरा भी लगाने का जरूरत।
0: डॉक्टर जमूरत, थोड़ा और पीछे चलते हैं, बच्चे के जन्म के साथ दूध उतरने की जो प्रक्रिया है कभी कभी बड़ी लंबी हो जाती है।

0: जी
1: तो वहां तो दिक्कत होती है, वहां क्या करती हैं आप?
0: वही करते हैं, हर 2 घंटे पे माँ को बोलते हैं कि दूध में लगाइए, चाहे बच्चा खींचे चाहे नहीं खींचे,
1: हाँ
0: क्योंकि उसको आता नहीं ना है दूध खींचना, उसको पता नहीं है कि वहां से दूध आता है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या माँ गलती करती है कि पहले डब्बा का दूध पिला देती है फिर अपने छाती में लगाती है, तो वो क्यों खींचेगा? कोई भी बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता। दूध पीना एक बहुत, क्या बोले, बच्चे के लिए बहुत हार्ड प्रोसेस है। वो पूरा पैलेट को ऊपर करके सक करता है, अच्छा खासा उसको प्रेशर लगता है। जब उसको पैसिवली दूध मिल रहा है तो वो क्यों छाती से खींचेगा? तो पहले आपको अपने छाती का पिलाना है, छाती का पिलाने के बाद लग रहा है कि बच्चा रो रहा है तब फिर ऊपर का दूध देना है। ये वाला चीज़ इम्पॉर्टेंट है।
1: तो ये बड़ी बात है कि ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल और भी है।
0: जी
1: किसी के 2 बच्चे हुए,
0: ठीक है
1: डिलीवरी हुई,
0: जी,
1: सीजेरियन हो चाहे नॉर्मल
0: हाँ
1: डिलीवरी
0: हाँ
1: हो, 2 बच्चे में दूध तो उतरा अच्छे से,
0: हाँ
1: तीसरे में मिसिंग क्यों, और उस समय क्या करें?
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से माँ को दिक्कत होता है। सबसे पहले आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना है, 2 बच्चा पल
1: पहले
0: गया
1: स्ट्रेस तो ये हो गया ना डॉक्टर जमूरत कि
0: जी
1: तीसरा बच्चा आ गया
0: जी
1: है ना, अब
0: हाँ
1: 2 बच्चे की प्लानिंग में पहले से लगे हैं,
0: हाँ तो उसमें
1: और
0: फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करें, आपकी
1: दुर्भाग्य
0: मुंह
1: से अगर तीसरा बच्चा लड़की हो
0: लड़की
1: गई
0: हो
1: है
0: गई, तब तो ओटी
1: लगातार,
0: टेबल या क्या कहिए, डिलीवरी टेबल से ही पेशेंट रोना शुरू कर देती है।
1: है
0: हम
1: ना,
0: लोग डर से बताते नहीं है कि लड़की पैदा हुई है।
1: ये बड़ी दुरूह स्थिति
0: जी
1: है।
0: जी
1: समाज में माताओं को और पिता को
0: जी
1: समझना चाहिए कि लड़का हो या लड़की हो,
0: जी
1: ये हमारे जीवन के हिस्से हैं
0: जी
1: और इस सृष्टि के लिए ज़रूरी हैं।
0: अगर
1: अब
0: लड़की ही नहीं रहेगी
1: तो
0: तो कहाँ से।
1: लड़की की संख्या कम हो गई है,
0: जी
1: एक
0: जी
1: हज़ार पे 100 से ज़्यादा, एक्यूरेट हर स्टेट में अलग अलग है,
0: जी जी
1: एक
0: जी
1: एक हज़ार में 100 से ज़्यादा
0: कम, मतलब लड़कियां
1: लड़के
0: कम
1: कम
0: हैं।
1: पड़ गई
0: हाँ
1: हैं।
0: कम पड़ गई हैं।
1: अब तो ये दिक्कत है समाज में, असंतुलन। इसलिए अगर तीसरी बेटी भी है, दूसरी बेटी भी है, तो उसका जो ये डिप्रेशन जो है ना,
0: जी जी
1: तनाव
0: जी
1: टेंशन, वो माताओं को नहीं लेना है,
0: नहीं लेना,
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है,
0: नहीं लेना।
1: कहीं भी पहुंच सकती है,
0: हम भी
1: अंतरिक्ष से
0: तीन बहन
1: लेकर।
0: ही हैं, भाई नहीं है
1: अच्छा
0: हमको, और तीनों बहन
1: अच्छा
0: हम लोग अच्छे पोस्ट पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पापा बहुत खुश हैं कि मेरे बेटा ही, बेटी ही मेरा बेटा है, हम ही लोग पापा का सपोर्ट कर रहे
1: हम तो
0: हैं।
1: ये कहते हैं डॉक्टर जमुरद
0: जी
1: कि बेटी ही बेटा क्यों, अरे बेटी बेटी ही बहुत
0: जी जी सही बात
1: है ना,
0: है
1: उसे
0: जी,
1: बेटा से तुलना करने की जरूरत क्या होती
0: जरूरत ही
1: है भाई।
0: नहीं है।
1: बेटी हमेशा, जब तक वो होती है, कहीं भी होती है, माँ बाप की जितनी चिंता, जितनी फिक्र और उनकी सेवा जितनी बेटी करती है,
0: बेटा नहीं कर
1: वो
0: सकता।
1: अद्वितीय है, उसके आगे कुछ है नहीं। तो आज ये समझने की बात है, अगर अगर लड़की हो रही है तो उसके बाद आप टेंशन में ना आए, जितनी भी माताएं हैं, और टेंशन में नहीं आएंगी तो दूध उतरेगा,
0: जी
1: ये भी बात
0: एकदम, दूध
1: है
0: उतरेगा।
1: ना।
0: और बहुत सारे जैसे घरेलू उपचार हैं जो सासू माँ लोग रहती थी पहले, वो केमिकल उसको क्या जड़ी बूटी का बना करके देती थी, उससे दूध उतरता था। ऐसे आप अश्वगंधा ले सकती हैं, सतावरी ले सकती हैं, ये सबसे भी दूध उतरता है। आप दाल का अच्छा अमाउंट लीजिए, प्रोटीन का अच्छा अमाउंट लीजिए, खुद दूध पीजिए।
1: मसूर का दाल
0: जी मसूर का
1: अच्छा
0: दाल
1: माना
0: जी
1: जाता है।
0: अच्छा बना करके ये सबसे। और स्लीप आप अच्छे से सोइए, जिस वक्त आपका बच्चा सो रहा है आप भी सो जाइए, हो सकता है रात में आपको नहीं सोने दे रहा है, तो दिन में जब बच्चा आपका सो रहा है आप उस टाइम सो जाइए।
1: अब आते हैं फीडिंग पोस्चर को लेकर के,
0: जी
1: सही तरीका क्या है बच्चे को दूध पिलाने का?
0: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले माँ खुद कंफर्टेबल हो जाए। जो आजकल इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बैक पेन का, क्यों हो रहा है? माँ को सही पोजीशन नहीं पता, टेढ़ा कुबरा बैठ करके दूध पिलाती, उस वजह से उसको बैक पेन होता है। तो सबसे पहले खुद कंफर्टेबल होना है, पीछे कुछ सपोर्ट रखिए, चाहे आप अगर घर में है तो दीवार है या सोफे पर बैठ के पैर के नीचे आराम से सपोर्ट करके, जिस तरफ के आप छाती से दूध पिला रही हैं उसके पैर के नीचे तकिया रखिए। बच्चा का सर हमेशा ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बच्चा सरक सकता है और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, सांस की नली में जा सकता है। उठाना है, उसके बाद क्या है, वो जो काला एरिया जो निपल के अराउंड का रहता है जिसको एरियोला बोलते हैं, वो पूरा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। मुंह जो है पूरा खुला होना चाहिए और चिन जो है वो सटा होना चाहिए, जो बच्चे की ठुड्डी है वो छाती में सटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे एकदम कंफर्टेबल उसको पिलाएंगे तो ज़रूर आपका बच्चा छाती से पकड़ेगा। थोड़ा सा आप निपल प्रेस करके थोड़ा दूध निकालिए ताकि बच्चे को पता चले कि यहाँ से दूध आएगा, वो खुद शक करेगा। उसको सकलिंग रिफ्लेक्स है, उसको भगवान दे करके भेजें कि तुमको शक करना है दूध पीना है।
1: सबसे बढ़िया पोस्चर कौन है?
0: आपका पोजीशन ठीक रहना चाहिए। घर में सोफा है तो मैं कहूंगी सोफे पे बैठ के, नहीं सोफा है तो आप जमीन पे भी बैठ के पिलाइए, लेकिन पीठ पर सपोर्ट एकदम से रहना चाहिए। जैसे आप सोचिए ना, आप खुद अगर सो के खाइएगा तो कैसे आपको सरक जाएगा, उसी तरह आपका बच्चा भी अगर सिंपल सोया रहेगा उसको सरकेगा, तो सर हमेशा उठा हुआ रहना चाहिए बच्चे का, ये एकदम से ध्यान देना है बात को।
1: और जो माताएं रात में लेटी हुई हैं, सोई हुई हैं, और
0: हाँ
1: बच्चा दूध के लिए रोता है,
0: जी
1: तो सीधे फीड कराना शुरू कर देती हैं,
0: जी
1: उसके बाद बच्चा

0: भी सो जाता है, माँ भी सो जाती है,
1: और इसी में बच्चा कभी कभी सोया रह जाता है। मेरी एक दो पेशेंट है जिसका बच्चा ऐसी तरह रात में सुला दी माँ और सुबह में बच्चा नहीं था,
0: क्योंकि
1: सरक गया उस बच्चे को।
0: अच्छा,
1: आप तरीका है कि आप दूध पिलाइए, बच्चे को ढकार दिलाइए, कम से कम 15 मिनट कंधे पे रख के। अब जरूरी नहीं है बच्चा ढकार करेगा उसका आवाज आ ही नहीं, आपको 15 मिनट कम से कम कंधे पे रखना है। अगर अगर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है तो आप दूध पिला के किसी बगल में दे दीजिए, वो उसको 10 मिनट अपराइट खड़ा करके रखेंगे, नहीं तो क्या होता है बहुत ज्यादा चांस रहता है 6 महीने तक बच्चे को दूध सरकने का। तो इस चीज का ध्यान देना, अगर आप लिटा के बहुत मजबूरी में पिला भी रही है तो ये चीज ध्यान रखना, बच्चा का सर हमेशा ऊपर रहे। और अगर आप बच्चा को सुला रही है बिना ढकार कराए तो हमेशा करवट में सोलाना है, पीछे तकिया डाल देना ताकि बच्चा सीधा।
0: माताएं कई बार जो है ना वो बच्चे को दूध पिलाते पिलाते सो जाती हैं,
1: हाँ।
0: या बातचीत में लग जाती हैं, उनका अटेंशन बच्चे पर नहीं होता है, और कभी कभी दूध का स्राव जो है ना वो बच्चे के कान तक में चला जाता है,
1: क्योंकि वहाँ आपका कनेक्शन है ना कान का, और जो नेसोफेरिंग से कान का कनेक्शन हो जाता है। और इसी वजह से आजकल आप बहुत सुनिएगा कि माँ कंप्लेन करती है बच्चे को हमेशा सर्दी रहता है, ठीक नहीं होता, क्यों? इसी वजह से वो जो दूध उसके कान में जाता है, नाक के रास्ते से कान देखिएगा, बच्चा नोचेगा, हमेशा सर्दी रहेगा, यही इसका कारण है, और कोई कारण, क्योंकि माँ ठीक से बच्चे को दूध नहीं पिला रही है।
0: एक सवाल ये भी आया था डॉक्टर जबूरत, वो ये कि 6 महीने स्तनपान के दौरान कुछ बच्चे हिस्ट पुष्ट हो जाते हैं
1: जी,
0: बड़े अच्छे लगते हैं
1: जी,
0: और कुछ बच्चे दुबले रह जाते हैं।
1: हाँ, बहुत कुछ जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अगर माँ बाप पतले हैं तो बच्चा कैसे मोटा होगा, आप ये चीज़ सोचिए, क्योंकि बराबर सबको न्यूट्रिशन मिल रहा है। और आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे दूध पी करके, माँ का दूध का बात कर रही हूँ मैं, मोटे होते 6 महीने, अगर आप खुद देखिएगा 8-9 महीने का फिर से वो शेप में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो रहता है ना वो कुछ दिनों का ही रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप डब्बे का दूध पिला रहे तो वो बच्चा तो पक्का मोटा रहेगा, और वो मोटा रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा शुगर्स रहते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। तो आप देखिएगा डब्बे के दूध वाला बच्चा ज्यादा मोटा रहता है और वो नॉर्मल नहीं होगा, वो मोटा ही रह जाएगा, और बाद में उसको ओबेसिटी का, मोटापा का, डायबिटीज का चांस बढ़ जाएगा।
0: एक बात और भी ना कि बोतल जो है ना बार बार उबालना उसे, है ना, स्टरलाइज करना, यूज करने के बाद जो बचा हुआ दूध होता है वो भी फेंकना पड़ता है, उसे दोबारा के लिए यूज नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। ये पैसे भी तो बचते हैं ना,
1: बहुत पैसे बचते हैं, और रात का नींद भी खराब नहीं होता। अगर आप छाती से दूध पिला रही है, बच्चा रो रहा है, पिलाइए, सो जाइए, नहीं तो उठिए, डब्बा धोइए, दूध बनाइए, तब तक अपना भी नींद खराब और बर्बादी।
0: तो प्रकृति ने एक रेडीमेड उपाय बना के भेजा हुआ है। एक सवाल, 6 महीने तक अगर दूध सही ढंग से ना हो, कम होता जाए, कम पड़ जाए, तो क्या करें?
1: आप डब्बे का दूध दे सकते हैं, जो कि बच्चे के, वो जो डब्बे का दूध रहता है उसमें प्रोवन जो रहता है वो उसी के बच्चे के हिसाब से रहता है। मोस्टली गाय के दूध से बेटर है कि आप वो डब्बे का दूध दें, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगी कि माँ खुद से अपना आहार बढ़ाए। बहुत सारे अब तो ऐसे जड़ी बूटी के अलावा बहुत सारे टैबलेट्स आ गए हैं, पाउडर्स आ गए, जो खाने से दूध एकदम से आपको 1 से 2 दिन में बहुत अच्छा आने लगेगा। तो आप वो डॉक्टर से आप वो दवा लीजिए, वो खाइए, और कोशिश कीजिए कि आप अपना ही दूध पिलाएं।
0: जिन माताओं का जो दूध है ना
1: जी,
0: वो 6 महीने के बाद भी आता रहे,
1: हाँ,
0: मतलब उनका हाँ, स्राव होता रहे
1: जी,
0: तो एक सवाल होता है कि अब बच्चा 9 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, आखिर कब तक वो दूध पिलाएं?
1: आप 2 साल तक दूध पिला सकती हैं
0: अगर आ रहा है दूध
1: जी।
0: एक और दिक्कत
1: जी,
0: वो दिक्कत क्या ना कि छोटे बच्चे का जब दांत आना शुरू होता
1: जी,
0: है
1: जी जी जी, तब माँ को सच में ऐसे ही माँ को मतलब उतना बड़ा ओहदा नहीं दिया गया, माँ का बहुत त्याग रहता है, और वो जो प्यार रहता है ना वो सब कुछ भुला देता है।
0: तो चलते चलते क्या संदेश देंगी जो लोग स्तनपान सप्ताह को लेकर के कार्य कर रहे हैं
1: जी,
0: उनके लिए क्या कहें?
1: यही संदेश दूंगी कि काइंडली आप अपने बच्चे को दूध जरूर पिलाएं, आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपके पॉकेट के लिए भी अच्छा है, और ये जो नेचर दिया है जो चीज वो खराबी नहीं करेगा आपको, आप इस बात को एकदम से गांठ बांध लीजिए।
0: तो ये बताते हुए हम हेलो जिंदगी के आज के अंक से विदा लेते हैं कि आज का विषय था स्तनपान के फायदे। बतौर विशेषज्ञ जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमरुद्ध परवीन साहिबा, आपने अपना समय हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाएं स्तनपान सप्ताह के लिए आपको भी
1: जी।
0: तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले रविवार को इसी कार्यक्रम में दिन में 11 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: जिंदगी कैसी है

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: रविवार 2 अगस्त 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश अभी आप सुन रहे थे। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
3: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किया।

0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर।

कार्यक्रम विवरण। इसके तहत श्रोताओं, हम जानकारी दे रहे हैं आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे समवेत स्वर में देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत हम आप तक पहुंचाएंगे दिन में 1:15 से।

दिन के 2 बजे प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें जिसे हम पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। दो बजकर 10 मिनट पर रोजगार सूचना और दोपहर समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर। दिन के 2:30 आनंद ले सकते हैं आप फिल्म संगीत का। तो याद रखें श्रोताओं, किशोर कुमार के गाए गीत आज उनकी जयंती पर उनके द्वारा गाए गए गीतों को हम आप तक पहुंचाएंगे दिन के 2:30।

अपराह्न 3 बजे, आज मंगलवार है, आप सुनिएगा कुछ बजिका लोकगीत। तो ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत।

शाम 6:30 बजे कार्यक्रम गाम घर और 7 बजे आप सुनिएगा, माफ कीजिए, 6:55 पर आप सुनिएगा किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहकारिता, किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार। याद रखिए 6:55 पर किसान वाणी। मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंहरहार का समय है 8:15 पर और समाचार संध्या 8:15 पर।

45 मिनट पर सुना जा सकता है। उर्दू में खबरें रात 9:15 पर और विविधा, ये कार्यक्रम आप सुनिएगा रात 9:30 पर। और रात 10 सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। समय याद रखें रात 10। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। जी हाँ श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं। अब समय हो रहा है फिल्म संगीत का, तो बने रहिए हमारे साथ अभी से लेकर दिन के 2 तक और सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठाइए फिल्म संगीत का। शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म मिलन के इस गीत के साथ। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की है।

जी हाँ श्रोताओं, अगला गीत जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए श्रोताओं, हम अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म आशा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, वो भी गीत हम आपको सुनवाएंगे लेकिन इस गीत के बाद। लेकिन अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने। फिल्म थी आरजू, आवाज लता मंगेशकर की थी। और अब वो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आशा में, जिसमें आवाजें दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ फिल्म आशा का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। अगला गीत सुनने से पहले आप कहीं भी नहीं जाइए, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

ये फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। गीत के बोल बर्मा मल्लिक के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए इस आवाज को फिर से फिल्म आंखें में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे फिल्म आराधना में। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत SD बर्मन का। लीजिए सुनिए, इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, तो आइए सुनते हैं।

0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित नासरीगंज घाट से पानापुर घाट तक स्टीमर सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा के शुरू होने से दियारा इलाके के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार के पूर्व राज्यपाल और शिक्षाविद डीवाई पाटिल का आज उनके पैतृक आवास महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। डीवाई पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के बीच बिहार के राज्यपाल रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री चौधरी ने कहा कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया में सबसे अधिक 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं किशनगंज के चरघरिया में 124.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज चेहल्लुम पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिया, सिपर, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कुर्बानी अमर है और यह समाज को हर दौर में रास्ता दिखाती है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के खैरामठ के पास SSB और STF की टीम ने 3 तस्करों को 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,59,000 नेपाली रुपए भी बरामद किए गए। अररिया जिले के अलौली थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक और कारतूस के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर बाईपास थानाध्यक्ष चनवीर यादव को ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाजी मजाहरे के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत दीगर मामलों पर अपोजिशन की हंगामा आरई

0: सभा दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मौजू उठाते हुए वजीर दाखिला अमित शाह का बयान करने लगे। स्पीकर की बार बार अपील के बावजूद शोर गुल खत्म नहीं हुआ, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी इसी मामले पर अपोजिशन के अरकान के बीच कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी रखनी पड़ी। जदयू के सदर और राज्यसभा के रुकन नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कारगुजार सदर संजय झा और वजीर राजीव रंजन भी मौजूद थे। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना वाके नासरीगंज घाट से पानापुर घाट तक स्टीमर खिदमत का आगाज किया। इस सर्विस के शुरू होने से दियारा इलाका के लोगों को आमद रफ्त में सहूलत होगी। इस मौके पर नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और कोऑपरेटिव के वजीर राम कृपाल यादव समेत कई मोजज लोग मौजूद थे। बिहार के साबिक गवर्नर और माहिर तालीम डी वाई पाटिल का आज उनकी आबाई रहायशगाह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इंतकाल हो गया। वो 91 साल के थे। डी वाई पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के दरमियान बिहार के गवर्नर थे। वजीर आला सम्राट चौधरी ने डी वाई पाटिल के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। जनाब चौधरी ने कहा कि एक दूरअंदेश माहिर तालीम और समाजी कारकुन की हैसियत से इनको हमेशा याद किया जाएगा। आकाशवाणी पटना से नशर होने वाली भोजपुरी बुलेटिन के वक्त में तब्दीली की गई है। 7 अगस्त से ये समाचार बुलेटिन शाम 6:05 की जगह शाम 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का नशरिया आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अररिया में सबसे ज़्यादा 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं किशनगंज के चरघरिया में 124.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अपने पेशगोई में कहा है कि आज अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मशरकी चंपारण और शिवहर जिलों में कुछ मकामात पर काफ़ी बारिश हो सकती है। रियासत के दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में आज चहलुम पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर ताज़िया, सिपर, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। वजीर आला सम्राट चौधरी ने हजरत इमाम हुसैन और शहीदाने करबला को अकीदत नजर किए हैं। अपने पैगाम में वजीर आला ने कहा है कि उनकी कुर्बानी लाफानी है और ये समाज को हर अहद में राह दिखाती है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना हलका के खैरा मठ के पास SSB और STF की टीम ने 3 स्मगलरों को 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,59,000 नेपाली रुपए भी बरामद किए गए। अररिया जिला के अलावली थाना हलका से पुलिस ने नशा आवर अशिया स्मैक और कारतूस के साथ 4 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। भागलपुर बाईपास थाना इंचार्ज चनवीर यादव को ट्रकों से नाजायज वसूली करने के इल्जाम में फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर।

आवेदन शुरू करने की तिथि 21/7/2026 से ही है। आवेदन की अंतिम तिथि है 10/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। विशेष जानकारी के लिए unionbankofindia.bank.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, कुल पदों की संख्या है 545। आवेदन 20/7/2026 से ही तिथि आरंभ है। आवेदन की अंतिम तिथि है 9/8/2026। इसके लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। विशेष जानकारी पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए रोजगार सूचना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कुल पदों की संख्या है 395।

इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च IGCAR, इसमें कुल पदों की संख्या है 200। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 से ही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और इसके लिए अधिकतम उम्र है 24 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए अभ्यर्थी इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च IGCAR के वेबसाइट www.igcar.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक और सूचना हम आप तक दे रहे हैं, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कुल पदों की संख्या है 163। आवेदन 22/7/2026 से ही शुरू है, अंतिम तिथि है 10/8/2026। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र इसके लिए है 40 वर्ष। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत।

0: अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
1: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है।

0: महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उड़ीसा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज डलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज डलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर।

श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज मशहूर अभिनेता और गायक किशोर कुमार की जयंती है और इस अवसर पर हम उनके द्वारा गाए गए कुछ गीत इस सफर में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अभी से अपराह्न के 3 बजे तक।

रहे हैं, और ये हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, भोजपुरी, मलयालम और क्या बताएं, सही में कई भारतीय भाषाओं में इन्होंने गाया है। और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में एक मशहूर पार्श्व गायक के साथ साथ एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी किशोर कुमार जाने जाते हैं और अपने समय में सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इन्होंने ही बनाया था।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप मशहूर अभिनेता, गायक, निर्देशक, गीतकार, जितना भी बोले कम कहा जाए, किशोर कुमार की जयंती पर हम उनके द्वारा गाए कुछ गीत आप तक पहुंचा रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ और जो गीत हमने ली थी फिल्म थी सफ

पर आराधना, समझौता, गीत गाता चल, जॉनी मेरा नाम और मुकद्दर का सिकंदर, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए अगला कार्यक्रम सुनिए। आज मंगलवार है तो लोक गीतों के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं आज बजिका लोकगीत। पहले जगन्नाथ राय का गाया हुआ ये गीत सुनिए।
1: छेली अब ललिता विशाखा यहो राम ललिता।

इसी के साथ बज्जी का लोक गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। जिन कलाकारों के गाए गीत आप सुन रहे थे वो थे जगन्नाथ राय, कृष्ण कुमार श्याम, ब्रजेश कुमार सुमन और बिमला तिवारी। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो, पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती अनुशासन से बंधा हुआ था और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
1: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो MBA करने मुंबई चली गई और MBA करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
1: जी। और क्योंकि लंदन से आने वाले को ना दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
0: हाँ।
1: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए।
0: जी। और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद में हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो, इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया। साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल। और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
0: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
1: जी बिल्कुल। और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
0: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियां

0: उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
1: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
0: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
2: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तो आरती तुम चौंक गई ना।
1: हाँ। क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
0: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते हैं और अब सुनते हैं गीत।
1: जी।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखे हैं उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई बहुत बढ़िया शरारत है तो। और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई। और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, पाउडर निकलता था वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल आराम से
0: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत धुलाई हुई है।

0: रही थी, लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे, कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चारपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कैसे कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद।
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं वो डर जाते हैं ना। हाँ, एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बात

0: चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था, उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं डर जाते हैं। हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता की हल्की फुल्की बातें बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई, एक जो मेरी गलती नहीं थी एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वो ये दोनों बातें बता रही है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई, नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे, है ना, सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे, 1 रुपए का, 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी कई बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
0: तो ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती हैं।
1: हाँ शरारतें भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है।
0: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे, हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें शुरू हो जाती
1: है, तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना,
0: हमारे यही करते हैं ना कि सबको मत लेके जाओ, एक सिर्फ
1: लेके जाओ। और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती,
0: कि हमें नहीं लेके जा रहा
1: है, हमें नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि भी बच्चे क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया,
0: डांट भी पड़ी होगी, कभी कभी मार भी पड़ी होगी जी। अच्छा मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने,
1: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे, देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया। बच्चे इतनी शरारत करने के बाद, जब कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे। उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखती है कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है। आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
4: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
3: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें फिर भी तुम कहना नहीं मानते।
4: बिल्कुल।
3: तो ये सब चीजें बचपन की हैं और

0: लिखते हैं
1: एक
0: श्रोता?
1: हमारे साथी जो लिखते हैं कि दर्जा 2 या 3 में पढ़ रहा था, गांव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा, भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया। जी
0: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था, तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना, और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
1: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकलें, थोड़ा
0: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
0: बिल्कुल।
1: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
0: हाँ।
1: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
1: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
1: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं, और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
0: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई है हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है 1 और 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन 1 21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब 2 चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो, बल्कि उसे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है? हाँ। और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ, और 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये। हाँ। पुराना ही मुहावरा है।
0: हाँ,
1: लेकिन हमने सुना कम है।
0: हाँ,
1: ये प्रयोग कम होता है,
0: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है? 1 से 21 होना
1: जैसे
0: तो मतलब
1: कि 1 है, 1 से सीधे हम उछल के 21 से पहुंच गए, यानी कि उन्नति कर ली हमने।
0: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि 1 का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना। व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
1: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहाँ संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वही 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल, और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है, आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें

0: की हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
1: हाँ गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
0: जी बात तो सही कही आपने।
1: तो देखिए हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में हर मायने में महीना लिख रखा है हमारे श्रोता ने, हर मायने में श्रेष्ठ हो तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, एक से 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत, उसमें भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था, एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननंद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहां मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा, ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन में,
0: ये अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
0: एक छोटा सा एक हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके मैं अपने नेबर के हाउस में अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरह की शरारतें भी हैं।
1: वाकई बहुत आज मन खुश
0: और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
1: अच्छा आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत खूब। तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
0: हाँ

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती, अभी देखिए हमारे एक श्रोता लिखती हैं, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां मधुर गीतों के साथ बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारती कितनी मासूम होती है। इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत हमें बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसें और गुदगुदाएं। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत

0: स्वागत आपका
1: जी। थैंक यू माय प्लेजर।
0: तनिषा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
1: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो LPs और CDs जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीज़ें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने ज़िंदगी में कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊँगी उसको लेकर।
0: कितनी मज़ेदार बात है कि जब आप देख रही थीं तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आईं, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड दिखा।
1: हाँ जी,
0: है ना। फिर 78 RPM का एक रिकॉर्ड दिखा, फिल्म थी यास्मीन।
1: वाओ,
0: 1955।
1: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
0: जी,
1: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
0: जी,
1: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ।
0: वाह वाह वाह।
1: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
0: जी जी।
1: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज ईयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया,
0: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहाँ से मुझे हर चीज़, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मैंने हाफिज़ अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए, और म्यूज़िक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूज़िक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री,
0: बिल्कुल
1: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
0: वो तो मकसद ही सोसाइटी ऑफ
1: बिल्कुल कि
0: वो युवाओं
1: एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो है, आप उनको कॉनोसियर्स बनाएं, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए
0: जी,
1: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
0: क्या बात है।
1: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स, बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ

0: होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है,
1: बिल्कुल
0: ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहाँ आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डे सिका से लेकर ब्रेसॉन, सब एलन डेलॉन की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा मतलब आंद्रे वायदा, किशलोव्स्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बम्बई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या बात
0: करूं।
1: है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने दिखा है
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था? घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहाँ। तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉरपोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉरपोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर, मतलब जहाँ कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि अरे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: आहा,
0: चला गया। सुनते हैं,
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने
0: बिल्कुल
1: इस गाने को लिखा था और
0: लिखा
1: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
0: जी
1: हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज़ कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब की उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज्ड टू यू नो सी दैट
0: उस समय,
1: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी, जहाँ उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज़ हम बात करते हैं कि जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
0: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूँ। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
1: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
0: वाह वाह वाह,
1: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: बाबा, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेज नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा?
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे और दुर्गा पूजा।
0: वाह वाह, ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में। बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी
1: जी। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब

0: हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉरपोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
1: वाह,
0: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग
1: विजन।
0: दिमाग खराब हो
1: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में
0: अच्छी
1: जा रही
0: खासी
1: थी।
0: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई
1: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
0: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप करा और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया। मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है,
1: अच्छा,
0: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में US में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
1: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शंस थे, टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा?
0: उनको मतलब हार्ट अटैक आया और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब
1: तब तक तो
0: तक
1: काम पूरा।
0: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे
1: पैसे तो वहां ऑलरेडी आ रहे थे
0: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे
1: तो वो सीधी राह पे चली गई।
0: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
1: क्या बात है, क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेत्रम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और
1: गुरु है।
0: कलाक्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने
1: तुम्हारी
0: दीदी
1: वजह से
0: दीदी को करने दिया लेकिन मुझे
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर NSD के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम MBA कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली GMAT के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा।
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी फिर पापा को मैं कहती थी अरे मां पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हाथवे, इन सब के साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी MBA किया जाए,
1: मजा आ रहा है
0: क्योंकि
1: मुझे
0: पापा,
1: सुन
0: हाँ पापा ने
1: के।
0: ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली, तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए, कहते नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है
1: आप यहाँ पढ़ो मत
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वाज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे MBA करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो
1: फिर मामला टल गया
0: फिर हाँ परमानेंटली मामला टल गया
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ, ऐसा दैट इज द थिंग दैट वो आई

0: really believe that life is what happens to you while you keep making plans.
1: Right.
0: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई. अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं. बट
1: उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट.
0: फुल प्लेट. अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई. इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है.
1: और ये बन गई.
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो. और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय.
1: हाँ,
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 months हम लोग फ्लोर पे थे.
1: क्या बात है. तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे हाँ, क्या काम करता है.
0: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है. नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में. मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है. और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए. और उन्होंने उन सब चीज़ों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की. और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है.
1: वाह, क्या प्यारी बात.
0: तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड. उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते. मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है. उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था. उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हबे.
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था.
1: क्या बात है, क्या बात है. और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोल.
0: जा हार ता हबे.
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है. यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए. अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
0: हाँ जी,
1: तो आप, एक सजेशन करता
0: आप, हाँ, बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे.
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन खान साहब का
1: वो बजा सकते हैं,
0: या
1: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है. और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है.
0: बिल्कुल,
1: ये सुनते हैं. ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर
0: जी को.
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा.

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी, और हमारी जो टीचर हुआ करती थी जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वॉज सो मच इन लव विथ, और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉन्ते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
0: बिल्कुल।
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिज़ाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज़ करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो। डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई। एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे, आपके बैचमेट्स?
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी।
0: जी जी।
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे।
0: वाह वाह।
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
0: बिल्कुल।
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं। जब बड़े मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस। और उसके दौरान मैंने पिक्चर ख़त्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। So it was a very difficult process, but then like I said ki I think no pain no gain.
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी,
0: इससे पहले बना चुकी
1: इससे पहले। हाँ, और
0: नवाज थे उसमें,
1: नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है। तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको, एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग

0: उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे। नवाज और मैंने एज को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ
1: एनएसडी में।
0: ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट।
1: क्या हुआ था आपके साथ
0: फिर
1: रोम में?
0: मतलब सुपर
1: वेनिस
0: नेचुरल
1: में
0: स्टोरी थी।
1: सुपर नेचुरल।
0: हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी।
1: राइट।
0: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। उसी ने मुझ में ये कीड़ा
1: डाल दिया।
0: इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई तो सब कुछ बंद हो गया। लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई बट आई कुडंट डू एनी थिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम।
1: अभी
0: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया। वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर
1: बाबा
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला, मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया,
0: हाँ।
1: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको। और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था, मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज के तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की, मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है।
1: और कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें। क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक

0: इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बिकॉज
1: बिल्कुल
0: इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है। लेकिन जो गेट कीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम,

बीटिंग वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे ही आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। प्रस्तुत है युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम।

युवा दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, करियर निर्माण की दिशा में आप बहुत कुछ सोच विचार कर अपना कदम बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम आप पढ़ लिख कर ही इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, जो कोई भी आपकी चाहत है उस दिशा में ही आप अपना कदम बढ़ाएं। और ये सब आसपास देखते सुनने

की वजह से भी हो जाते हैं कि हमारा पड़ोसी शिक्षक है, हमारा पड़ोसी प्रोफेसर है, हमारा पड़ोसी डॉक्टर है, तो क्यों ना हम भी उसी दिशा में। बिल्कुल ये सही है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना कदम उस दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपकी रुचि आखिर उसमें कहाँ तक है। यदि आपकी रुचि उससे कहीं ज़्यादा खेल कूद की तरफ है तो आप उस तरफ भी अपना कदम बढ़ा सकते हैं, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आए दिन आपको ऐसे कई उदाहरण जो है आपके सामने हैं। दोस्तों, युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है। युवा ही देश के स्वप्नदर्शी और परिवर्तन के वाहक होते हैं, ये आपको मानना होगा। आप युवा होते हैं जो अपनी ऊर्जा, उत्साह और सामर्थ्य से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, और ऐसे में अगर आप खेल कूद में रुचि रखते हैं तो फिर क्या कहने, क्योंकि ये खेल कूद न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास में भी मदद करता है। दोस्तों, खेलकूद एक अनमोल साधन है जो आपको अनुशासन, मेहनत, संयम और टीम भावना जैसे गुणों से लैस करता है। खेलकूद के माध्यम से आप न केवल अपनी शारीरिक ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं बल्कि ध्यान केंद्रित करने और तनाव मुक्त रहने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इसके अलावा खेलों में भागीदारी से नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना भी बनती है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा दोस्तों, आज के युग में जब युवा अधिकतर समय डिजिटल माध्यमों और तकनीक के बीच समय गुजारते हैं, ऐसे में खेलकूद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये उन्हें व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली की ओर प्रेरित करता है, जिससे स्वास्थ्य बना रहता है और बुरी आदतों से दूर रहती है। सरकार और समाज को चाहिए कि वे खेलकूद को बढ़ावा दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों सरकार इसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। कई योजनाएं आपके लिए आपके सामने हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब, खेलकूद युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का आधार है। ये एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने में मदद करता है और युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाता है। हमें चाहिए कि हम खेल कूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करें। आपसे जो कम उम्र के बच्चे हैं, उस तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत से ही यदि हम उस तरफ अपना प्रयास करते रहें तो उम्मीद करते हैं कि सही समय आने पर आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। बातचीत आगे भी करेंगे, आपको सुनवाते हैं एक और लोकगीत।

0: यववाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया जा रहा है।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, फिल्म संगीत। इसके तहत सुनते हैं कुछ नए गाने।

अभी आप सुन रही थी अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपादा की आवाज़ों में टू स्टेट्स फिल्म का गीत। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन तैयार की थी शंकर एहसान लॉय ने। अगला गाना अरमान मलिक की आवाज़ में, फिल्म का नाम है शेफ, गीतकार रश्मि विराग, संगीतकार अमाल मलिक।

अभी आप सुन रही थी अरमान मलिक और तुलसी कुमार को क्षमा कीजिए। अभी आपने सुना अरमान मलिक को फिल्म शेफ में, गीतकार थे रश्मि विराग, संगीतकार अमाल मलिक। वजह तुम हो, आई सुनते हैं इस फिल्म का गीत अरमान मलिक और तुलसी कुमार की आवाजों में। लीजिए पेश है

0: फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे कुछ नए गाने। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता ही हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजा चाहते हैं, अब हिंदी में समाचार होंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी, इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति केतु का कार्यक्रम। मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे 6:25 पर। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गांव घर सुनेंगे 6:30 पर। संध्या 6:55 पर आप सुनेंगे किसान वाणी, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रेल कर आप तक पहुंचाएंगे। रात 8 आप सुन सकेंगे संसद समीक्षा। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुनिएगा 8:15 पर। रात 9:30 पर समय होगा विविधा का। रात्रि 9:45 पर आप सुनेंगे देववाणी। रात 10 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फनकार। कुछ फिल्म गाने आप रात 10:30 पर भी सुन सकते हैं।

ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। और अब कल के बारे में।

कल प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुन सकेंगे प्रातः 9:05 पर। कुछ लोकगीत सुनिएगा दिन में 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं रोनू मजुमदार और किशन महाराज। सुनिएगा बांसुरी वादन दिन में 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम नारी संसार सुनेंगी दोपहर 12:30 पर। रोजगार सूचना अपराह्न 2:10 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा अपराह्न 3:00। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी संध्या 5:00 युववाणी कार्यक्रम से। कुछ विद्यापति गीत 6:10 पर और संध्या 6:25 पर मैथिली संवाद। कामघर कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 6:30 पर शामिल है। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। संध्या 7:00 सुनिएगा किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी। रात 8:00 संसद समीक्षा। चर्चा का विषय है इसके लिए समय है रात 9:30 पर, जिसे हम दिल्ली से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण किया जा सकते है रात 10:00। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को। अब प्रस्तुत है विनय कुमार झा के सुर में विद्यापति की ये रचना।

0: इसी के साथ विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त तो होते ही हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। संध्या के 6:25 होने वाले हैं। अब मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे।
1: FM रेनबो पटना से प्रस्तुत संवाद संवादक संघ हम छी हृदय कांत मिश्र। संसदक दोनों सदन कार्यवाही विपक्षक हल्ला गुल्ला के कारण आई सेहो बाधित रहल। लोकसभा में विपक्षी सदस्य छात्र सभक विरोध प्रदर्शनक बीच भेल पुलिस कार्रवाईक मुद्दा उठबैत गृह मंत्री अमित शाहक बयानक मांग कर रहल छला। लोकसभा अध्यक्ष विपक्षी सदस्य सब से सदन चले देवक आग्रह कलन मुदा विपक्षी सदस्य सब हल्ला गुल्ला करित रहला। यही बीच कतेको विधायी काज निपटाओल गेल। एकर बाद सभा अध्यक्ष सदन कार्यवाही काल धरि लेल स्थगित कऽ देलन। एम्हर राज्यसभा में यही मुद्दा के लऽ कऽ विपक्षी सदस्य सबक हल्ला गुल्ला के बीच कार्यवाही काल धरि लेल स्थगित करय पड़ल। जदयू अध्यक्ष आ राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार आज नव दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंटघाट कलन। यही बीच पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा आ मंत्री राजीव रंजन सिंह से हो छला। बिहारक पूर्व राज्यपाल आ शिक्षाविद DY पाटिलक आई हुनक पैतृक आवास महाराष्ट्र कोल्हापुर में निधन भ गेलन। ओ 91 वर्षक छला। ओ 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के बीच बिहारक राज्यपाल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार DY पाटिलक निधन पर शोक व्यक्त कलन। राजदक कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जनौलन जे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के भेटल हारक समीक्षा कयल जायत। आई पटना में संवाददाता सबसे गपशप में श्री यादव जनौलन जे ओ जनादेश के स्वीकार करैत छथि। पेपर लीक भर्ती परीक्षा सब में अनियमितता आ शिक्षा व्यवस्था में सुधार सहित कतेको मांगक समर्थन में NSUI सहित कतेको छात्र संगठन सब आई पटना में प्रदर्शन कयलक। प्रदर्शनकारी सबक जत्था JP गोलम्बर से मुख्यमंत्री आवास से घेराव करय लेल जायत काल इनकम टैक्स गोलम्बर पर प्रदर्शनकारी आ पुलिसक बीच नोकझोंक सेहो भेल। प्रदर्शनकारी सब बैरिकेटिंग तोड़ि कऽ आगा बढ़य लगला। स्थिति नियंत्रित करबा लेल पुलिस वाटर कैनन

0: लौलक। एहि बीच पुलिस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, एनएसयूआईक राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखर आ कतेको छात्र सभ के हिरासत मे लऽ लेलक। ओ सभ जनौलनि जे जा धरि हुनक मांग पूरा नहि होयत ता धरि लड़ाई जारी रहत। रेलवे भर्ती बोर्डक लेवल वन भर्ती परीक्षा 3 से 6 अगस्त धरि कतेको चरण मे आयोजित कयल जा रहल अछि। अभ्यर्थी सभक सुविधा लेल पूर्व मध्य रेल 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनक परिचालन शुरू कऽ देलक अछि। एहि मे 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन जयनगर आ लखनऊक बीच, जखनकि 2 जोड़ी ट्रेन राजगीर आ वाराणसीक बीच चलाओल जा रहल अछि। रेलवे अभ्यर्थी सभसँ एहि स्पेशल ट्रेनक बेसीसँ बेसी लाभ उठेबाक लेल जनौलक अछि। प्रदेशक कतेको भाग मे आइ चुहल्लुम अकीदतक संग मनाओल जा रहल अछि। इमाम हुसैनक शहादतक याद मे ई दिन मनाओल जाइत अछि। एहि मौका पर कतेको ठाम तजिया, सिफर, आलम आ मातमे जुलूस निकालल जा रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हजरत इमाम हुसैन आ करबलाक शहीद सबके श्रद्धांजलि देलनि। अपन संदेश मे मुख्यमंत्री जनौलनि जे हुनकर कुर्बानी अमर अछि आ ई समाज के सदिखन रास्ता देखाबैत अछि। प्रदेश में मानसूनक सक्रियता से वर्षा भ रहल अछि। मौसम विभाग से भेटल जनतबक अनुसार बीतल 24 घंटा के बीच अररिया में सबसे बेसी 160 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। ओतहि किशनगंजक चरघरिया में 124.6 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान में जनौलक अछि जे आइ अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण आ शिवहर जिला में किछु ठाम भारी वर्षा भ सकैत अछि। राज्यक आनो आन जिला सभ मे सेहो वर्षा भ सकैत अछि। मधुबनी जिलाक जयनगर थानाक क्षेत्रक खैरामठ लग एसएसबी आ एसटीएफक टीम 3 तस्कर के 200 ग्राम ब्राउन सुगरक संग गिरफ्तार कयलक अछि। हुनका सभक संग सँ 1,59,000 नेपाली टका सेहो बरामद कयल गेल। अररिया जिलाक अलौली थाना क्षेत्र से पुलिस मादक पदार्थ स्मैक आ कारतूसक संग 4 अभियुक्त के गिरफ्तार कयलक अछि। भागलपुर बाईपास थानाध्यक्ष जनवीर यादव के ट्रक से अवैध वसूली करबाक आरोप में निलंबित कऽ देल गेल अछि। बेगूसराय जिला मुख्यालय कचहरी रोड में आधार सेवा केंद्र शुरू भेल अछि। एहि ठाम लोक सभ नव आधार कार्ड बनेबाक संग संग बायोमेट्रिक सुधार आ नाम पता और मोबाइल नंबर सेहो अपडेट करा सकैत छथि। सुपौल जिला मुख्यालयक डिग्री कॉलेज चौक पर कोसी पुनर्वासित परिवार सभ अपन कतेको मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयला। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए गामघर कार्यक्रम।

গাম ঘরক শ্রোতা লোকিনকে গোপী ভাইক নমস্কার। শ্রোতা লোকিন আজক দিন মঙ্গল অছ, আই হম সব ইউবা লোকনিক কার্যক্রম নব ঊর্জা শুনে ছি। ইউবা লোকিন দ্বারা আপন অভিভাবককে কাজমে সহযোগ কেনাই একটা পৈঘ জিম্মেবারি ভরল কদম অছ। এই কাজসে মাত্র পরিবারক বোঝ কম নে হইত অছ, পরঞ্চ ইউবাকে জীবনমে ব্যবহারিক কৌশলক বিকাশ সেহো হইত অছ। ঘরেলু কাজমে মদদ, ঘরক সফাই, বর্তন কে ধোনাই या कपड़ा के व्यवस्थित राखे में मदद केनाय, रसोई के काज, खाना बनाबे में हाथ बटाबी या बाजार से राशन और तरकारी आन कर दी, बागवानी जो घर में पेड़ पौधा अछि तो ओकर पटौनी और देखभालक जिम्मेदारी ली, तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग, डिजिटल काज जना भेल ऑनलाइन बिल भुगतान, बिजली पानी, इंटरनेट, बैंकक ऑनलाइन काज या टिकट बुकिंग कर ली, दस्तावेजीकरण, सरकारी या निजी कागजात के व्यवस्थित राखी और ओकर अपडेट कराबे में सहायता करी, तकनीकी सहायता में अभिभावक लोकन के स्मार्टफोन, कंप्यूटर या नव एप्सक उपयोग करने सिखाबी, व्यावसायिक या पारिवारिक काज में योगदान, पारिवारिक

0: एक व्यवसाय जहाँ परिवार का कोनो छोट मोट व्यवसाय दुकान या खेती बाड़ी अच्छे तो पढ़ाई के बाद खाली समय में वो एक ठाम बैसी और हिसाब किताब संभाली। ऑफिसक काज जँ अभिभावक वर्क फॉर होम कऽ रहल अछि तऽ हुनका डाटा एंट्री या फाइलिंग जेहन आसान काज में सहायता कऽ सकै छी। पारिवारिक जिम्मेदारी साझा केनाइ, छोट भाई बहिन के पढ़ाई में मदद करी और हुनक स्कूल के गतिविधि पर नजर राखी, बुजुर्गक देखभाल, दादा दादी या नाना नानी के दवाई और स्वास्थ्यक ध्यान रखनाइ, युवा लोकनिक ई छोटगर कदम देशक विकास में सामाजिक विकास में पैघ योगदान दैत अछि। अहाँ जानबे करै छी कि युवा लोकनि जे होइत छथि ओ अथाह ऊर्जाक स्वामी होइत छथि। आवश्यकता एहि गपक अछि कि हुनक ऊर्जाक उचित दशा और दिशा देल जाय। जँ हुनक ऊर्जाक उचित दशा भेटत, दिशा भेटत तऽ निश्चित रूपसँ ओ सामाजिक विकासमे, राष्ट्रक विकासमे, परिवारक विकासमे अपन महत्वपूर्ण योगदान देता। भारतीय संविधान युवा लोकनिक बहुत रास अधिकार दैत अछि कि अपन अधिकारक उपयोग कऽ सकैत आ देशक विकासमे ओ योगदान दऽ सकैत छथि। तऽ स्वास्थ्य भेल, अहाँके भावनात्मक सहयोग भेल, जेना दवाइके ध्यान, समय पर माता पिताके दवाइ देनाइ और डॉक्टरके अपॉइंटमेंट सम्हालनाइ, भावनात्मक संभल, हुनका संग समय बितेनाइ, हुनकर गप सुननाइ और तनाव कम केनाइ। तऽ देखियौ, जहाँ जतय समाज अछि, परिवार अछि, राष्ट्र अछि, तऽ ओहिठाम युवा लोकनिक भूमिका महत्वपूर्ण भऽ जाइत अछि, किएक तऽ युवा लोकनि जे छथि ओ देशक भविष्य छथि। एखुनका जे समय यऽ ओ अहाँके युवा लोकनिक 60% लगभग आबादी अछि अपना सबके देशमे, आ कहि सकै छी हमसब कि अपन सबक देश जे अछि ओ युवा देश अछि। तऽ एखन ऊर्जा पर्याप्त मात्रामे अछि तऽ हुनकर ऊर्जाक सदुपयोग हमसब करी, हुनकर ऊर्जाक उचित प्रबंधन करी, जैसे कि अहाँके देश, समाज और परिवारक विकास हुए आ संगे संग हुनकरो विकास हुए। आगू हमसब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने छोट छिन विराम लऽ ली।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: छोटछिन विरामक उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई। तखन अपने सब चर्चा करै छलहुँ कि युवा लोकनिक ई दायित्व बनैत अछि कि अपन अभिभावकक काजमे ओ सहयोग करथि, घरक काजमे हुनक मदद करथि, आ अहिसँ छै से सहयोग करैक भावना हुनकामे विकसित होइत अछि। आ इएह सहयोगक भावना समाज आ राष्ट्रक विकासमे सेहो छै से योगदान दैत अछि। आगू हमसब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने कुंज बिहारी मिश्रक स्वरमे ई देवी गीत सुनी।

तेज, ओकर रेगिस्तान से नहीं बनी तेज। ओहि देशक पहचान ओहि देश में रहे वाला नागरिक ओहि देश में रहे वाला युवा के चरित्र से ओकर पहचान बने तेज। राष्ट्रक भविष्य युवा लोकन के सर्वांगीण विकास में निहित है। एना एहि लेल कहै छी कि युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका का निर्माण करैत छथि। युवा में समाज का ओ क्षेत्र शामिल होइत अछि जे अखन तक विकास का परिलक्षित करैत आबि रहल अछि। अनेक राष्ट्रक लेल भाग्यक निर्माता होइत छथि। ओ बचपन से वयस्क बने तक के बीच का चरण होइत अछि। प्रत्येक व्यक्ति जीवन को ओही रास्ता से भऽ के गुजरैए। जँ समय का उचित उपयोग कयल जाए तो ई चरण वास्तव में महत्वपूर्ण परिणाम दै वाला होइए। जे किछु नया कर गुजरे के इच्छा से भरल होइए, कोनो देश में रहे वाला लोग ओहि देश के विकास और प्रगति के लेल स्वयं उत्तरदायी होइत छथि। कोनो देश में कुल जनसंख्या के लगभग 20-30% भागीदारी युवा के होइत अछि। हमर तो मानना अछि कि युवा लोकन के एक टा सकारात्मक दिशा में कार्य करे के लिए प्रशिक्षित करबा के चाही। एकरा लेल युवा लोकन के प्रशिक्षण एवं विकास पर विशेष ध्यान दै के आवश्यकता होइत अछि। युवा लोकन शारीरिक और मानसिक रूप से आरोग्य बनैत सशक्त बनैत एहि लेल हुनका पौष्टिक आहार भेटबा के चाही आ हुनका उचित प्रशिक्षण भेटबा के चाही। युवा लोकन के उचित शिक्षा हुनक कौशल विकास के आवश्यकता अछि जैसे ओ सशक्त और समृद्ध भऽ सकै। आ एहि लेल भारत सरकार बहुत रास कार्यक्रम चला रहल अछि। युवा लोकन में काज करबाक अपार क्षमता होइत अछि और सब युवा उत्साह से भरल होइत अछि। अपन लक्ष्य के प्राप्ति करबाक हेतु ओ बराबर अग्रसर होइत अछि। जै प्रकार से कोनो इंजन के चलाबे के लेल ईंधनक आवश्यकता होइत अछि, ठीक ओनाही ओही प्रकारे कोनो राष्ट्रक विकास के लिए युवा के आवश्यकता होइत अछि। राष्ट्रक सर्वांगीण विकास और भविष्य ओहिठाम रहे वाला युवा लोकन के शक्ति और क्षमता पर निर्भर करैत अछि। एहिमे प्रमुख रूप से योगदान ओहि राष्ट्र के युवा के होइत अछि। कोनो राष्ट्रक प्रौद्योगिकी, शोध, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकासक लेल ओ उत्तरदायी मानल जाइत अछि। जखन युवा अपन प्रयासक संग अपन पूर्ण क्षमता के संग काज करैत अछि तो ओकर गणना कयल जाइत अछि। आ उएह छै से अहाँके मानवीय संसाधन भेल, जे अपन पूर्ण क्षमता के साथ काज करा आ बेसी से बेसी उत्पादन कऽ के देश के दे। आ भारत में बुझबे करै छी कि युवा के सबसे पैघ संख्या अछि जिनका उचित दिशा में प्रशिक्षित कयल जाए तो ओ अपन योगदान दऽ कऽ भारत देश के संपूर्ण विश्व में सबसे उच्च कोटि के बना सकैत छथि। जँ हमसब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए तो बुझना जाइत अछि कि हमर राष्ट्रक विकास के लेल कईटा परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान दियाबे में युवा लोकन के भागीदारी और सक्रियता उच्च कोटि के रहल अछि। समाज में व्याप्त कईटा समस्या पर कार्य कऽ के युवा दोसर लोकन लेल एकटा आदर्श बनि सकैत छथि। युवावस्था जीवनक ओ अवधि अछि जे शक्ति और क्षमता के संग आगू बढ़ैत अछि। कोनो समस्या का समाधान युवा सकारात्मकता से हल कर चाहैत अछि। आ वास्तव में कोनो समस्या का जे समाधान होइत अछि ओ संवाद और बातचीत के द्वारा होइत अछि। हिंसा कोनो समस्या का समाधान नहि अछि। एहि प्रकारे ई स्पष्ट अछि कि कोनो देश के युवा ओहि देश के भविष्य होइत अछि आ ओहि देश के प्रगति और विकास में हुनक प्रमुख भूमिका होइत अछि। आगू हमसब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने एकटा गीत सुनली अरविंद कुमार झा के स्वरमे।

सखी हे मैया के करियू ध्यान। वास्तव में मैया के ध्याने से जीवन में सर्वांगीण विकास का बाट खुजत। आई गीत हम सब सुने छलो हैं कुंज बिहारी मिश्रक स्वर में। जतबेक शब्द मधुर छल उतबे हुनकर स्वर मधुर छल। आ देखियो श्रोता लोकन, भारत एकटा पैघ लोकतांत्रिक देश है। कोनो देशक विकास ओहि देश के युवा पर बराबर निर्भर करैत आबि रहल अछि। हम ई कहि सकै छी कि युवा राष्ट्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा छथि। प्रत्येक राष्ट्रक तरक्की का आधार ओकर युवा पीढ़ी होइत अछि। किया तो युवा पीढ़ी में अथाह ऊर्जा होइत अछि, जकर उपलब्धि से ओहि राष्ट्रक विकास होइत अछि। राष्ट्रक भविष्य युवा लोकन के सर्वांगीण विकास में निहित अछि। एहन कार्यक्रम एहन बनबाक चाहिए, एहन नीति बनबाक चाहिए कि युवा लोकन के सर्वांगीण विकास हुए। एकटा पैघ दार्शनिक कहने छथि कि कोनो देशक जे पहचान बनैए ओकर भौगोलिक सीमा से नहीं बनैए, ओकर नदी से नहीं बनैए, ओकर पहाड़ से नहीं बनैए, ओकर पठार से नहीं बनैए।

बटो ही रह जा अपने गाम, एक गीत अपने सब अरविंद कुमार झा का स्वर में सुने चलो। देखियो युवा लोकन, योग जे ओ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ावे के एक अचूक माध्यम है। आजुक जे भागदौड़ और तनाव भरल जिंदगी है, इसमें तनाव के दूर के ऊर्जा

और सकारात्मकता का संचार करैत अछि। शारीरिक लाभ एकर ई अछि कि ऊर्जा और मजबूती मांसपेशी मजबूत होइए, शरीर लचीला और चुस्त बनैत अछि आ खेलकूद या कसरत से होइ वाला चोट का खतरा कम होइत अछि। एकाग्रता में पढ़े और काज में ध्यान केंद्रित करबाक शक्ति योग से बढ़ैत अछि। तनाव मुक्ति मौन शांत रहैत अछि और तनाव दे वाला जे हार्मोन या ओ कम होइए। अनुशासन और आत्मनियंत्रण का भावना विकसित होइए। तो जँ हम योग करै छी तो जीवन में सर्वांगीण विकास का जे बाट अछि ओ खुजैत अछि और शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त बनै छी। और योग जे अछि ओ एकाग्रता के सेहो छै से अहाँके बढ़ावा दे, मन एकाग्र होइए, संयमित होइए, शांत होइए। किया तो संयम और अनुशासन जे अछि, आत्मानुशासन, ओ जीवन में बड़ आवश्यक अछि जँ चाहै छी कि जीवन छै से सफल हुए। तो आप गाम घर के जे समय अछि नवऊर्जा कार्यक्रम के, ओ समय सम्पन्न भऽ रहल अछि। तऽ गाम घरसँ नवऊर्जा कार्यक्रमसँ युवा लोकनिसँ हम विदा लै छी। गोपी भाइके तरफ दिससँ नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कामघर कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कुछ एक पल में आप सुनेंगे किसान वाणी।

0: तरफ देखिए, लोग शिव की भक्ति में लीन रहते हैं।
1: हाँ जी, ये तो अभी सड़कों पर देखने को मिल ही रहा है, शिवालयों में भी मिल रहा है और कई जगहों पर देखने को मिल रहा है।
0: और हर जगह बोल बम का नारा भी है। तो क्यों ना हम लोग इस कार्यक्रम में एक खूबसूरत शिव भजन अपने किसान भाई बहनों को सुना दें।
1: बिल्कुल।

0: बहुत झूम रहे थे और आप तो एकदम शिवमय हो गए थे, क्या बात।
1: जी शिव भजन था ही ऐसा।
0: हाँ।
1: और हमारे साथ साथ किसान भाई भी झूम रहे होंगे, तो ये बहुत ही सुंदर शिव भजन हमने किसानों को सुनवाया। और अब किसानों के लिए आगे क्या है?
0: देखिए संजय जी, बरसात का जो मौसम होता है ना, उसमें मन करता है जब बारिश हो तो घर में गर्मा गर्म चाय हो, पकौड़ी हो, प्याज के, कद्दू के,
1: तो खाने का मन बढ़ रहा है,
0: बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर आपको खाना है तो स्वस्थ सब्जियां ही खानी चाहिए। हाँ, और ऐसे में जरूरी होता है कि जो भी सब्जी है उसमें कीड़े या कोई रोग ना लगे, तो इसके लिए जरूरी है कि ध्यान दे। आज हम लोग हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे कि कद्दू के क्या क्या रोग होते हैं और इनका रोकथाम कैसे किया जाए। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्रभाकर।
1: आइए सुनते हैं ये वार्ता।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कद्दू के रोग एवं रोकथाम विषय पर चर्चा करेंगे। कद्दू बिहार की एक लोकप्रिय सब्जी फसल है, जिसकी खेती वर्ष में 3 बार की जाती है, जैसे जायद, खरीफ एवं रबी सीजन में इसकी फसल ली जा सकती है। जायद सीजन में इसकी बुआई मध्य जनवरी, खरीफ सीजन में इसकी बुआई मध्य जून से प्रथम जुलाई तक, और रबी सीजन में इसकी बुआई सितंबर अंत से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक की जाती है। कद्दू भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों में अधिकतर उपयोग की जाने वाली विटामिन्स फाइबर से भरपूर कुकुरबिटेसी परिवार की सब्जी है। बेल के रूप में बढ़ने वाले कद्दू का पौधा गर्म तापमान में उगता है। हालांकि यह पौधा कम देखभाल के कारण आसानी से घरों में उगाया जाता है, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों में कद्दू के पौधे में रोग व बीमारी लग जाती है, जिसके कारण वह ठीक तरह से वृद्धि नहीं कर पाता और फल भी नहीं लग पाते हैं। यदि किसान भाई कद्दू के पौधे को स्वस्थ व रोग मुक्त रखना चाहते हैं एवं अच्छा उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें लगने वाली बीमारियों एवं रोकथाम की जानकारी होना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम इसमें बीमारी के रूप में आता है मृदुरोमिल आसिता, जो एक फफूंद जनित रोग है, जो कि सूडोपेरेनोस्पोरा नामक फफूंद से फैलता है। रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों की ऊपरी सतह पर हल्के पीले रंग के कोनीय धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। धब्बे के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर कवक की बढ़वार रुई के समान बैंगनी रंग का दिखाई पड़ता है। रुई की रोग की तीव्रता में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है, कभी कभी पूरा पौधा ही सूख जाता है। रोगी पौधे बौने रह जाते हैं। रोगी पौधे में फल अक्सर कच्चे रह जाते हैं, और यदि किसी प्रकार पक भी गए तो उनका स्वाद खराब हो जाता है। रोग प्रबंधन हेतु हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिसमें कद्दू कुल की सब्जियों को हर साल एक ही खेत में नहीं लगाना चाहिए। फसल समाप्त हो जाने के बाद फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, रोगी बेलों को काट देना चाहिए, तथा खड़ी फसल पर मैनकोजेब अथवा रेडोमिल MZ 72.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही शुरू कर देना चाहिए, अथवा अगर रोग अति उग्र हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमें 3 से छिड़काव करना लाभप्रद होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बीमारी है फल विगलन, जो कि पीथियम एपिडर्मिटम नामक फफूंद से फैलता है। इस रोग के लक्षण फलों पर पनीले गहरे रंग के धब्बे के रूप में उत्पन्न होते हैं। पहले फल छूने पर काफ़ी मुलायम पड़ते हैं, रोग फल सड़ने लगते हैं। नम मौसम में रोगी स्थानों पर रुई जैसे सफ़ेद कवक की बढ़वार दिखाई पड़ती है। फल विगलन के कारण फलों में से एक प्रकार की दुर्गंध आती है। भूमि सतह के संपर्क में रहने वाले फलों में रोग लगने की संभावना अधिक होती है। भंडारण के समय यदि कोई रोगग्रस्त फल भूल से भंडार में पहुंच जाए तो अन्य स्वस्थ पौधों में भी यह रोग पनपने लगता है। रोग प्रबंधन हेतु रोगी पौधों के अवशेषों को जलाकर या दूर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। जल निकास या समुचित रखरखाव रखना चाहिए। बेलों को चढ़ाने के लिए सहारा देने के लिए, ताकि फल जमीन पर न छुए। इसके अलावा भूमि पर बेलों एवं फलों के नीचे पुआल, सरकंडे या ऐसी ही अन्य चीज़ें बिछाना लाभप्रद होता है। फलों को तोड़ते समय या खेत से बाजार ले जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि फलों पर घाव या खरोच ना आने पाए।

खड़ी फसल पर हम मैनकोजेब या रेडोमिल MZ 72.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बीमारी आती है चूर्णी लासिता, जो कि एरिसाइफी चिकोरिसियरम नामक फफूंद से फैलता है। रोग के लक्षण सर्वप्रथम सामान्यतः पत्ती की ऊपरी सतह एवं नए तनों पर सफ़ेद चूर्ण लिए धब्बों के रूप में उत्पन्न होते हैं। धब्बों पर उपस्थित चूर्ण बिल्कुल टेलकम पाउडर से मिलता जुलता है। रोगी पौधों पर ऊपरी भाग पीला पड़कर सूखने लगता है तथा चूर्णी धब्बों का रंग भूरा हो जाता है। पुराने धब्बों के बीचों बीच में छोटे छोटे काले बिंदु के आकार के कवक की संरचना दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फल को अधिक पकने में टाइम लगता है। रोग प्रबंधन हेतु खेतों में या उसके समीप उपस्थित जंगली पौधे को उखाड़कर हमें नष्ट कर देना चाहिए। रोगी पौधे के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े, सल्फेक्स 2 ग्राम या कैलेक्सिन या कैराथेन 0.6 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर हमें खड़ी फसलों पर चुनाव करना चाहिए। एक अन्य बीमारी जिसे श्याम वर्म कहते हैं, जो कोलेटोट्राइकम लेजिनियरम से फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर पीले गोल या कोणीय दाग बनते हैं। ये दाग बाद में बढ़कर बड़े आकार के लगभग 10 मिलीमीटर व्यास के हो जाते हैं। बाद में दाग का रंग भूरा हो जाता है, रोगी पत्तियां विकृत हो जाती हैं तथा कई धब्बों के आपस में मिलने से सूख जाती हैं। पत्तियों के डंठलों तथा तनों पर बने धब्बे छिछले एवं लंबे होते हैं। फलों पर धब्बे गोलाकार, पनीले और दबे हुए होते हैं। नम मौसम में रोग तेजी से फैलता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर दागों का रंग कवक की वृद्धि के कारण गुलाबी दिखाई पड़ता है। रोग प्रबंधन हेतु हमें बोने के लिए बीज स्वस्थ पौधों से ही प्राप्त करना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। जल का निकास उत्तम होना चाहिए। कद्दू कुल के जंगली पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ बीज को बोते समय हमें थिरम या कार्बेंडाजीम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर हमें बीज उपचार कर लेना चाहिए। यदि खड़ी फसल पर श्याम वर्ण बीमारी का लक्षण मिलता है तो हमें कवकनाशी जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हमें छिड़काव करना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है जैसे सर्कोस्पोरा पर्णचित्ती रोग, जो कि एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के कारण प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे गोलाकार या अनियमित आकार के जलीय दाग दिखाई पड़ते हैं। यह धब्बे बाद में बढ़कर बड़े आकार के लगभग कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर व्यास के हो सकते हैं। धब्बे के बीच का भाग भूरा, सफेद या धूसर रंग का और किनारे गहरे या काले रंग के हो जाते हैं। रोगी पत्तियां मुरझा जाती हैं और झुलसी सी मालूम पड़ती है। कभी कभी पूरा पौधा सूख जाता है। तनों एवं पत्तियों के डंठलों पर भी समान रूप से धब्बे दिखाई पड़ते हैं। बीज को बोते समय हमें मर्क्यूरी क्लोराइड 1:1000 के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबोकर उपचारित कर लेना चाहिए। खड़ी फसल में हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित कवकनाशी जैसे ब्लाइटॉक्स या फाइटोलान या ब्लू कॉपर 50 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर हमें छिड़काव करना लाभप्रद होता है। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही शुरू कर देना चाहिए। यदि रोग अति उग्र हो तो 3 छिड़काव हमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। बीमारी और है जिसे मोजैक भी कहते हैं, जो कुकुम्बर मोजैक वायरस से बहुत तेजी से फैलता है। ये एक तरह का विषाणु रोग है। रोग के लक्षण फसल की किस्म, पौधे की अवस्था तथा विषाणु के विभेद पर भी काफ़ी निर्भर करती है। प्रारंभिक अवस्था में रोग के प्रकोप होने पर पौधे पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा बाद में वे मर जाते हैं। बड़े पौधों में सबसे पहले ऊपरी नई पत्तियों के हरे व पीले रंग की छींट के रूप में मोजैक रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। धब्बे फैलकर पूरी पत्ती पर हरे व पीले रंग की चितकबरा बना देता है। रोग की तीव्र में पत्तियाँ कुरूप, झुर्रीदार एवं छोटी तथा कभी कभी नीचे की ओर मुड़ी जाती हैं। पत्तियों की सिराओं और सिरिकाओं का हरा या पीला पड़ना भी रोग के सामान्य लक्षण है। बेल की पोरियां घट जाती हैं, जिसे पौधे बोने लगते हैं। फल विकृत, खुरदरे, छोटे व चितकबरे दिखाई पड़ते हैं। इस रोग हेतु किसान भाइयों, जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें, रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। बीज का चुनाव स्वस्थ व रोग रहित पौधों से ही करना चाहिए। रोगी पौधों को छूने के बाद हाथ को साबुन या अन्य किसी रोगाणुनाशी से भली भांति धोने के बाद ही स्वस्थ पौधे को छूना चाहिए। खेत

0: के आसपास पाए जाने वाले खरपतवारों को भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही कीटनाशी रसायन जैसे मेटासिस्टॉक या रोगर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हमें छिड़काव करना चाहिए, और 15 दिन के अंतराल पर अगर बीमारी उग्र हो तो दोबारा भी स्प्रे कर देना सहायक होता है। ध्यान रहे कि फल तोड़ने से 20 दिन पूर्व छिड़काव हमें बंद कर देना चाहिए। ये सब रोग नियंत्रण करके किसान भाई अच्छा उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी बारिश का मौसम है
2: जी,
1: और ऐसे में जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, उनके लिए खेती तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बरसात के समय, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सावधानी बरते।
2: बिल्कुल,
1: और स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी बरतने का भी ये समय है, और इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा पानी से फैलने वाली कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दे।
2: हाँ, और इस जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
1: और एक जरूरी बात कि पीने के लिए हमेशा स्वच्छ एवं उबला हुआ या शुद्ध पानी का ही उपयोग करें।
2: बहुत जरूरी बात है ये। और खेतों में जब काम कर रहे हैं तो जल जमाव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए,
1: और साथ ही साथ इस जल जमाव में कीड़े मकौड़े, सांप या बिच्छू भी हो जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अगर सांप या बिच्छू काट ले तो झाड़ फूंक के भरोसे में बिल्कुल ना रहे।
2: भाई ये तो बहुत ही जरूरी बात है किसी भी व्यक्ति के लिए।
1: हाँ।
2: सांप बिच्छू या किसी प्रकार का जहरीला कीड़ा अगर काट ले तो आप सबसे पहले नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाए या तो फिर उसे सीधे अस्पताल ले जाए।
1: हाँ बिल्कुल, और ये याद रखे आप भी और हमारे किसान भाई बहन भी कि सावधानी ही सुरक्षा है।
2: और अब कुछ जानकारी हम मौसम की दे देते हैं अपने किसान भाइयों को। दिन भर रुक रुक कर बारिश या बौछारे पड़ने की संभावनाएं हैं अभी,
1: और अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान भी है।
2: तो किसान खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखें और बिजली चमकने के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें। बिहार में कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, तो इसका बहुत ही सावधानी से ख्याल रखें। और श्रोता, कि आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
1: बिल्कुल,
2: तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अनुभव या कोई और बात हमसे अगर साझा करेंगे तो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। तो आपके फीडबैक के लिए हमारा ईमेल आईडी है aipatna@gmail.com।
3: खेतों की आवाज, देश की पहचान। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: कहो गिरधारी भाई, गए थे मक्का बेचने, भाई क्या ले आए इतनी बोरियों में?
5: खाद है सरजू भाई, यूरिया, डीएपी, पोटास, यही सब। हर बार खेत में खाद बढ़ा कर डालो और उपज जस का तस, घाटे का सौदा है खेती।
4: बिल्कुल गलत, अपने खेत को बंजर मत होने दो। मेरी मानो, मिट्टी की जाँच करवा कर उसका हेल्थ कार्ड बनवा लो।
5: लेकिन उससे क्या फायदा होगा?
4: अरे भाई, तुम्हारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता है इसकी जानकारी मिल जाएगी, और उसी के अनुसार निर्धारित मात्रा में तुम्हें खाद उर्वरकों की जरूरत होगी। पैसे भी बचेंगे और मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहेगी।
5: लेकिन इसमें बड़ी झमेला है।
4: अरे नहीं, बिल्कुल आसान है। अपने प्रखंड कार्यालय या कृषि सलाहकार अथवा जिला मिट्टी जाँच प्रयोगशाला से संपर्क करो, बस।
5: किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी की जाँच अवश्य कराएं,
4: सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, कृषि लागत में कमी कर मिट्टी सुरक्षित रखते हुए लाभ का दायरा बढ़ाएं।
6: हर जगह

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल

0: जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आपकी शान वाणी। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
5: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष उभरा। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, संगठन की कमजोरी के कारण मिली पराजय। और मौसम विभाग ने अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। भोजनावकाश के बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित किया। इसके बाद सभाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: इस मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। अपोजिशन करके जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओसी के नाम से वो खड़े होकर

0: जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।
1: अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो कटसी कॉल थी और कटसी कॉल के लिए गए। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिलकर बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित नासरीगंज घाट से पानापुर घाट तक स्टीमर सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा के शुरू होने से त्यारा इलाके के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में सहकारिता मंत्री ने कहा कि स्टीमर सेवा से पटना के साथ साथ सारण जिले के 7 पंचायतों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि स्टीमर सेवा निःशुल्क है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की जाएगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जनादेश को स्वीकार करते हैं।
2: देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर, और काम कुछ नहीं किया, अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सजा।
0: इधर बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष के स्वर उभर कर सामने आए हैं। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह हार संगठन की कमजोरी के कारण हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है।
3: हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोग पर भरोसा करती है। कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इससे किसी भी राजनीतिक दल को खुश होने की जरूरत नहीं है।
4: परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे, और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उपचुनाव के परिणाम को चौंकाने वाला बताया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस परिणाम की समीक्षा की जरूरत है।
5: थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है, हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार कभी जीत होती है। वहाँ की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति हुई।
0: प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। 6 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार दिखने लगा है। बारिश के मौसम में गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लगने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस बीच स्थानीय प्रशासन की ओर से साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इधर बेतिया से हमारे संवाददाता आशीष कुमार ने बताया कि हड़ताल कर्मियों ने स्थानीय विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास का घेराव किया। रेणु देवी ने विभागीय मंत्री से बात की और कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन मिला है।
6: देश हमारे बिहार भर में जितना भी एजिटेशन हो रहा है, 3 सूत्री मांग के लिए अभी हमने अपनी मांगे

0: नगर विकास मंत्री जी से बात की हूँ और जहाँ तक है कि बात बनेगी। और मैंने एक सुझाव रखा है कि कम से कम फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी को जनरल इंश्योरेंस से भी जोड़ा जाए।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि
2: आकाशवाणी 90 साल की आवाज।
1: बाद में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यादें
2: नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। कटिहार की स्टार्टअप उद्यमी मीसा सिंह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति सचिवालय से उन्हें आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। मछलियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने और उन्हें दूर दराज के बाजारों तक बेहतर ढंग से पहुंचाने की तकनीक विकसित करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। मीसा सिंह ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया।
1: मुझे ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम के यहाँ से ये इनविटेशन आया है जो कि मेरे स्टार्टअप के लिए है, जो कि हम कोल्ड चेन में अपना काम कर रहे हैं उसी के सम्मान में हमें ये इनविटेशन मिला है और मैं इसके लिए बहुत बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत ही ज्यादा मेरे लिए खुशी का पल है और मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकती।
0: पेपर लीक भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार समेत कई मांगों के समर्थन में NSUI समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रदर्शनकारियों का जत्था जेपी गोलम्बर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकला था। इस दौरान इनकम टैक्स गोलम्बर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से राहुल कुमार।
0: रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल 1 भर्ती परीक्षा 3 से 6 अगस्त तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इसमें 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन जयनगर और लखनऊ के बीच जबकि 2री जोड़ी ट्रेन राजगीर और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल और शिक्षाविद DY पाटिल का आज उनके पैतृक आवास महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। DY पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के बीच बिहार के राज्यपाल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने DY पाटिल के निधन पर गहरा शोक जताया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी DY पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया में सबसे अधिक 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों में अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, पूर्वी चंपारण, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में आज चेहल्लुम पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिया, सिपर, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। बेगूसराय जिला मुख्यालय के कचहरी रोड में आधार सेवा केंद्र की शुरुआत हुई है। इस केंद्र पर लोग नया आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ बायोमेट्रिक

आर्थिक सुधार और नाम पता तथा मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं। सुपौल जिला मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज चौक पर कोसी पुनर्वासित परिवारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष उभरा, पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा संगठन की कमजोरी के कारण मिली पराजय। और मौसम विभाग ने अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शिवपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: सावन माह के आगमन के साथ ही शेखपुरा जिला का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। सावन के पहले सोमवारी के दिन जिले के प्रमुख मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गिरिंडा स्थित प्रसिद्ध बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर तथा बरबीघा प्रखंड के ऐतिहासिक पंचवदन स्थान में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध दिखे। श्रद्धालुओं ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की तथा परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की। इस वर्ष बरबीघा प्रखंड के पंचवदन स्थान पर पहली बार राजकीय श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण खरीफ खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन खेतों में पर्याप्त पानी नहीं रहने के कारण अब तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 43% क्षेत्र में ही धान की रोपाई हो सकी है। जून और जुलाई दोनों महीनों में अपेक्षित बारिश नहीं होने से किसानों को धान की रोपाई में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों को डीजल पंप के सहारे सिंचाई कर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत भी बढ़ रही है। शेखपुरा जिले ने 31 जुलाई को अपना 32वां स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन समाहरणालय परिसर में किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने भाग लिया। गौरतलब है कि शेखपुरा जिला वर्ष 1994 में मुंगेर जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। स्थापना दिवस के मौके पर जिले में विकास उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। समारोह में जिलाधिकारी शेखर आनंद, SP हिमांशु सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा को भी याद किया गया। अधिकारियों ने कहा कि शेखपुरा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रशासन की ओर से आम लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
2: 25 वर्ष पहले 31 जुलाई 1994 को विकास की नई संभावनाओं और जन आकांक्षाओं को साकार करने के उद्देश्य से ही शेखपुरा को एक स्वतंत्र जिला का स्वरूप मिला था। आज हमारा जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आधारभूत संरचना के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं।
1: इधर स्थापना दिवस समारोह के बाद अब जिला प्रशासन आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में जुट गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के सभी प्रखंडों में एक एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों और बेहतर शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा रहा है। वहीं अरियरी, चेवाड़ा, शेखोपुर सराय और घाट कुसुम्बा प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इससे स्थानीय छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है। इसके अलावा जिले में

0: तो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। नए शैक्षणिक सत्र में इन विद्यालयों में नामांकन की भी प्रक्रिया जारी है। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। इससे उन विद्यार्थियों को भी आवेदन करने का अवसर मिला है जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाए थे। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले को टीबी मुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाई है। विभिन्न विभागों के सहयोग से अब तक लगभग 1,25,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और करीब 500 टीबी मरीजों को पोषण आहार किट उपलब्ध कराई गई है। जिले में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 5 गांवों को मुकदमा मुक्त गांव बनाने की पहल शुरू की है। सदर प्रखंड शेखपुरा और अरेरी प्रखंड के 5 गांवों में सामुदायिक मध्यस्थों का चयन किया गया है। यदि 1 वर्ष तक इन गांवों में कोई मामला थाना या न्यायालय नहीं पहुंचता है तो उन्हें मुकदमा मुक्त गांव घोषित कर सम्मानित किया जाएगा। शेखपुरा जिला अधिवक्ता संघ का द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अधिवक्ता चंद्रमौली यादव को संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया जबकि विनोद कुमार सिंह ने महासचिव पद पर जीत दर्ज की।
1: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए पेशे फिल्म संगीत।

हमको दीवाना कर गए। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत अभिजीत और अलका याज्ञिक की आवाजों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।
1: पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जाँच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना

सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है।

शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10

0: 2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसईजेड की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार, कार्यक्रम सिंगरहारक संग हम छी माला झा। इस कार्यक्रम में अपने लोग साहित्य आ साहित्य कार्य से संबंधित विभिन्न विधा पर चर्चा सुने छी गीत संगीतक मध्य। इत जनते छी जे साहित्यक सर्वप्रथम उद्देश्य होत ज्ञान प्राप्त क ओकर प्रसार करब। साहित्य से मनुष्यक जे मनोरंजन आ ज्ञान वर्धन होत तकर एकमात्र कारण है मानवक स्वाभाविक ज्ञान लिप्सा। जो ज्ञान प्राप्तिक इच्छा बलवती नहीं होत तो साहित्य कोनोटा अंग से ओकर मन संतुष्टि हैब संभव नहीं छल। ऐसो इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति आ विज्ञानादिक सृष्टि भेल। माने समस्त साहित्यिक मूल में ज्ञान है। साहित्यिक हेतु सबसे अनिष्टकार काज हुनका लोकनिक थिक जे ज्ञानक क्षेत्र के संकुचित क मनुष्य के आगा बढ़बा से रोकैत छथि। साहित्यिक मर्यादा तखने अक्षुण्ण रहित अछि जखन कि ज्ञानक वृद्धि होइत अछि। जतो अज्ञानता होइत अछि ओतै दुराग्रह, हठ आ अंधविश्वासक साम्राज्य स्थापित होइत अछि। जे ज्ञानी छथि से देश आ काल पर विचार स्थापित कऽ ज्ञानक वृद्धि में योगदान करैत छथि। साहित्यिक उन्नति के ध्यान रखैत विद्वान लोकनि सदैव अपन साहित्य के उन्नत करबाक चेष्टा करैत छथि। साहित्यस्य भावः साहित्यम्। कोनो उच्च साहित्य के कठिन सा कठिन, दुरूह आ कोमल सा कोमल नाना प्रकारक भाव के प्रकाशित करबाक शब्द सामर्थ्य होइत छै। साहित्य में एतेक शक्ति होइत अछि जे ओ जे चाह समाज के जाय रूपे संगठित करबाक इच्छा हुए कऽ सकैत अछि। जेना भक्ति साहित्य से मौन वा कही अंतरात्मा में सकारात्मक परिवर्तन के आस होइत अछि। मिथिला में प्रायः प्रत्येक कवि साहित्यकार लोकनि भक्ति भावना से युक्त पदक रचना केलन। अपन काव्य में ईश्वरक कतेक लीला गानक वर्णन केने छथि, चाहे ओ राम होइत, कृष्ण, शिव होइत वा और देवी देवता। प्रत्येक लेखक लोकनि अपन जतेक पोथीक प्रणयन केलन सभक आरंभ में कोनो ईश्वरक नाम लो मंगलाचरण अवश्य लिखलन। भक्ति भावक प्रसार आदि काल से अपन मिथिला में रहल अछि। महाकवि विद्यापति, शक्ति, गंगा आ विष्णु

0: यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: भगवती वंदना समेत महाकवि विद्यापति के रचना जना शिव विषयक पदक रचना नाचारी महेशवाणी स आयु समस्त मिथिला गौरवक अनुभूति कऽ रहल अछि। सावन मास में विशेष कऽ समस्त देवालय शिवालय नचारी महेशवाणी सँ मंत्रमुग्ध करयवला अछि। महाराज महेश ठाकुर विद्यापति के संप्रदायक रीतिबद्धता के त्याग जाई सरल स्वाभाविकताक संग अपन अनुभूति के प्रसादपूर्ण भाषा में व्यक्त केलन से सर्वप्रथा स्तुत्य अछि। कवि गंगाक प्रार्थना करैत कहै छथि, हम बंजर पाप बटमार सुकृति बेसाहल सुरसरी धार, जहिखन देखल धवल जलधार जीवन जन्म सुफल संसार। विद्यापतिक पश्चात गोविंद दासक भक्ति संबंधी कतेको पद देखल सुनल जाइत अछि। कवि अपन भक्ति विषयक मनोभाव के उत्कट श्रृंगार रसक रचनों में कृष्णक अलौकिक तत्वक आभास दैत व्यक्त करै छथि। विद्यापति जना अपन कविता में श्रृंगारिक होयबाक घोषणा करै छथि, तहिना गोविंद दास अपन पद में स्थान स्थान पर गोविंद दास हेरी भेल भोर आनन मिरखे गोविंद दास, गोविंद दास अपन गुण गाए, जेहन पाइत लेख अपना के भगवत लीलाक दृष्टा आ साक्षी माने छथि। आधुनिक काल में आइब कविवर चंदा झाक भक्ति संबंधी कतेको पद भेटैत अछि, जाहि में ओ सूर्य गणेश इंद्र शक्ति सीता राम कृष्ण आ शैव पार्वती विषयक गीत लिखलनि। सबसे बेसी प्रसिद्ध गीत शिव विषयक में महेशवाणी आ नचारी भेल। कवि सूर्य सँ प्रार्थना करैत कहै छथि, जय दिवाकर विश्वलोचन पाप तिमिर समस्त मोचन, हृत कमल सुख दुख विमोचन धर्म रोचन हे। भक्ति देवी देवता के हुए संगई देशक प्रति हुए त चैर चाइन लग जाइत अछि, संस्कृति के मान बढ़ा दैत अछि। सुनी एहने सन काव्य पाठ कृष्ण मोहन पाठक सँ।

0: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके।

दिगंत फहराय लय छिसे दिग दिगंत शौर्यक गाथा इति मे अनंत फहरा।

कृष्ण मोहन पाठक सँ सुनि रहल छलहुँ काव्य पाठ। वास्तवमे भक्ति शब्दमे भाव अछि। कवि शिवक सङ्ग जखन तन्मयताके अनुभव करैत छथि तऽ समस्त संसारे शिवमय बुझि पड़ैत छनि। कवि अनुभव करैत छथि जे शिवक बिना कोनो वस्तुक अस्तित्व नहि, आ तैँ शिवके सर्वस्व घोषित करैत रहैत छथि। शिव बिनु धन नहि, शिव बिनु जन नहि।

जे शिवक बिना कोनो वस्तुक अस्तित्व नहि। आते शिव के सर्वस्व घोषित करित रहे छेत। शिव बिनु धन नहीं, शिव बिनु जन नहीं, शिव बिनु सुख सपन नहीं आब, शिव बिनु मति नहीं, शिव बिनु गति नहीं, शिव बिनु जन दुर्गति पाव। सांस्कृतिक कोन कोन बिंदु सा कविता कवि की आह्वान करेत अछि, तकर गणना करेत सुमन जी शिव पार्वती परिणयक घटना में काव्यक प्रेरणा स्रोतक दर्शन करे छथि। घर घर गौरी करेत तपस्या, पूज तुसारी प्रात, बर बौरा उमा के देख के होइछ उर आघात। सुनी एहने सन एकटाई गीत।

हेमकांत झा से सुन रहा छलू नचारी। मैथिली साहित्य में भक्ति भावना से प्रेरित भ कतेको रचना होत रहल अछि। तो आब चले छी शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अछि बटगमनी। तिरहुत गीतक एकटा प्रभेद जाहि मे बाट चलैत गाओल जाइत अछि। एहि मध्य मधुश्रावणी पावनि धरि साँझ मे सब सखी मिल फूल पात तोड़ैत बटगमनी गबैत चलै छथि। एहने सन एकटा शब्द अछि लगनी। जात पिसैत ओकर श्रम के दूर करबाक लेल जातक हाथर पकड़ि जे गीत गाओल जाइत अछि सह भेल लगनी। एहि शब्द विमर्शक संग आब अपने लोकनि सँ चलबाक आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या थोड़ी देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ

0: चाचे हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
3: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में

0: आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया।

0: जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को भारत के दोतरफा दौरे के लिए बाजाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मुतला किया कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्स्टेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वजीर आजम को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका एहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही इस फोरम पर किए गए इजहार ख्याल के सिलसिले में वो किसी नजरिए की तौसीक करती है। पाकिस्तानी फौजों ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK के बाग जिले में आज गैर मुसल्ला शहरियों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद POJK के में जारी बेचैनी मजीद बढ़ गई है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने गैर मुसल्ला शहरियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर JAAC ने जाए मौके का फुटेज शेयर करते हुए ये बात कही। JAAC ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने मकबूजा इलाके के मुजफ्फराबाद जिले के मकरी खत्ते में शहरियों की मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया। ये ताज़ा वाकयात ऐसे वक्त में मंजर आम पर आए हैं जब पाकिस्तानी फौजों ने पूरे POJK में बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। साल 2019 से 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से 274 मफरूर मुजरमीन को वापस भारत लाया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने मफरूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए साल 2018 में मौशी जराय में मुलविस मफरूर अफराद का कानून नाफिज किया। वजारत ने मजीद कहा कि भारत ने मफरूर मुजरमीन से निमटने के लिए मुनज्जम इंटेलिजेंस की क्यादत वाला और टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल तैयार किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत के सिर्फ 37 ममालिक के साथ हवालगी माहदे थे और इकतसादी जराइम में फरार लोगों से निमटने या उनकी इमलाक जब्त करने से मुतालिक कोई मखसूस कानून नहीं था। वजारत ने वाज़ेह किया कि साबिका हुकूमतों में मफरूर अफराद को वापस लाने के लिए सियासी अज़्म का फुकदान था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मफरूर अफराद की हवालगी को कौमी तरजीह बनाया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने मफरूर अफराद के खिलाफ तीन निकाती हिकमत अमली जैसे आलमी रसाई, मजबूत तालमेल और सूझबूझ पर मबनी सिफारतकारी को अपनाया है। जनाब शाह ने मफरूर मुजरमीन के मामले को मुल्क की सालमियत, मुआशी इस्तेहकाम, अमन कानून की सूरत हाल और कौमी सलामती से वाबस्ता इंतहाई अहम मामला करार दिया है। आज फुकेट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज AI-2379 में परवाज के दौरान मुख्तसर तौर पर खराब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी सतह परवाज में तब्दीली करना पड़ी। बहरहाल परवाज दिल्ली में बाहिफाजत उतर गई और सभी मुसाफिर और अमला बाहिफाजत बाहर आ गए। इस तैयारी में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। एयर इंडिया ने कहा है कि इनमें से 13 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को चोटें आई हैं और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दौलत मुश्तरका खेलों में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद मुल्क लौटे भारतीय खिलाड़ियों का आज खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलीट शामिल हैं। नई दिल्ली में मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सोने के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 30 लाख रुपए, चांदी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए और कांसे के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। एथलीट से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने उनसे खेल के करियर से आगे सोचने और भारतीय खेल की अगली नस्ल तैयार करने में ताउन करने वाले बनने की अपील की। बैडमिंटन में आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठे दर्जे की चालुमपोन और वोरापोल थांगसाइंगा की जोड़ी को 21-16, 21-18 से शिकस्त देकर मर्दों के डबल्स के दूसरे

उन्होंने जगह बना ली है। और आखिर में खास खास खबरें पर, फिर पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखिर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निपटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मजका खेज करार दिया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौरे के मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है। और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और प्रेसी कृष्णामूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा। इसके अंतर्गत पहले सुनिए चिंकी कुमारी की वार्ता, जल संरक्षण आवश्यक।
1: जल संरक्षण जल को संरक्षित करने का कार्य है। जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जल एक सीमित संसाधन है और यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद 70% जल में से केवल 3% ही मीठा जल है। इसमें से केवल 0.5% ही पीने योग्य है और उपलब्ध है। जल संरक्षण का उद्देश्य ताजे पानी के प्राकृतिक संसाधन का स्थायी प्रबंधन करना, जल मंडल की रक्षा करना और वर्तमान तथा भविष्य की मानवीय मांग को पूरा करना है। बढ़ती आबादी और औद्योगिकरण के कारण दुनिया के सभी देशों पर जल संकट की विपदा आने लगी है। इससे यह पता चलता है आने वाले समय में मनुष्य के लिए जल का अभाव होने वाला है, इसलिए जल का सही मात्रा में उपयोग करना आवश्यक है। हमारे आने वाले समय के लिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। जल संरक्षण करना भी एक कला है, इसे हमें घर घर से करना होगा। अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमें देखकर हमारे आसपास के लोग एवं हमारी आने वाली पीढ़ी भी यह सीखेंगी। हमें हमारी प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें से ज़्यादातर पानी हम बिना उपयोग किए व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हम उसे बचा सकते हैं। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण एवं बचाव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी और जीवन आज के समय तक मौजूद है। पृथ्वी पर हर चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, कीड़े एवं अन्य जीवित चीज़ें। फसलों के उत्पादन एवं बिजली उत्पन्न करने की क्रिया में भी पानी एक मुख्य घटक है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिम्मेदारी हम सब पर है। जल की कमी का सीधा असर प्रकृति के संतुलन पर पड़ता है। पृथ्वी का बिगड़ा हुआ संतुलन प्रत्येक जीव को संकट की ओर ले जाता है, इसलिए पानी बचाने के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं। जल संरक्षण के लिए सबसे पहले शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। हमें हमारी प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए कम से कम पानी का उपयोग करना होगा, क्योंकि

0: हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास भी एक बड़ा परिणाम साबित हो सकता है। हमें वर्षा के जल का संग्रहण करना होगा। इसके लिए हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों, शहरों एवं गांवों में तालाब एवं जल भंडारण का कार्य करना होगा। इसके साथ ही हमें भूमिगत जल का भी संरक्षण करना होगा, क्योंकि वृक्षों की कटाई के कारण मिट्टी प्रदूषित हो रही है और इसका प्रभाव भूमिगत जल पर पड़ रहा है। नहाते समय और बर्तन साफ करते समय हमें नल बहता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। फैक्ट्री और कारखानों का गंदा जल शुद्ध जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। बच्चों एवं महिलाओं को जल संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। गंगा एवं यमुना जैसी बड़ी नदियों की सफाई करना बहुत आवश्यक है, जिससे इसे शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा सके, और इसके लिए सरकारी प्रशासन को जागरूक रहना होगा। जंगलों के काटने से हमें दोहरा नुकसान हो रहा है। पहला यह कि वाष्पीकरण न होने से वर्षा नहीं हो पाती है और भूमिगत जल सूख जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण वृक्षों के अंधाधुंध काटने से भूमि की नमी कम होती जा रही है, इसलिए पौधारोपण लगातार करना चाहिए। जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसे जितना हो सके हमें बचाना चाहिए। हमें जल संरक्षण के नए तकनीक निकालने होंगे, जिससे भूमिगत जल को संरक्षित किया जा सके। हमें स्वयं ही जल के महत्व को समझकर अपने घर से इस मुहिम की शुरुआत करनी होगी, जिससे हम जल को बचा सके और साथ ही साथ बच्चों एवं आसपास के लोगों को जल के महत्व को समझा सके, क्योंकि जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, पर्यावरण से धरती है और धरती से हम सब हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी का जीवन आधार जल ही है। शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जिसे जल की आवश्यकता ना हो। जल हमें समुद्र, नदियों, तालाबों, झीलों, वर्षा एवं भूमि के माध्यम से प्राप्त होता है। गर्म हवाओं के चलने से समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों का जल वाष्पित होकर ठंडे स्थानों की ओर चलता है, जहाँ पर न्यून तापमान के कारण संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जबकि पहाड़ों पर और भी कम तापमान होने के कारण जल बर्फ के रूप में जम जाता है, जो कि गर्मी के दिनों में पिघलकर नदियों में चला जाता है। मानव अपने स्वास्थ्य, सुविधा, दिखावा व विलासिता को देखने के लिए अमूल्य जल की बर्बादी करने से नहीं चूकता है। पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। यदि हम अपनी आदतों में थोड़ा सा भी बदलाव कर ले तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है।
1: जल संरक्षण आवश्यक। अभी अपनी चिंकी कुमारी की ये वार्ता सुनी। विविधा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए प्रस्तुत है कांता ठाकुर की वार्ता, अच्छी आदतों में है खुशियां।
2: खुशी की कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं होती कि जिसे बाजार से खरीद कर ले आए, ड्राइंग रूम की दीवार पर चस्पा कर दिया और सोफे पर आराम से बैठ गए कि खुशी तो अब हमारे घर रहने लगी है। खुशी एक ऐसी अनुभूति है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में सदा के लिए बनाए रखना चाहता है। ये चाह लाजमी भी है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ हो लेकिन खुशी ही ना हो तो जिंदगी के होने के

क्या मायने रह जाएंगे। इस मायने को बनाए रखने की खातिर ही हम सब खुशी की तितली को पकड़ने के लिए भागते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक सुंदर घर है जिसमें एक आदर्श परिवार रहता है और जिसकी समाज में एक सम्मानजनक हैसियत भी है। इस घर में अच्छा वेतन पाने वाले पिता है, एक सुघर गृहिणी की छवि बनाती माँ है, पढ़ाई में अव्वल रहने वाले बच्चे हैं। अब आपको लग सकता है कि खुश रहने की सारी स्थितियां तो मौजूद है इस घर में, लेकिन क्या असल में केवल इन स्थितियों को एक परिवार के खुशहाल होने की मिसाल माना जाना चाहिए? बेशक ये चीजें बेहद जरूरी है एक खुशहाल परिवार के लिए, लेकिन अपने अपने काम को ईमानदारी से बरतने की व्यस्तता में क्या इस घर के सदस्यों को खुशी के साथ दो घड़ी बैठने या फिर खुशी को जीने की फुर्सत मिल पाती है? अगर हाँ, तब तो वाकई खुशी यहाँ बसती है। नहीं तो इस घर के सदस्यों को कुछ ऐसी आदतें विकसित करनी चाहिए जिनसे खुशी के बीज अंकुरित हो। बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हम तो खुश हैं, तो क्या वास्तव में ऐसा है? रोज सुबह जागना, रोजमर्रा के कार्यों से

को खुशी के साथ दो घड़ी बैठने या फिर खुशी को जीने की फुर्सत मिल पाती है? अगर हाँ, तब तो वाकई खुशी यहाँ बसती है। नहीं तो इस घर के सदस्यों को कुछ ऐसी आदतें विकसित करनी चाहिए जिनसे खुशी के बीज अंकुरित हो। बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हम तो खुश हैं, तो क्या वास्तव में ऐसा है? रोज सुबह जागना, रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त हो कार्यालय जाना, शाम को लौटकर भोजन करना, समाचार या सीरियल देखना और सो जाना, हर महीने अच्छी सैलरी का आ जाना, परिवार के सारे लोगों की जरूरत का सामान मिल जाना, सबका एक ही छत के नीचे रहना, क्या यही खुशी का मूल आधार है? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इन सब चीजों के बाद अब भला और क्या चाहिए जिंदगी में? जवाब है, इन सारी चीजों के अलावा असल में जिंदगी में खुशी के लिए चाहिए मन में प्रेम, जीने का ईमानदार सलीका, मुस्कुराहट की सादगी भरी वजह, इंसानियत का आईना, साझेदारी की समझ और मैं से हम का हो जाना। इसके लिए जरूरी है कि आपका परिवार एक इकाई बने, परिवार में सबके साथ रहने और चलने का संबल हो, आपके बच्चों में मानवीयता का सहिष्णुता, सहयोग, क्षमा और त्याग का संस्कार विकसित हो। देने की खुशी पाने की खुशी से बड़ी हो घर में सबकी साझा हंसी गूंजे। अपने परिवार के लिए आपने प्राथमिकताओं की जो लिस्ट बनाई है, क्या उसमें इनमें से कोई भी एक बात है? अगर है तो आप उसे हासिल करने के लिए क्या कुछ करते हैं? क्या आपके जीने के तरीके में ऐसी आदतें शामिल हैं जो खुशी का स्वाभाविक आधार मानी जाती है? आजकल एक विज्ञापन आता है जिसमें घर के लोगों के पास साथ बैठकर खाना खाने की फुर्सत नहीं होती और एक दिन इस बात से आज ही जाकर परिवार की बुजुर्ग सदस्य डाइनिंग टेबल बेच देती है। डाइनिंग टेबल के हटने से घर में खाली हुई जगह को देखकर सबको साथ बैठने की अहमियत का एहसास होता है और वे कहते हैं कि क्या हमारा डाइनिंग टेबल वापस नहीं मिल सकता, अब हम साथ बैठकर खाएंगे। असल में परिवार में साथ बैठकर खाने का चलन यूं ही नहीं रहा है, इसके पीछे साथ साथ होने जीने की सोच भी शामिल रही है। साथ खाना खाते हुए आप बच्चों की स्कूल की गतिविधियों, उनके दोस्तों के बारे में आराम से बातें कर सकते हैं, कौन क्या नया सोच रहे हैं या किसे कौन सी बात परेशान कर रही है। इस तरह की तमाम बातें एक साथ बैठकर खाने खाते हुए आपस में सहजता से की जा सकती है। बात कहने से कुछ खास ना भी हो तो साथ खाना खाते हुए एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर ही सही हंसने बतियाने का सुख तो है ही। अधिकतर परिवारों में हर किसी का काम तय होता है, पिता दफ्तर जाने के लिए है, माँ सबके खाने का इंतजाम करने और घर को व्यवस्थित रखने के लिए और बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। कभी आपने सोचा है कि इस तय खाने को जो तोड़कर परिवार का हर सदस्य अगर घर की छोटी बड़ी जिम्मेवारी को सही तरीके से निभाने लगे तो आपके परिवार की तस्वीर कितनी खूबसूरत हो जाएगी। शुरुआत हफ्ते में कम से कम एक दिन सहभागिता को जीते हुए कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन ऐसा हो जब सब अपने रोजमर्रा के काम के अलावा घर के सारे काम मिलजुल कर सके। पिता रसोई में कुछ अच्छा पकाए, बच्चे माँ की मदद से घर की सफाई कर उसे सजाए तो कितना अच्छा लगेगा। हमारे परिवारों में दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनने की परंपरा रही है। ये कहानियाँ बाल मन के कल्पना लोक को विकसित करती थी और अच्छे बुरे की समझ भी देती थी। आज कहानी सुनने गुनने की परंपरा शायद ही कहीं दिखाई दे। अब अधिकतर घरों में बच्चे टीवी देखने या मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त मिलते हैं। कहानी कहने सुनने गुनने की परंपरा को अपने परिवार में फिर से विकसित करें। अगर घर पर बुजुर्ग है तो आप खुद बच्चों के साथ उनके पास कहानी सुनने बैठ सकते हैं। घर में कोई बुजुर्ग ना हो तो छुट्टी के दिन अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्रों की कहानी या प्रसिद्ध लोगों की जीवनी पढ़कर सुनाएं ताकि उन्हें जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिले। इसके लिए अच्छी साहित्यिक किताबों की मदद ली जा सकती है। इस दौरान बच्चे को उनके दादा दादी नाना नानी अपने गांव, बचपन और तब की सादगी भरी जिंदगी के बारे में बता सकते हैं। कहानी सुनने का धैर्य इंसान में दूसरों की बात सुनने का भी धैर्य विकसित करता है। इस तरह घर के बच्चों को बुजुर्गों का सानिध्य मिलता है जो कि बच्चों को भावनात्मक तौर पर परिपक्व करता है। क्षमा को व्यक्तित्व का श्रेष्ठ गुण बताया गया है। अगर आपके भीतर ये गुण है तो आपके मन में कभी किसी के लिए कटुता नहीं आ सकती।
अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा मांगना।

0: और दूसरों की गलती को माफ करना दोनों ही इंसानी व्यक्तित्व को परिपूर्ण करने वाले तत्व हैं। अगर आप अपने दायित्व को ठीक से निभाएंगे तो बच्चों में भी आपको देखकर ये गुण विकसित होगा। इसी तरह आभार जताने का गुण भी परिवार की खुशहाली के लिए बेहद अहम है। ईश्वर हो या इंसान, हर अच्छी बात के लिए इनका आभार जताना न भूले। यात्राएं जीने का हुनर सिखाती है, नई जगह को देखने का, वहां से लोगों की संस्कृति को जानने से इंसान के अनुभव संसार का विस्तार होता है। आप अपने परिवार के साथ साल में कम से कम एक बार यात्रा पर जाएं। इस यात्रा में माता पिता के साथ बच्चे भी रहे तो बढ़िया रहेगा। जरूरी नहीं कि आप किसी पर्यटन स्थल की यात्रा पर जाएं। ये यात्रा आपके पैतृक गांव की हो सकती है, उस जगह की हो सकती है जहां आप बचपन में अपने माता पिता के साथ गए थे। अब पूरे परिवार के साथ एक बार फिर वहां जाकर बीते हुए पल को भी जी सकेंगे और बच्चे को भी उस यात्रा की अहमियत से परिचय कराएंगे। परिवार में किसे क्या पसंद है इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच भी अपनों की खुशियों में बढ़ोतरी करते चलेंगे। अगर आपको अब तक नहीं पता है कि आपको अपनों को क्या पसंद है तो पता लगाएं और उनकी पसंद का ख्याल रखें। कभी कोई पसंदीदा तोहफा दें, जन्मदिन या सालगिरह पर उनकी पसंद को साकार करें। घर के बच्चे हो या बड़े, सबकी पसंद को तरजीह दें। इसी तरह घर के हर छोटे बड़े फैसले में सबका राय को भी जगह दें। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं। पूरे परिवार के साथ इस त्योहार का आनंद लें और खुशियां बांटें।
1: अच्छी आदतों में है खुशियां। अभी आपने कांता ठाकुर की ये पुनर्प्रसारित वार्ता सुनी। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है देववाणी। इसके अंतर्गत सुनिए संस्कृत वार्ता। विषय है विश्व हिताय संस्कृतम। वार्ता कर रहे हैं जयशंकर झा।
2: अद्य मम विषयः वर्तते विश्वहिताय संस्कृतम्। सुरभारत्याः सरिता सुरसरितेव अनादिकालादेव प्रभावमाना सति मानवमात्रस्य नहि अपि तु केवलं सकलचराचर जगतः कल्याणाय हिताय च गौरवं विभर्ति। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति वचनात् भासेयं देववाणी यस्या अन्वाख्यानं मुनित्रयेण मुख्यतः अर्थात् पाणिनि पतञ्जलि कात्यायन सदृशैः महर्षिभिः कृता। अत्र न हि केवलं कस्यापि क्षेत्रविशेषस्य जातिविशेषस्य राष्ट्रविशेषस्य प्राणविशेषस्य संवर्धनार्थं चिन्तनं चलति अपि तु आदिकालादेव विश्वब्रह्माण्डस्य एकनीडता अत्रैव प्रतिपादिता। यथेवोक्तं यत्र विश्वं समग्रं भवत्येकनीडं यथा पक्षिणां यद्गृहं भवति तद्नीडम् उच्यते। यथा पक्षिणः एकस्मिन्नेव नीडे निवसन्ति समग्रविश्वस्य परिकल्पनं यत्र नीडवत् अस्ति तादृशम् औदार्यं विश्वस्य कस्याम् भाषायां केवलं संस्कृतभाषायाम्। एतच्चिन्तनं सहस्राधिकवर्षपूर्वम् अस्माकं ऋषिभिः कृतम् अस्ति वसुधैव कुटुम्बकं तु यत्र विश्वं समग्रं भवत्येकनीडं पुनश्च वसुधैव कुटुम्बकम् इति उदात्तभावना न अन्यासु भाषासु एषा दृष्टिः दृश्यते। वस्तुतः अस्माकं यत् वैदिकसाहित्यं संस्कृतसरण्याः गङ्गोत्रीव वर्तते। तत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् इति यदुद्घुष्टम् अस्ति। सा ताम साधयितुम् अस्माकं ऋषीणां कवीनां च वैश्वकीं दृष्टिः एव। अत्र

होते है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम एक फनकार। आज सुनिए किशोर कुमार के गाए कुछ गाने। श्रोताओं, आज 4 अगस्त है। आज किशोर कुमार की जयंती है। महान पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था। आपको बताते चलें कि इनका पूरा नाम आभास कुमार गांगुली था। खंडवा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो आइए सुनते हैं आज इन्हीं के गए कुछ फिल्मी गाने।

श्रोताओं, शुरू में किशोर कुमार को एसटी बर्मन और अन्य संगीतकारों ने अधिक गंभीरता से नहीं लिया और उनसे हल्के स्तर के गीत गवाए गए। लेकिन किशोर कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फंटूस में दुखी मन मेरे गीत अपनी ऐसी धाक जमाई कि जाने माने संगीतकारों को किशोर कुमार की प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। इसके बाद एसटी वर्मन ने किशोर कुमार को अपने संगीत निर्देशन में कई गीत गाने का मौका दिया। आरडी वर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंटूस, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी जादुई आवाज से फिल्म संगीत के दीवानों को अपना दीवाना बना दिया। एक अनुमान के अनुसार किशोर कुमार ने वर्ष 1940 से वर्ष 1987 के बीच के अपने करियर के दौरान करीब 16,000 से अधिक गाने गाए।

श्रोताओं, किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी से हुई थी। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया। किशोर कुमार केएल सहगल के प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने ये गीत उनकी शैली में ही गाया। जिद्दी की सफलता के बावजूद उन्हें ना तो पहचान मिली और ना कोई खास काम मिला। उन्होंने 1951 में फणी मजुमदार द्वारा निर्मित फिल्म आंदोलन में हीरो के रूप में काम किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। 1954 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर अपनी प्रभावकारी अभिनय प्रतिभा से भी परिचित किया। आपको ये बताते चलें एक मज़ेदार बात, वो ये कि किशोर कुमार की शुरुआत की कई फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज़ दी थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज़ उधार दी तो मेहनताना लिया सिर्फ एक रुपया। काम के लिए किशोर कुमार सबसे पहले एसटी वर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में बनी फिल्म प्यार में गाने का मौका दिया था।

एक फनकार। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के गाए कुछ फिल्म गाने। फिल्में थी पराया धन, अमानुष, सफर, कटी पतंग, कोरा कागज और समझौता। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए पेशे फिल्म संगीत।

अभी अब तो नहीं थी जसपाल सिंह और कल्याणी मित्र को, फिल्म थी सावन को आने दो, गीतकार थे गौहर कानपुड़ी, संगीतकार राजकमल। किशोर कुमार की आवाज में सुनिए फिल्म मंजिल का ये गाना, गीतकार योगेश, संगीतकार आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रही थी मुकेश को फिल्म सबक में। गीतकार थे सावन कुमार, संगीतकार उषा खन्ना। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म शर्मिली में। गीतकार नीरज, संगीतकार एस टी बर्मन।

धरती कहे पुकार के, यही फिल्म का नाम, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार जयदेव, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म इज्जत में। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजा जाते हैं, अब समाचार होंगे।
1: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु

0: मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the

दूसरी और अंतिम सभा। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:45 पर पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।